सुप्रभात। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज सोमवार है, शक्त मत 1948 के वैशाख मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 मई 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 34 सेकंड में हैं। अब हमारा आज की प्रथम सभा आरंभ होती है। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। सुबह के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की।

0: मंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी जिक्र किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें तथा मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुने भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

प्रार्थना मात्र शब्दों से ही नहीं वरन हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनता है जो बोल नहीं सकते।

प्रभु की शरणागति प्राप्त करने के लिए आर्त भाव से प्रार्थना करिए। हे नाथ, मैं अपनी शक्ति से आपको प्राप्त नहीं कर सकता। आप अपनी अनन्य असीम अहेतु की कृपा से मुझको संभाल लीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ।

भक्त ने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़े हैं कि ना तो भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं, ना भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं।

आज के वंदना कार्यक्रम में आपने जो भक्ति रचनाएं सुनी उनमें आवाजें थीं हरिओम शरण, लता मंगेशकर, पंडित भीमसेन जोशी और अनूप जिलोटा की। और आइए अब आपको सुनवाते हैं संवेत स्वरों में ये देशगान।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन बिंदु। विषय है खुशियाँ। आलेख है डॉक्टर शरद चंद्र सक्सेना का और वाचन है श्रीमती राखी कटारा का।
1: आज लगातार तीसरे दिन भी पप्पू की पिटाई देखकर सोनू और मुकेश बहुत दुखी थे। पप्पू सोनू और मुकेश की बुआ का इकलौता बेटा था। पिछले साल के भूकंप में दबकर उसकी दादी, मम्मी और पापा की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद पप्पू के मामा उसे अपने साथ ही ले आए ताकि सोनू और मुकेश के साथ उसका मन भी लग जाए और वो पढ़ भी ले। पप्पू के आने से सोनू और मुकेश तो बहुत खुश हुए। पप्पू उनकी ही कक्षा में था और फिर एक ही स्कूल में तीनों पढ़ते थे। तीनों बच्चे साथ साथ पढ़ते और साथ ही साथ खेलते भी थे। पप्पू जब यहाँ आया तो मामी बड़ी प्रसन्न हुई। कुछ दिनों तक उन्होंने पप्पू का खूब ध्यान रखा, लेकिन अब उन्हें जाने क्या हो गया। मामी बड़बड़ाती हुई कहती, अपन तो चली गई, इस नौ हाथ की डोर को हमें थमा गई है। मामी पप्पू पर अकारण ही क्रोध करने लगी थी। सोनू और मुकेश को बहुत बुरा लगता था, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे। मामी पप्पू से घर का काम भी करवाने लगी। सोनू कहता, मम्मी मैं काम कर दूंगा। मामी चिल्लाकर कहती, ये कमबख्त क्या खा खा कर पलेगा, करने दे इसे काम। सोनू बेचारा चुप हो जाता। काम में गलतियां होने पर पप्पू की पिटाई होने लगी। आए दिन मार खाते रहने से पप्पू उदास रहने लगा। उसका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता। उससे घर और स्कूल में और अधिक गलतियां होने लगी। उसे दोनों जगह ही दंड मिलता। पप्पू का ये हाल देखकर सोनू और मुकेश ने एक योजना बनाई और अपनी योजना की तैयारी में जुट गए। आज इतवार का दिन था। पप्पू की सुबह सुबह ही पिटाई हो गई। सोनू और मुकेश ने खुसुर पुसुर करके कुछ सलाह की और अपने पढ़ाई वाले कमरे में चले गए। मम्मी ने आवाज लगाई, सोनू मुकेश चलो नाश्ता कर लो। सोनू अपने कमरे में से ही बोला, मम्मी हम होमवर्क करके नाश्ता करेंगे। थोड़ी देर के बाद मम्मी झुंझलाई हुई आईं। आते ही बोली, तुम लोग नाश्ता क्यों नहीं करते? हमें भूख नहीं है,

0: सोनू और मुकेश ने एक साथ उत्तर दिया। क्यों, 11 बजे तक तुम लोगों को भूख ही नहीं है, मम्मी ने कहा। पापा अखबार पढ़ रहे थे। बच्चों की बात सुनकर वो भी आ गए। अरे बच्चों, तुम्हें भूख क्यों नहीं लग रही है, वे प्यार से बोले। आज पप्पू भैया दुखी जो हैं, तपाक से मुकेश ने कहा। तुम्हारा पप्पू भैया दुखी क्यों है, पापा ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि आज तीसरे दिन भी मम्मी ने पप्पू भैया को पीटा है, सोनू मुकेश एक स्वर में बोले। बच्चों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पापा ने मम्मी की ओर दृष्टि डाली तो मां ने अपनी नजरें झुका ली। अपने लिए हमदर्दी देखकर पप्पू सिसकने लगा। पापा ने पप्पू के सिर पर हाथ फेरते हुए अपनी पत्नी की ओर देखा। तभी सोनू ने अपनी शर्त की तोप दाग दी। पापा, जब तक माँ पप्पू भैया को नहीं पीटने का वादा नहीं करती, हम कुछ भी नहीं खाएंगे। बच्चों की बातें सुनकर मम्मी का मन ग्लानी से भर गया। मैं वादा करती हूँ, मम्मी बोल पड़ी। सच, कहते हुए सोनू माँ से चिपट गया। माँ बेटों को देखकर पप्पू और मामा भी मुस्कुरा पड़े। बच्चों ने चटखारे लेकर नाश्ता किया। घर में फिर से खुशियां लौट आईं।
1: चिंतन बिंदु कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे खुशियां विषय पर ये आलेख। आलेख था डॉक्टर शरद चंद्र सक्सेना का, वाचन था श्रीमती राखी कटारा का।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है श्री राम चरित मानस गान। स्वर हैं महेंद्र कपूर और शोभना अराव के। संगीत है सतीश भाटिया का।

ब्रह्मा ने सब प्रकार से योग्य पाकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया था। इतना बड़ा अधिकार पाकर दक्ष को सत्ता का मद हो गया और उन्होंने शिव का अपमान करने की धृष्टता कर दी। जब यक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया तो उसमें भगवान शंकर को निमंत्रित ना करके उस अपमान को जैसे दोहरा कर दिया। यही कारण था कि जब सती ने पिता के यज्ञ में उपस्थित होने के लिए जाना चाहा, तो शिव ने बिना निमंत्रण जाना सती के शील स्नेह अथवा मान मर्यादा के अनुरूप नहीं पाया। जब सती ने पिता के यज्ञ में जाने की जिद ही कर दी तो भगवान शंकर ने अपने प्रमुख गणों के साथ उन्हें विदा कर दिया। उधर पिता ने सती का कुशल क्षेम तक नहीं पूछा। यज्ञ में सभी देवताओं के भाग की सामग्री थी, किंतु कहीं भी शिवजी का भाग दिखाई नहीं दिया। पति की ये उपेक्षा देख अपमान से सती के अंग प्रत्यंग जल उठे, उनके क्रोध की सीमा ना रही। इस मदांधता तथा नादानी के लिए उन्होंने पिता की भर्त्सना ही नहीं की, बल्कि ग्लानि तथा क्रोध के वशीभूत होकर अपने को उसी यज्ञ की अग्नि में भस्म कर डाला।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, स्वर थे महेंद्र कपूर और शोभना राव के, संगीत था सतीश भाटिया का। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

अब से थोड़ी ही देर बाद कार्यक्रम होगा खेती की बातें, विषय होगा बैगन के रोग। वार्ताकार होंगे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। समय 6:50। 7 बजे सुनेगा भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। ब्रज माधुरी कार्यक्रम 7:31 पर चर्चा होगी ब्रज में अधिक मास को महत्व। साथ ही सुनेगा कवि मुखसौ में, कवि होंगे गोपाल प्रसाद गोप। गीतांजलि कार्यक्रम 8:30 पर। 9 बजे भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी, विषय होगा नदियां हमारी जीवन धाराएं। वार्ताकार होंगे महेश चंद्र गोस्वामी, बातचीत करेंगे ओपी सिंह। कार्यक्रम आबोहवा का प्रसारण समय 9:25 पर। विषय होगा शहर का परिवहन। आलेख और वाचन होगा अरुण उपाध्याय का। 9:30 पर कार्यक्रम ब्रज दर्पण, संयोजन होगा ओपी सिंह का। 10 बजे सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

सुबह 10:30 पर फिल्म संगीत सुनाया जाएगा। दिन 11 बजे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी होगा। प्रस्तुति होगी संजय सारस्वत की। फिल्म संगीत का कार्यक्रम यादों के झरोखों से, ये कार्यक्रम आप सुनिएगा दिन 11:30 पर। मध्याह्न 12 बजे गीत बात और SMS, ये कार्यक्रम आपको सुनवाया जाएगा। 12:30 पर ब्रज लोकगीत कार्यक्रम में आज की कलाकार होंगी श्रीमती राजेश शर्मा। वनिता लोक, ये कार्यक्रम सुनिएगा 1:15 पर। चर्चा होगी विश्व एड्स वैक्सीन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इन विषयों पर। साथ ही पर्यावरण वार्ता सुनिएगा, इको टूरिज्म यानी पर्यावरण से दो

दोस्ती वार्ताकार होंगी डॉक्टर शालिनी शर्मा। सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत सुनवाया जाएगा अपराह्न 2:30 पर। शाम 5:30 पर युववाणी कार्यक्रम में आज की बात, इसमें बातचीत होगी विश्व एड्स टीकाकरण दिवस पर और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर। साथ ही भेंटवार्ता सुनवाई जाएगी मथुरा की मूर्ति कला, इस विषय पर कलाविद चंद्रशेखर शर्मा भेंट करेंगे अरविंद त्रिपाठी।

ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम शाम 6:15 पर चर्चा होगी जैविक खाद की उपयोगिता और दूसरा विषय होगा उत्पादन बढ़ाने हेतु फसल चक्र अपनाएं। साथ ही वार्ता होगी मिट्टी पानी की जांच कब और कहां कराएं। वार्ताकार होंगे डॉक्टर खजान सिंह। संध्या वंदन ये कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा शाम 6:45 पर। शाम 7:05 पर ब्रज साहित्य कार्यक्रम में ब्रज वार्ता सुनिएगा अधिक मास की उत्पत्ति और हिंदू धर्म में महत्व। आलेख होगा राधा कांत शर्मा का, वाचन होगा देवराज कृष्ण दीक्षित का। शाम सुहानी ये कार्यक्रम सुनिएगा शाम 7:31 पर। रात 8 बजे फिल्म संगीत, 8:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम होगा। सुहाने तराने फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम रात 9:15 पर। 9:30 पर पब्लिक स्पीक। रात 10 बजे सुनिएगा रूपक। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे पंडित रविशंकर का सितार वादन। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए अब आपको सुनवाते हैं खेती की बातें कार्यक्रम। विषय है बैगन के रोग। वार्ताकार हैं डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।
1: किसान भाइयों, बैंगन भारत की कुछ प्रमुख सब्जियों में से एक है। इसे देश में काफ़ी पसंद भी किया जाता है। इसकी देश में हर जगह उपलब्धता भी है। जहाँ तक इसकी नर्सरी का सवाल है, तो एक हेक्टेयर पौध की रोपाई के लिए जो पौध डाली जाएगी, करीब 400 से 500 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप संकर किस्म की पौध तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए 200 से 250 ग्राम बीज पर्याप्त रहता है। बीज को बुवाई से पूर्व थीरम या कैप्टान से 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उसको उपचारित करके ही नर्सरी में उसकी बुवाई करनी चाहिए। वर्षाकालीन फसल लेने के लिए फरवरी मार्च में और शरदकालीन फसल लेने के लिए मई जून जुलाई में इनकी नर्सरी तैयार की जाती है। बसंतकालीन फसल के लिए सितंबर में नर्सरी में पौधों को डाला जाता है। करीब 30 से 40 दिन के पौधे हो जाते हैं जब नर्सरी में, तो और लगभग इनकी ऊंचाई 10 से 15 सेंटीमीटर हो जाती है, तो समझना चाहिए कि ये पौधे रोपाई के काबिल हो गए हैं। कतार से कतार की दूरी 60 से 70 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर रखते हुए इनकी रोपाई कर दी जाती है। अब बात आती है कि इनके प्रमुख रोगों की। चूँकि बैंगन में कई तरह के कीड़े लगते हैं, रोग भी लगते हैं, तो अगर इनकी सही समय पर देखभाल न की जाए और कुछ सावधानी न बरती जाए, कुछ सुरक्षात्मक उपाय न अपनाए जाएं, तो रोगों की वजह से बैंगन की फसल काफ़ी बर्बाद हो जाती है। एक रोग लगता है, नर्सरी में ही वो रोग लगता है, जिसे कहते हैं डैम्पिंग ऑफ, आद्र गलन रोग। ये रोग मुख्यतः पौधशाला में उगे पौधों पर ज़्यादातर देखने को मिलता है। यह पौधों की दो अवस्थाओं में पाया जाता है। पहली अवस्था में पौधों के भूमि से निकलने से पूर्व या इसके तुरंत पश्चात।

0: शायद ये दिखाई पड़ेगा। दूसरी अवस्था में पौधा बन जाने पर ये नुकसान पहुंचाता है। पहली अवस्था में पौधे छोटी अवस्था में ही मर जाते हैं। दूसरी अवस्था में भूमि के संपर्क वाले तने के हिस्से में पीले हरे रंग के विक्षिप्त बनते हैं, जो तने को प्रभावित करके उनके ऊतकों को, टिश्यूज को नष्ट कर देते हैं, जिससे ये पौधा मुरझा करके और बाद में सूख करके खत्म हो जाता है। यही इसकी लक्षण है कि पौधा मुरझाता है और उस पौधा सूख जाता है। अब आप इसके उपचार के बारे में जान लें। बीज को बुवाई से पूर्व थीरम या कैप्टन 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके ही बोएं। जहां तक हो सके बीजों की बुवाई उचित जल निकास युक्त भूमि में 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची बनी हुई मेड़ पर इनकी बुवाई की जाए। बीजों को बुवाई से पूर्व हो सके तो 50 डिग्री सेल्सियस तापमान के गर्म पानी में 30 मिनट तक उपचारित करके ही बोएं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। पौधशाला में रोगग्रस्त पौधे अगर आपको दिखाई पड़ते हैं तो उनको निकाल करके किसी जमीन में गाड़ दें और खड़ी फसल में बोर्डो मिश्रण 0.8% का घोल का एक छिड़काव आप कर सकते हैं। दूसरा रोग बैंगन का है फोमोप्सिस, झुलसा रोग काफ़ी प्रमुख रोग है। यह बैंगन का एक भयंकर हानिकारक रोग है। रोगी पौधों की पत्तियों पर छोटे छोटे गोल भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं और अनियमित आकार के ये धब्बे होते हैं। पत्तियों के किनारों पर ये दिखाई पड़ते हैं। रोगी पत्तियां पीली पड़ करके सूख जाती हैं। रोगी फलों पर धूल के कणों के समान भूरे रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जो आकार में बढ़कर फलों को सड़ाकर जमीन पर गिरा देते हैं। यह एक मृदा जनित रोग है, इसलिए इस रोग का प्रकोप पौधशाला में भी होता है, जिसके कारण पौधे झुलस जाते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका, जैसा कि आपने इसके बारे में सुना डैम्पिंग ऑफ के बारे में, कि बीज उपचारित करके ही बोना चाहिए, एक ये तरीका है। अगर फिर भी ये रोग दिखाई,
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें, विषय था बैगन के रोग, वार्ताकार थे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से, कृपया अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
2: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक सुरेश चंद शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गतरात्रौ गोथिनबर्ग इत्यत्र स्वीय स्वीडिश समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यमुना साकं संवादं विहितवान्। श्रीमोदी द्विदिवसीय स्वीडन यात्रान्तर्गतं गतदिने गोथिनबर्ग इत्यत्र सम्प्राप्तवान्। भारत स्वीडन देशयोः सम्बन्धेषु मोदिनः असाधारण योगदानाय दूरदर्शी नेतृत्व सम्माने च प्रधानमंत्री श्रीमोदी रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रेड क्रॉस इत्यनेन सम्मानेन सभाजितवान्। प्रधानमंत्री मोदी सह प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्तांतर्गतम उभौ नेतारौ भारत स्वीडन संबंधानां समेषां पदक्षेपाणां समीक्षामपि कृतवन्तौ। उभौ नेतारौ व्यापार, निवेश, प्रविधि, नवाचार, हरित परिवर्तनम, अंतरिक्ष रक्षा, अनुसंधानम समेत्य नैकेषु विषयेषु चर्चितवन्तौ। स्वीय संबोधने श्रीमोदी आतंकवादम आलोचयन नैकेषु विषयेषु विस्तृतेन वक्तव्यं प्रकटितवान्। आतंकवादं विरुध्य संघर्षे स्वीडिश प्रधानमन्त्रिणः समर्थनाय आभारमपि श्रीमोदी प्रकाशितवान्।
3: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
2: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना स्वीडिश समवायाः आमन्त्रिताः। गोथिनबर्ग इत्यत्र प्रमुख स्वीडिश समवाय प्रमुखैः सह वार्तान्तर्गतं श्रीमोदी स्वीडिश समवायान् विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन अभियानं, स्वच्छोर्जा, अन्येषु क्षेत्रेषु च स्वीयोपस्थिति संवर्धनाय आग्रहमपि कृतवान्। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अद्य स्वीय यात्रायाः चतुर्थ

0: चतुर्थे चरणे नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय अथ द्विपक्षीय वार्ताभ्यः श्रीमोदी अद्य नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नॉर्वे इत्यत्र एषा प्रथमा यात्रा स्यात्। श्रीमोदी राजा हेराल्ड पंचम इत्यमुना अथ रानी सौम्या इत्यनया साकं च मेलनं कुर्यात्। श्रीमोदी तत्रत्य प्रधानमन्त्रिणा जोनास गहरस्टोरे इत्यमुना साकं द्विपक्षीयां वार्तां कुर्यात्। कांग्रेस दलस्य नेतृत्वे केरलं शासनस्य शपथग्रहणम् अद्य स्यात्। कांग्रेस दलस्य नेता वीडी सतीशन अद्य तिरुवनन्तपुरम् इत्यत्र शपथवचनं स्वीकुर्यात्। कांग्रेस दलेन सतीशन इत्यसौ केरल प्रदेशस्य अग्रिम मुख्यमन्त्रीरूपेण समुद्घोषितः। कांग्रेस दलस्य नेतृत्वयुतेन युनाइटेड डेमोक्रेटिक ग्रन्थियुतेन तत्र शासन विरचनं स्यात्। केन्द्रीयः गृह सहकारिता मन्त्री अमितशाहः गुजरात प्रदेशस्य गांधीनगरे 700 कोटिमितानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। स्वीय द्विदिवसीय यात्रावधौ गतदिने गांधीनगर नगर निगमस्य 100 कोटिमितानां विकासकार्याणां शुभारम्भमपि श्रीशाहः विहितवान्। एतत्पूर्वं प्रथमे दिने श्रीशाहः सूचना केन्द्रस्य उद्घाटनं च कृतवान्। श्रीशाहः एआई तथा डीपटेक इत्येतौ भविष्यस्य अर्थव्यवस्थायाः मुख्य स्तम्भौ इति वर्णितवान्।
1: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: अन्ते च क्रीडा वार्तासु आईपीएल इत्येतस्यां क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनयोः दलयोः मध्ये द्वन्द्वं स्यात् इति वार्ताः।
2: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। हमारा अगला कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।

पतंगा फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। शब्द रचना थी राजेंद्र कृष्ण की और संगीत रचना थी सी रामचंद्र की। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं एक बार फिर से लता मंगेशकर की आवाज में। बोल राजेंद्र कृष्ण के हैं, धुन बनाई है चित्रगुप्त ने। फिल्म का नाम है पतंग।

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी गाने भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में। कार्यक्रम का ये अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं गीता दत्त की आवाज में। मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का नाम है, शब्द हैं मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत है ओपी नैयर का।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं भाभी फिल्म से, गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने, बोल राजेंद्र कृष्ण के हैं, धुन बनाई है चित्रगुप्त ने।

FM 102.2 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, ये सिर्फ उनका नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के नव नियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को किया विभागों का आवंटन। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बने एमएसएमई विभाग के मंत्री। प्रदेश में अनुदेशकों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर देगी सरकार। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह और चेक वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुए अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत, 5 घायल। अब समाचार विस्तार से। स्वीडन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। ये किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को स्वीडन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वीडन का सर्वोच्च पुरस्कार मिलना सिर्फ उनका सम्मान नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है।
1: यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।
0: स्वीडन में मिला सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक मिला ये 31वां वैश्विक सम्मान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने मंत्रिमंडल में नव नियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया। नव नियुक्त मंत्रिमंडल मंत्रियों में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एमएसएमई विभाग सौंपा गया है। मनोज कुमार पांडे को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग आवंटित किया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान राज्य मंत्री के तौर पर पदोन्नत किए गए अजीत पाल सिंह को खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के साथ साथ राजनीतिक पेंशन विभाग की भी जिम्मेदारी दी गई है, जबकि सोमेंद्र तोमर को सैनिक कल्याण और प्रांतीय रक्षा दल विभाग का प्रभार सौंपा गया है। नवनियुक्त 4 राज्य मंत्रियों को भी विभाग आवंटित कर दिए गए। कृष्णा पासवान को पशुपालन एवं दुग्ध विकास विभाग, सुरेंद्र दिलेर को राजस्व विभाग, हंसराज विश्वकर्मा को लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और कैलाश राजपूत को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग सौंपा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन वहां के सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण 2026 के तहत भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश का ऐसा राजनीतिक

0: है जो देश को सुरक्षा, संस्कृति, सुशासन और समृद्धि को जोड़ने का काम कर रही है। श्री योगी ने कहा कि केंद्र और भाजपा शासित राज्य सरकारों ने राष्ट्र प्रथम की भावना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की संकल्पना के अनुरूप अपने कार्यक्रमों को तैयार किया है। इससे देश के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उन सपनों को भी साकार किया है जिन्होंने अंत्योदय की बात, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन की योजना का लाभ मिलना चाहिए। देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को एक एक आवास मिल जाना, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा मिल जाना, 10 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हो, ये समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को समृद्धि के शिखर तक पहुँचाने के अभियान का क्रम है।
0: कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान और सांसद रवि किशन शुक्ल सहित कई पार्टी पदाधिकारी और प्रमुख जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह और चेक वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत 24,717 अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रूपये प्रतिमाह किए जाने के उपलक्ष्य में ये आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मानदेय बढ़ाने के साथ ही राज्य सरकार अनुदेशकों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ देने जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है हर बच्चा शिक्षा हासिल करे ताकि विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सके।
2: जब साफ नीयत से कोई सरकार कार्य करती है, स्पष्ट नीति हो तो परिणाम आने में देर नहीं लगती। प्रदेश के अंदर जो ड्रॉप आउट रेट था लगभग 17-18% के आसपास था और आज हम इसको घटाते घटाते 3 तक पहुंचाने में सफल हुए हैं और हमारा मानना है इसको 0 तक पहुंचाना चाहिए। हर बच्चा पढ़ेगा तब विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार हम कर पाएंगे।
0: केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेन प्रसाद और प्रदेश के राज्य मंत्री संजय गंगवार ने कल पीलीभीत में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्मार्टफोन वितरित किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री प्रसाद ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के कामों में हमेशा पारदर्शिता रही है और सरकार ने जो कहा उसे करके दिखाया। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने कल से CNG की कीमतों में 1 रूपये की बढ़ोतरी कर दी। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 80.09 रूपये जबकि गाजियाबाद और नोएडा में ये 88.70 रूपये हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। मथुरा सहित समूचे ब्रजमंडल में 1 माह तक चलने वाला पुरुषोत्तम मास मेला कल से शुरू हो गया। एक रिपोर्ट।
3: मथुरा समेत समूचे ब्रजमंडल में 1 माह तक चलने वाला अधिक मास मेला शुरू हो गया है। चहु और 84 कोस परिक्रमा का उत्साह और राधे राधे की गूंज सुनाई दे रही है। आस्था और भक्ति में डूबे लाखों श्रद्धालु मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव और गोवर्धन में 84 कोसी परिक्रमा कर रहे हैं। SP ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए परिक्रमा मार्ग गोवर्धन, द्वारकाधीश और श्री कृष्ण जन्मस्थली समेत प्रमुख मंदिरों को सुपर जोन और सेक्टरों में कर भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई है और पूरे क्षेत्र की CCTV कैमरों और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा।
0: प्रदेश के विभिन्न जिलों में कल हुए 3 अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 अन्य घायल हैं। हमीरपुर के मौदहा क्षेत्र के छिरका गांव के पास हाईवे पर खड़े ट्रक और कार की टक्कर में हुई दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ये सभी बागेश्वर से दर्शन कर घर वापस जा रहे थे। हमारे फतेहपुर प्रतिनिधि ने बताया कि वहां के रिंद नदी में नहाने गए 4 युवकों की डूबने से मौत हो गई जबकि अन्य 2 को गोताखोरों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं शाहजहांपुर जिले के कांट इलाके में कल सुबह

0: डंपर और ऑटो की टक्कर में दंपत्ति सहित 3 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में 20 मई से कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। साथ ही विभाग द्वारा कल और 20 मई को प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में दिन के समय कुछ स्थानों पर तेज लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच प्रदेश में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और लू को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि संवेदनशील जिलों में विशेष निगरानी रखी जाए। सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित किए जाए। मुख्यमंत्री द्वारा अस्पतालों में दवाओं, बेड और डॉक्टरों की उपलब्धता बनाए रखने के साथ एम्बुलेंस सेवाओं को भी सक्रिय करने का निर्देश दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, ये सिर्फ उनका नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को किया विभागों का आवंटन। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बने एमएसएमई विभाग के मंत्री। प्रदेश में अनुदेशकों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर देगी सरकार। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह और चेक वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुए अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत, 5 घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार। जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ, यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर।

0: भैयाओं, कल ते अधिक मास शुरू है गयो है। आपको बता दें, ब्रज क्षेत्र में अधिक मास, जाको पुरुषोत्तम मास या मल मास भी कहो जाए है, को बहुत ही दिव्य और अलौकिक महत्व है। यह हर 3 साल में एक बार आवे है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह पवित्र महीना में सभी देवी देवता और तीर्थ ब्रज में निवास करे हैं। कहो जाए है कि ब्रज भूमि में या दिना पूजा पाठ और तप दान करवे ते 100 गुना अधिक लाभ होवे है। कहीं का मतलब है कि यह महीना बेहद महत्वपूर्ण है भक्तन के काजे। तो आओ भैया, अब आपको ब्रज माधुरी के कार्यक्रम में सुनवा में काव्य पाठ। कवि हैं गोपाल प्रसाद गोप।
1: आजादी को बज रहो अमृत भर के ढोल,

पुत्र भारत मां कूं समर प्यो काहू ने निज पुत्र भारत मां कूं समर प्यो काहू ने निज पुत्र।

भारत मां कूं बनाई, भारत मां कूं बनाई निज तन की दीवार। उन्होंने कभी कीन्हों नहीं हिंदू मुस्लिम भेद, छोटी बातन पे लड़े हो ये हृदय में खेद, छोटी बातन पे लड़े हो ये हृदय में खेद। अब मैं यही विषय पे एक मुक्तक आपको सुना रहे हूं। हम है नसीब बारे आजादी हमने पाई, हम है नसीब बारे आजादी हमने पाई, पूरे जगत में इज्जत हमने घनी कमाई। पर बात याद रखियो बड़ी कीमती परी है, पर बात याद रखियो बड़ी कीमती।

किरण ने तन मन की बाजी है लगाई, याकू बिरन ने तन मन की बाजी है लगाई। और अब मैं दो घनाक्षरी छंद या विषय वस्तु पे प्रेषित कर रहे हूं कि गेहते बिरत निज सुख को विचार त्याग, छोड़े राग अनुराग बीरन नमन है। गेहते बिरत निज सुख को विचार त्याग, छोड़े राग अनुराग बीरन नमन है। और भारत की आजादी को लियो दृढ़ संकल्प, छोड़े दीप दान फाग बीरन नमन है। उनकी समर्पण ते भय सब निर्द्वंद, जग गए भाग उन बीरन नमन है। और जीवन बितायो कठिनाई में हमारे ताई, मात भारती के लाल वीरन नमन है। जीवन बितायो कठिनाई में हमारे ताई, मात भारती के लाल वीरन नमन है। और भैया मैं अपने काव्य पाठ में यही आशा रखूं कि हम आजादी को दुरुपयोग नहीं करें। जाके विषय में एक छंद प्रस्तुत है कि आजादी के ताई निज होम दिए निज प्राण, उन कोले नाम हम नाम कमा रहे हैं। और सुमिरे जो उनको तो मिले हमें सम्मान, उन्होंने जो जोरो हम बाकू गमा रहे हैं। आज की तो स्थिति विचित्र है हमारी गई, ऊक चूक बोल डोल सवे भ्रमा रहे हैं। और आजादी को है रहे हो गलत उपयोग, आज स्टेडियम में सभ्य कुत्ता घुमा रहे हैं। आजादी को है रहे हो गलत उपयोग, आज स्टेडियम में सभ्य कुत्ता घुमा रहे हैं। और यह विषय वस्तु को लेके एक गीत प्रस्तुत कर रहे हूं। आजादी को अमृत महोत्सव मिलके हमें मनानो है, आजादी को अमृत महोत्सव मिलके हमें मनानो है। भारत देश जगत में फिरते विश्व गुरु बनवानो है, भारत देश जगत में फिरते विश्व गुरु बनवानो है। आजादी के ताई कितने ने जान की बाजी लगा दई, आजादी के ताई कितने ने जान की बाजी लगा दई। बरसन ते डेरा डार रखे अंग्रेजी सेना भगा दई, बलिदान इनके बलिदानन को, बलिदान इनके बलिदानन को हमको कर्ज चुकानो है। भारत देश जगत में फिरते विश्व गुरु बनवानो है। आजादी को अमृत महोत्सव मिलके हमें मनानो है, भारत देश जगत में फिरते विश्व गुरु बनवानो है। भारत एक अखंड राष्ट्र याकू समृद्ध करवाओ जी, भारत है एक अखंड राष्ट्र जा

सावधान नकली जन सेवक गली गली में घूम रहे, सावधान नकली जन सेवक गली गली में घूम रहे, उल्टी

विधि समझाए रहे, अपनी मस्ती में झूम रहे, पढ़ के निज इतिहास उन्हें सेवा को पाठ पढ़ानो है, पढ़ के निज इतिहास उन्हें

भैया अभी आप सुन रहे थे गोपाल प्रसाद गोप से काव्य पाठ, और आओ अब आपको सुनवा में यह लोकगीत।

0: सही उपाय अपनाएं, लू से खुद को बचाएं।
1: जी हाँ, बाहर निकलते वक्त गमछा, टोपी, चश्मा एवं छाती का प्रयोग करें। चेहरे, सिर और गर्दन पर गीला कपड़ा रखें।
0: छाछ, लस्सी, नमक, चीनी का घोल, नींबू पानी और आम के पना का सेवन करें तथा संतुलित, हल्का व नियमित भोजन करें।
1: बार बार पानी पिएं, ठंडे पानी से नहाएं, हल्के सूती कपड़े पहनें, दिन में खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें।
0: चाय, कॉफी जैसे गर्म पेय का सेवन न करें। तेज धूप में बाहर न निकले। चक्कर या घबराहट आने पर डॉक्टर को दिखाएं।
1: पालतू जानवरों को छांव में रखें और उन्हें खूब पानी पीने दें।
0: ये सूचना उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।

0: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
1: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
0: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के

0: सेवन से बचें।
1: अधिक व्यायाम ना करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
0: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
1: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
0: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: ब्रज माधुरी कार्यक्रम अब सम्पन्न हुए हैं।

0: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
2: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक की संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
3: आतंकवाद पूरी

0: मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
2: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय UDF मंत्रिमंडल की घोषणा की।
6: कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए UDF कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई जयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
7: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह

0: मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियाँ अनुकूल हैं।
2: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल V.A. वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट UG प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी, रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने HD देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और AI में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स, 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। हॉर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ, नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा, अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती के फैसले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। बोर्ड ने कहा, दोबारा कॉपी जंचवाने में एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटाई जाएगी। NDA सरकारों पर लोगों का भरोसा, गृहमंत्री का यह बयान हिंदुस्तान में है। गुजरात के दौरे पर गए गृहमंत्री ने हाल के विधानसभा चुनावों में

0: भाजपा की जीत पर कहा, भाजपा और एनडीए की सरकारें आज देश के 80% भूभाग पर शासन कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा 10 करोड़ का कर्ज, नहीं देनी होगी कोई गारंटी। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी देगी ऋण। तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा पर नव भारत टाइम्स संपादकीय में लिखा है, ऐसे प्रयोग दूसरी जगहों पर भी हुए लेकिन खास सफल नहीं रहे। दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत मेहनत से जनसंख्या नीति लागू की थी, शिक्षा और जागरूकता पर बाकी राज्यों के मुकाबले अधिक खर्च किया गया, यही कारण है कि आज दक्षिण के राज्य आगे खड़े दिखते हैं। पत्र लिखता है, आबादी को बढ़ाने की नाकाम कोशिशों के बजाय मौजूदा कार्य बल के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान देने होंगे।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. India and Sweden decide to elevate their bilateral ties to strategic partnership. Prime Minister Modi invites Swedish companies to enhance their presence in India under Make in India, National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission initiatives. Congress leader V.D. Satheeshan to be sworn in as Chief Minister of Keralam today. Southwest monsoon likely to hit Keralam coast on 26th of this month, 6 days ahead of its normal date. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Rajasthan Royals by 5 wickets in Delhi. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi held talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg last night. Prime Minister Modi was awarded Sweden's highest honour, the Royal Order of the Polar Star, Degree Commander Grand Cross, in recognition of his exceptional contributions to bilateral ties and his visionary leadership. The award is the highest distinction that can be given to a head of government. This is Prime Minister Modi's 31st international honour. During the delegation-level talks, the two leaders reviewed the full spectrum of India-Sweden relations and agreed to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership, marking a major milestone in the relationship. The two leaders also agreed to identify new opportunities in the spirit of the India-EU strategic partnership and recently concluded India-EU FTA for the benefit of their people. We have more details on this from our correspondent in Sweden, covering the Prime Minister's visit.
3: Central to the visit was the adoption of a joint action plan, which aims to double bilateral economic exchange within 5 years. Under the theme India-Sweden Stronger Together toward 2047, both nations committed to holding a bilateral trade and investment summit in India in 2027. In the realms of technology and climate action, the visit secured significant agreements to co-create solutions for the 21st century. Both nations launched the Joint Innovation Partnership 2.0 and agreed to establish a virtual India-Sweden Joint Sciences and Technology Center, focusing on AI, 6G, quantum computing and life sciences. Furthermore, Sweden-India Technology and AI Corridor will be strengthened to connect the two nations' startup ecosystem. On the climate front, the leaders announced the third phase of the leadership group for industrial transition, significantly expanding cooperation in green steel and low-carbon industrial transformation. Defense and security cooperation have transitioned from a traditional buyer-seller model to a long-term industrial partnership, with Swedish companies actively investing in India's defense production corridors. Prime Minister specifically thanked Sweden for its support following the Pahalgam terror attack, reaffirming a joint commitment to global stability. Finally, the visit celebrated a shared intellectual legacy and broader regional cooperation.

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

ओ माय गॉड, फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना कैलाश खेर और मीत ब्रदर्स की आवाज़ों में। गीत कुमार का था, संगीत था मीत ब्रदर्स और अनजान का।

अभी आप सुन रहे थे सत्यमेव जयते। इस फिल्म का गीत आवाजें थी आतिफ असलम और तुलसी कुमार की। गीत के बोल लिखे थे कुमार ने, धुन बनाई थी रोचक कोहली ने।

0: प्रीतम के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना राहत फतेह अली खां और तुलसी कुमार की आवाज़ों में गाया ये गीत, जिसे हमने लिया था वंस अपॉन ए टाइम। कार्यक्रम के बाकी गाने आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं पीके फिल्म से, जिसे गाया है स्वरूप खान और साथियों ने।

स्वानंद किरकिरे के इन बोलों की धुन बनाई थी अजय अतुल ने। आवाजें थी स्वरूप खान और साथियों की। फिल्म का नाम था पीके। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं सैनिक फिल्म से। आवाजें हैं कुमार सानू और आशा भोसले की।

समीर के लिखे इस गाने की धुन बनाई थी नदीम शमर ने। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब समाप्त होता है।

0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। प्रातः के 9 बजने को हैं और आइए अब आपको सुनवाते हैं हिंदी भेंट वार्ता के अंतर्गत कार्यक्रम। विषय है नदियां हमारी जीवन धाराएं। वार्ताकार हैं महेश चंद्र गोस्वामी। इनसे बातचीत कर रहे हैं ओपी सिंह।
1: रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। जिस प्रकार से शरीर में रक्त का संवहन नस नाड़ियां करती हैं, उसी प्रकार धरती पर जल का संवहन हमारी नदियां करती हैं। नदियां सदैव जीवन दायिनी रही हैं, प्रकृति का अभिन्न अंग है नदियां। नदियां जहां जहां बहती हैं, वर्षा के स्वच्छ जल को एकत्र करके एक बड़े भूभाग में फैला देती हैं। यहाँ रहने वाले जीव जंतु पेड़ पौधे अपना जीवन पाते हैं। इनके जल से मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार लहलहाती फसलें पैदा करता है, क्योंकि जल जीवन के लिए आवश्यक है। यही कारण है अधिकांश प्राचीन सभ्यताएं जनजातियां नदियों के समीप ही विकसित हुई हैं। भारत की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता नदी के पास ही विकसित हुई है, जो सिंधु नदी थी। संपूर्ण विश्व के बहुत बड़े भूभाग में पीने का पानी और घरेलू उपयोग के लिए जल नदियों से ही प्राप्त किया जाता है। आर्थिक दृष्टि से नदियां बहुत उपयोगी होती हैं, क्योंकि उद्योगों के लिए आवश्यक जल नदियों से आसानी से प्राप्त हो जाता है। कृषि के लिए सिंचाई हेतु आवश्यक जल नदियों द्वारा प्रदान किया जाता है। नदियां खेती के लिए उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी की अच्छी स्रोत हैं। नदियां न केवल जल प्रदान करती हैं, बल्कि घरेलू एवं औद्योगिक गंदे अपशिष्ट जल को अपने साथ बहाकर ले जाती हैं और प्रकृति की सफाई करती हैं। नदियों में मत्स्य पालन से मछली के रूप में खाद्य पदार्थ भी प्राप्त होता है। नदियों पर बांध बनाकर उन पर पन बिजली घर हाइड्रो पावर प्लांट स्थापित कर बिजली का उत्पादन किया जाता है। पर्यटकों के लिए भी नदियों में कई मनोरंजन के साधन जैसे बोटिंग एवं रिवर राफ्टिंग आदि से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलता है। संसार के विभिन्न महाद्वीपों में अनेक नदियां पाई जाती हैं, जैसे एशिया महाद्वीप में गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, आमूर, लेना, कावेरी, नर्मदा, सिंधु, याक्सी, वांगो नदियां हैं। अफ्रीका महाद्वीप में नील, कांगो, नाइजर, जम्बेजी नदियां पाई जाती हैं। उत्तरी अमेरिका में मिसिसिपी, हडसन, डेलावेयर, मैकेंजी, वहीं दक्षिणी अमेरिका में अमेजन नदी प्रमुख है। यूरोप में वोल्गा, टेम्स और ऑस्ट्रेलिया में मरे एवं डॉर्लिंग विश्व विख्यात नदियां हैं। भारतीय जनजीवन में नदियों का महत्व इसी से जाना जाता है कि हमारे धार्मिक, आर्थिक, व्यापारिक, पर्यटन, स्वास्थ्य, कृषि, शैक्षिक, वैज्ञानिक, औषधि, पर्यावरण, गीत संगीत, फिल्में, मनोरंजन, न जाने कितने क्षेत्र हैं जो हमारी नदियों से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। आध्यात्मिक स्तर पर यह माना जाता है कि पानी की स्वच्छ करने की शक्ति आंतरिक बाधाओं को दूर करने में सहायता करती है। जहां हम घरों एवं अपने परिवेश को वैज्ञानिक चिकित्सा कारणों से स्वच्छ भी पानी से धोकर करते हैं, वहीं हम अपनी नदियों के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं तो इन नदियों का जल

हमारे नकारात्मक विचारों अर्थात पापों से मुक्त करता है। फिर भी नदियों का पानी पवित्र ही रहता है। नदियों का जल वह पवित्र मार्ग है जो पापियों को पवित्र, छोटों को बड़ों से, स्त्री को पुरुषों से, सभी को एक साथ जोड़कर बिना किसी रंग भेद, लिंग भेद, जात भेद के सामाजिक भेदभाव को दूर करने की शिक्षा देता है, जिससे सभी लोग सकारात्मक आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाते हैं। यदि कोई मनुष्य जिस मनोरथ और जिस ध्यान से नदी में स्नान करता है, उसके वही मनोरथ पूर्ण होने लगते हैं। इसीलिए नदियों को देवी और देवताओं का दर्जा दिया गया है। गंगा यमुना नदी के निश्चित औषधीय गुण, पर्वतों की हिमालय श्रृंखला में पाए जाने वाली औषधीय जड़ी बूटियों की उपस्थिति से बढ़ते हैं। इन नदियों के जल में रेडियो धर्मता सूक्ष्म स्तर पर पाई जाती है, इसलिए इन नदियों का पानी स्वतः ही अनेकों रोगों का उपचार कर देता है। हमारे भारत देश में नदियों की पूजा करने की परंपरा प्राचीन काल से है। नदियों को देवी देवताओं के समकक्ष माना गया है। अनेक नदियों को देवी स्वरूप मानकर इनकी पूजा करना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। आज भी लगभग सभी नदियों को माँ के रूप में सम्मान दिया गया है। गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय के उद्घोष बड़े ही सामान्य और जोश से हमारे समाज में दिए जाते हैं। दूसरी नदियों को भी गंगा यमुना से कम महत्वपूर्ण नहीं माना गया है। ऐसा माना गया है नर्मदा माता को देखने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, और कहा जाता है नर्मदा का हरेक कंकड़ साक्षात है शिव शंकर। अतः इन कंकड़ों को अपने घरों में और अपने घरों के पूजा घरों में स्थापित करने के लिए लोग अपने अपने घरों के लिए ले जाते हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारका, वैशाली, तक्षशिला, गया, हमारे ये सभी नगर नदियों के किनारे स्थित हैं। ऐसी मान्यता है कि सप्तऋषि आकाश में तारों के रूप में हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। वैसे ही भारत माता की नदियां जैसे गंगा, सरस्वती, सिंधु, गोदा, कृष्णा, महानदी, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, शिप्रा, नर्मदा च गंडकी, ये सब भारतवर्ष की नदियां अपने भक्तों का सुख समृद्धि के लिए अवतरित हुई हैं। गंगा नदी को स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर लाने की भागीरथ द्वारा महादेव की तप की कथा पूरे देश में प्रचलित है। देश में नदियों के योगदान एवं महत्व इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि वाराणसी आज विश्व के प्राचीनतम नगर, हमारी सनातन संस्कृति का शिक्षा केंद्र एवं प्राचीनतम जीवित सभ्यता के रूप में जाना जाता है, हमारी गंगा मैया के तट पर बसा हुआ है। इसके अलावा प्रयाग, अयोध्या, मथुरा, नासिक, उज्जैन, गुवाहाटी, गया, पटना, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, सूरत, हैदराबाद, मैसूर, हुबली आदि धार्मिक, शैक्षिक, पर्यटन, सांस्कृतिक एवं व्यापारिक सभी नगर किसी न किसी नदी के तट पर बसे हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि हम नदियों के विकास का संबंध प्राचीन काल से ही हमारी नदियों से हमारी सभ्यता का रहा है। अपनी इन्हीं मान्यताओं के कारण हम इन नदियों को पवित्र बनाए रखने में एक लंबे समय तक सफल भी हुए हैं। इनके प्रति सम्मान इसलिए भी जरूरी है कि हम भविष्य में इनकी स्वच्छता एवं पवित्रता को चिरकाल तक बनाए रख सके हैं। ये हमारी संस्कृति के ही कारण संभव हुआ है। हमारी इन मान्यताओं का लोहा अंग्रेजों ने भी माना है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज जब भारत आते थे तो अपने साथ गंगा जल ले जाते थे, क्योंकि वो ये भली भांत जानते थे कि यह जल कभी खराब नहीं होता है। वे जल को अपने घर जाकर भी फेंकते नहीं थे, बल्कि अपने घरों में रखते थे। कभी किसी के चोट लग जाती थी तो घाव साफ करने के लिए भी इस गंगा जल का प्रयोग करते थे, क्योंकि वो जानते थे इसके औषधीय गुण क्या क्या हैं। परंतु बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है, स्वतंत्रता के बाद से शुरू हुए अनियोजित विकास, दिशाहीन औद्योगिकीकरण के कारण हमारी नदियों को बहुत नुकसान पहुंचाया गया है। इससे हमें सिर्फ सामाजिक ही नहीं आर्थिक हानि भी उठानी पड़ रही है। नदियों पर आधारित कृषि, पर्यटन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। नदियों पर बड़े बांधों की परियोजनाओं के कारण नदियां सूख रही हैं। बहाव रुकने से प्रदूषण स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इससे कृषि योग्य भूमि भी मृदा प्रदूषण से ग्रस्त होने लगी है। कृषि के उपज की गुणवत्ता भी खराब हुई है। परिणाम स्वरूप गांव, शहर, किसान, व्यवसायी सबकी सेहत पर खराब असर पड़ रहा है। नदियों के तटीय क्षेत्रों में अनियोजित निर्माण एवं खदान ने नदियों के प्राकृतिक स्वरूप को

0: समाप्त कर दिया है। नदियों के तटीय क्षेत्र, डूब की भूमि, वेटलैंड आज अवैध निर्माणों से भर गए हैं। वहां की आबादी नदियों में कूड़ा करकट डालकर प्रदूषित कर रही है। बड़े होते नगरों की सीवर लाइनों से प्रदूषित करके खतरनाक स्तर पर ले आए हैं। इस कारण अनेकों नदियां विलुप्त होने के कगार पर हैं, अथवा ये नदियां गंदे नालों के रूप में परिवर्तित होती जा रही हैं। इनका असर प्राकृतिक संतुलन पर पड़ रहा है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार जीवनदायिनी कही जाने वाली नदियां खुद संकट में हैं। देश में 521 नदियों के पानी की मॉनिटरिंग करने वाले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार देश की 198 नदियां ही स्वच्छ पाई गई हैं। इनमें अधिकांश छोटी एवं मौसमी नदियां हैं, जबकि बड़ी नदियां भयंकर प्रदूषण की चपेट में हैं। लोगों के द्वारा काफी समय से सीवर, औद्योगिक कचरा, पॉलीथिन आदि इन नदियों में डाला जा रहा है, जिससे भारत की नदियां दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं। दिल्ली में यमुना, कानपुर में गंगा और मुंबई में मीठी नदी अत्यंत प्रदूषित है। इन नदियों का पानी ही नहीं बल्कि इनके आसपास की भूमि भी बंजर होती जा रही है। देश की अर्थव्यवस्था एवं नागरिकों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। एक तरफ नदियों को माता कहकर हम पूजा करते हैं, दूसरी तरफ सीवर कचरा सब डालकर हम उन्हें गंदा करते जा रहे हैं। ऐसे में नदियों को पूजने का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता है। हम नदियों को प्रदूषित करने के कारक खुद बनते जा रहे हैं। केवल कर्म कांडों से ही नदियों को खुशी मिलने वाली नहीं है, और ना ही कर्म कांडों से हमारा कल्याण होने वाला है। इसलिए हमारा उत्तरदायित्व है इन नदियों को स्वच्छ करें। इस समस्या के समाधान के लिए सबसे पहले नदियों के किनारों से, नदियों के डूब क्षेत्र तथा वेटलैंड से अवैध निर्माण को हटाना ही होगा, जिससे नदियों को फैलने का पूरा मौका मिले। इसके साथ ही देश की नदियों में शुद्ध पानी, बारिश के पानी को रोकने के लिए भी हमें बड़े कदम उठाने होंगे। प्रदूषण से बचाने के लिए नदियों को परस्पर जोड़ा जाना भी एक श्रेष्ठ उपाय है। जहां एक ओर कुछ क्षेत्रों में बाढ़ से निजात मिलेगी, तो दूसरी ओर सूखती हुई नदियों में शुद्ध जल मिलेगा, इसलिए जल का समान वितरण हो सकेगा। नदियों पर हर 50 किलोमीटर पर छोटे छोटे बांध बनाए जाने चाहिए, जिससे संचित बरसाती जल स्वच्छ हो सके। नदियों के तट पर बड़ी संख्या में पेड़ पौधे लगाए जाएं, वृक्षारोपण हो, जिससे अच्छी वर्षा की संभावना बढ़े। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बड़े पैमाने पर व्यवस्था की जाए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो वेस्ट वाटर को साफ करें, उनकी व्यवस्था बड़े स्तर पर हर नगर में, जो गंगा नदी या यमुना नदी या किसी भी नदी के किनारे हैं, वहां पर स्थापित किए जाएं, जिससे उनमें ट्रीटेड वाटर ही छोड़ा जाए, जिससे ये नदियां प्रदूषण से बच सकें। हर औद्योगिक प्रतिष्ठान को अपने यहाँ पॉल्यूशन लेस डिवाइस स्थापित करनी चाहिए, जिससे कि जल को खुद ही वो ट्रीट करके नालों में छोड़ें, जिससे नदियों को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। तो उपायों से देश में पीने के पानी की कमी की समस्या भी हमेशा के लिए समाप्त होगी, और हमारी नदियां भी प्रदूषण रहित सुरक्षित रह सकेंगी। इसके लिए स्वयं हम सबको संकल्पबद्ध होना ही होगा, स्वयं से किया संकल्प भी निभाना ही होगा। अपने आसपास के लोगों को जागरूक करने के उपाय भी करने होंगे। यही नदियों की सच्ची सेवा है, प्रकृति की सच्ची सेवा है। नहीं तो बाढ़, सूखा, जल संकट, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण ऐसी समस्याएं, और यही नहीं प्राकृतिक आपदाएं भी झेलनी होंगी। हम पहले से ही सचेत होकर के जल के अमूल स्रोतों को हम संरक्षित कर सकते हैं। हमारा पहला धर्म अपनी यमुना मैया को बचाने को संगठित एवं जागरूक होना है। हम जन सामान्य की सबसे बड़ी भूमिका है, हम भी उसमें एक भूमिका अदा करें।
1: हिंदी वार्ता के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे नदियां हमारी जीवन धाराएं, इस विषय पर वार्ता। वार्ताकार थे महेश चंद्र गोस्वामी।

FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। जिले की हलचल। जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए बरेली और सीतापुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बरेली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नाजिया अंजुम का।
1: बरेली में अब कोई भी फरियादी अपनी समस्या का समाधान पाए बिना वापस नहीं लौटेगा। ये संभव हुआ है ऑनलाइन मॉनिटरिंग के माध्यम से। बरेली जिले में सभी तहसीलों की 10 से 12 के बीच जनता दर्शन की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसमें सभी तहसीलदारों BDO SDM को 10 से 12 के बीच अपने दफ्तर में बैठना है, जिसकी मॉनिटरिंग जिलाधिकारी बरेली अपने ऑफिस से करते हैं। यही नहीं, अगर जिलाधिकारी कार्यालय में किसी तहसील का कोई मामला आता है तो जिला अधिकारी बरेली संबंध अधिकारी से सीधे जुड़कर उस व्यक्ति की समस्या का समाधान करते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से जनता दर्शन की लाइव मॉनिटरिंग के आदेश को बरेली जिले में बखूबी पूरा किया जा रहा है। जिलाधिकारी कार्यालय की भी मॉनिटरिंग लखनऊ से की जाती है। इसके साथ ही बरेली जिले की सभी तहसीलें बरेली जिला मुख्यालय से जुड़ती हैं, जिसमें हर फरियादी को अपनी समस्या का समाधान मिलता है। जनता दर्शन के दौरान 10 से 12 के बीच जिलाधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी जनसुनवाई में मौजूद रहते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या अधिकारियों के सामने रखते हैं। जिलाधिकारी बरेली का कहना है कि जनता दर्शन का उद्देश्य आम आदमी की समस्याओं का समयबद्ध और निष्पक्ष समाधान करना है, ताकि लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। लाइव मॉनिटरिंग के चलते अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा रही है और हर शिकायत की प्रगति पर नजर रखी जा रही है।
2: मुख्यमंत्री कार्यालय से यूपी के 75 जिलों के जो जिलाधिकारी के कार्यालय में जो जनता दर्शन कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, उसकी लाइव मॉनिटरिंग की जाती है, जिसमें सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी ये देखते रहते हैं कि जनता दर्शन में आने वाले जो हमारे फरियादी हैं, शिकायतकर्ता हैं, उनकी शिकायतों का किस प्रकार से सुनवाई हो रही है, किस प्रकार से आम जनमानस के प्रति व्यवहार है और किस प्रकार से उनकी उचित गुणवत्ता के साथ उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए और उससे जो रिजल्ट प्राप्त हो रहे थे उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जिला प्रशासन कह सकते हैं कि एक नया नवाचार किया है। हम लोगों ने अपने यहाँ भी एक बड़ी स्कीम के माध्यम से जितने भी हमारे 6 तहसीलों के SDM हैं, उनके कार्यालय, जो हमारे पास 15 विकास खंड हैं, उनके विकास खंड अधिकारी के कार्यालय और 19 हमारे पास जो हैं वो नगर पालिका और नगर निगम के EO के कार्यालय हैं, उन सभी को हमने अपने यहाँ जोड़ते हुए उनकी भी लाइव मॉनिटरिंग प्रारंभ किया है। तो लाइव मॉनिटरिंग के दौरान कार्य के जो आम जनमानस के प्रति उनकी किस प्रकार का व्यवहार है, किस प्रकार से वो शिकायतों को सुन रहे हैं, किस प्रकार से समस्या का समाधान कर रहे हैं, इस पे लगातार हम लोग नजर रख रहे हैं और यही वजह है कि कार्य की जो गुणवत्ता है लगातार उच्चतर होती जा रही है।
1: बरेली में धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाई मिलने जा रही है। गत दिनों उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने नाथ कॉरिडोर में कराए जा रहे कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। जिले में 98 करोड़ की लागत से सभी नाथ मंदिरों का कायाकल्प कराया जा रहा है, जिसमें त्रिवटी नाथ, धुपेश्वर नाथ, अलकनाथ विशेष रूप से शामिल है। इन मंदिरों में सरकार द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है, ताकि धार्मिक पर्यटन को एक नई दिशा मिल सके। एक कार्यक्रम में पहुंचे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि पर्यटन को प्रदेश में नई ऊर्जा मिल रही है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा ईंधन बचाने की अपील पर बोलते हुए कहा कि ये राष्ट्र हित का काम है। बरेली जिले में जल्द ही इको फ्रेंडली नगर वन बनने वाला है, जिसका शिलान्यास गत दिनों वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने

किया। ये नगर वन शहरवासियों के लिए एक प्राकृतिक रमणीय स्थल बनने जा रहा है, जिसमें प्रकृति का खास ध्यान रखा जाएगा। इस नगर वन में बच्चों के लिए किड जोन भी विकसित किया जाएगा, जिससे बच्चे यहाँ आकर प्रकृति को समझ सके। सबसे बड़ी बात यह है कि इस इको फ्रेंडली नगर वन में सब कुछ प्राकृतिक ही प्रयोग किया जाएगा, कॉन्क्रीट और ईंट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। रोहिलखंड विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए दिव्यांग

0: घर बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने विश्वविद्यालयों को समाज से जोड़ते हुए कम से कम 5 गांव गोद लेकर उन्हें विकसित करने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी केवल किताबों तक सीमित नहीं है, उन्हें गांव में जाकर महिलाओं, बच्चों और किसानों की समस्याएं सुननी चाहिए, उनके समाधान में भागीदारी निभानी चाहिए। टीबी मुक्त भारत अभियान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक 4 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्यपाल ने कहा कि हर विश्वविद्यालय को राज्यों की स्थापना दिवस मनाने चाहिए, जिससे छात्रों को देश की विविधता और विकास मॉडल की जानकारी मिले। उन्होंने अपने गुजरात कार्यकाल का अनुभव साझा करते हुए बताया कि ग्रामीण महिलाओं बड़े स्तर पर परीक्षा अभियान चलाया गया, जिसमें 1.5 करोड़ महिलाओं की स्क्रीनिंग हुई और हजारों को समय से इलाज मिला।
1: बरेली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सीतापुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है दीपक श्रीवास्तव का।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में सीतापुर स्थित पवित्र तीर्थ स्थल नैमिषारण्य को भव्यतम स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में पौराणिकता और नवाचार को समाहित करते हुए नैमिष स्थित पुरानी धर्मशाला को आधुनिक शिल्प ग्राम इंटीग्रेटेशन सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। खास बात यह है कि विरासत भवन की मूल संरचना को सुरक्षित रखते हुए उसे आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। प्रदेश सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 372 करोड़ रुपए की मंजूरी देते हुए पहली किस्त के रूप में 2.98 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि नैमिषारण्य के इस इंटरप्रिटेशन सेंटर में श्रद्धालुओं को स्थानीय इतिहास, धार्मिक महत्व और सांस्कृतिक विरासत की विस्तृत जानकारी मिलेगी। इसके लिए भवन के भीतर अलग अलग थीम पर आधारित गैलरियां बनाई जाएंगी, जिनमें कॉस्मिक ऑर्डर, जीवन का विकास, सभ्यता का उदय, महाकाव्य और ज्ञानोदय जैसे विषयों को रोचक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। परियोजना के तहत पूरे परिसर का समग्र विकास किया जाएगा, जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। योजना अंतर्गत आधुनिक प्रवेश लाबी, आकर्षक एम्फी थिएटर, मूर्ति कला मार्ग और स्वच्छ शौचालय ब्लॉक विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही मौजूदा भवन का नवीनीकरण और नई इमारत का निर्माण किया जाएगा, जिससे इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि पूरे क्षेत्र का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वातावरण और अधिक सजीव व आकर्षक बन सके। अपर मुख्य सचिव पर्यटन, संस्कृत एवं धर्मार्थ कार्य विभाग अमृत अभिजात ने बताया कि नैमिषारण्य जैसे पवित्र तीर्थ स्थल का समग्र विकास प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बताया यहाँ श्रद्धालुओं आधुनिक और समग्र सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ इसकी समृद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रस्तावित इंटरप्रिटेशन सेंटर के जरिए श्रद्धालुओं और पर्यटकों को एक ही स्थान पर इस पावन स्थल के धार्मिक महत्व, परंपराओं और इतिहास की व्यापक जानकारी मिल सकेगी। इससे न केवल धार्मिक पर्यटन को नई गति मिलेगी, बल्कि क्षेत्र में सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्राप्त होगी। सीतापुर के अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में स्वगणना 2027 के तहत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर सेल्फ सर्वे कराया गया। साथ ही सभी विभागों व विकास खंडों में विशेष अभियान चलाकर आधिकारिक सेल्फ इन्यूमिरेशन सुनिश्चित कराने तथा अधीनस्थों को प्रेरित करने के निर्देश दिए गए। नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु एवं विधायक मिश्रित रामकृष्ण भार्गव ने आम जनमानस मानस से अपील की कि स्वगणना 2027 में अपनी जनगणना संबंधी सूचनाएं डिजिटल माध्यम से निःशुल्क दे सकते हैं, जिससे जनगणना का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सकता है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन बहुत ही हर्ष उल्लास और उत्साह के साथ बाबा जंगली नाथ मंदिर के प्रांगण में आयोजित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात के सोमनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया गया, जिसका सजीव प्रसारण सभी आगंतुकों ने देखा। महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर इस पर्व को समारोह पूर्वक मनाया। जनपद सीतापुर में पुलिस लाइन परिसर से कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा बाबा जंगली नाथ मंदिर में समाप्त हुई, जहां सभी गणमान्य जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को बाबा जंगली नाथ का अभिषेक एवं पूजन अर्चन सम्पन्न कराया गया। सभी अतिथियों ने श्रद्धालुओं को संबोधित करने के साथ सजीव प्रसारण का अनुसरण किया। अंत में जिलाधिकारी द्वारा सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। संचालन राज शर्मा जिला व्यायाम शिक्षक ने किया। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद सीतापुर, वैभव त्रिपाठी एवं बड़े संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार।

0: एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
1: FM 102.2 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। प्रस्तुत कार्यक्रम आबोहवा, विषय है शहर का परिवहन, आलेख और वाचन है अरुण उपाध्याय का।
2: पर्यावरण प्रदूषण मेरी या आपकी समस्या नहीं है, ये हम सबकी समस्या है। पर्यावरण किसी एक तरह से प्रदूषित नहीं होता है, उसके बहुत से कारक हैं, जैसे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण इत्यादि। वायु प्रदूषण का मतलब है हवा का प्रदूषित होना। जो हवा हमारे आसपास होती है, जिसे हम श्वास से अंदर लेते हैं, उसका प्रदूषित होना वायु प्रदूषण कहलाता है। आज शहरों की सबसे बड़ी समस्या ही वायु प्रदूषण बन गई है। कंक्रीट और सीमेंट के बढ़ते जंगलों ने वृक्षों व हरियाली को जैसे निगल ही लिया है। मनुष्य अपनी जरूरत के हिसाब से प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहा है। मनुष्य की बढ़ती आबादी, उसकी जरूरतों के हिसाब से पेड़ों को वृक्षों को काटा जा रहा है, जिसके दुष्प्रभाव हमारे और आपके सामने हैं। बढ़ते हुए वाहनों, मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुओं इस तरह फैल रहा है कि आसमान भी अब हमें नीला ना होकर काला दिखाई देने लगा है। जी हाँ श्रोताओं, आजकल जो मोटर गाड़ियां, वाहनों से जो धुआं निकलता है वो वायुमंडल में जाकर जहरीली गैसें में बदल जाता है, जिससे हमारा आसमान नीला ना होकर हमें काला दिखाई देने लगता है। बढ़ते हुए उपकरणों से निकलने वाली गैसें भी वातावरण को दूषित करती हैं। वृक्षों के अत्यधिक कटाव के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा बढ़ रही है। श्रोताओं, बढ़ता हुआ ट्रैफिक, मोटर गाड़ियां हमारे वातावरण के लिए कतई सुखदायक नहीं है। हालांकि हम अपनी सुख सुविधाओं वह भौतिक जरूरतों को समझते हुए वाहनों की खरीदारी करते हैं और कुछ भी काम हो हम अपनी गाड़ी मोटर गाड़ियों का ही उपयोग करते हैं। इसलिए एक नागरिक होने के नाते हमें कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घरों के आसपास आने जाने के लिए गाड़ियों का उपयोग न करें। कम से कम 1 से 2 किलोमीटर अगर आपको कुछ काम होता है घर के आसपास, तो आप कोशिश करें कि आप अपने वाहन का उपयोग कतई ना करें। इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला, आपके पेट्रोल की बचत। दूसरा, वायुमंडल में गंदगी प्रदूषित ना करना। अगर आपकी गाड़ी काला धुआं फेंक रही है तो उसे तुरंत किसी मैकेनिक को दिखाएं। सिग्नल लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स पर अपनी गाड़ी का इंजन पूर्णतः बंद कर लें, जिससे आपके पेट्रोल की बचत तो होगी ही, साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस की मात्रा का रिसाव भी कम होगा। ज्यादा से ज्यादा कोशिश पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने की करें। श्रोताओं, सरकार ने हम सबके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं हर शहर में दी हुई हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन्हीं वाहनों का उपयोग करें। जल प्रदूषण, जी हाँ श्रोताओं, बढ़ते हुए ट्रैफिक, मोटर गाड़ियों, वाहनों के चलने से CO2 गैस उत्पन्न होती है। CO2 गैस के काले काले कण हवा में उड़ते हैं और उसके बाद आसपास जल में मिल भी जाते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब हम बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण की। हमारे आसपास चलती हुई मोटर गाड़ियां की आवाज, कारखानों से निकलने वाला शोर, लाउड स्पीकर से निकलने वाली तेज आवाजें, कर्कश आवाजें हमारे मन में तनाव और गुस्सा पैदा करती हैं। जी हाँ श्रोताओं, जितनी ज्यादा ध्वनि हमारे कानों में जाएगी, हम उतनी ही तनाव में और गुस्से में आएंगे। ध्वनि प्रदूषण से बचने के कुछ उपाय हैं, जैसे शहर के बीचों बीच शांति क्षेत्र मतलब साइलेंस जोन बनाना चाहिए। सरकार को पहल करनी चाहिए कि शहर के बीचों बीच साइलेंस जोन बनाया जाए, जहां से निकलने वाले मोटर गाड़ियां, वाहनों को बिल्कुल भी शोर शराबा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। स्कूल कॉलेजों के आसपास भी साइलेंस जोन होने चाहिए, जिससे बच्चों की पढ़ाई में भी कोई डिस्टरबेंस ना हो। कारखानों, मीलों को शहर से दूर लगाना चाहिए। कारखानों, मीलों से निकलने वाली कर्कश आवाज भी ध्वनि प्रदूषण का अहम कारक है। शादियों में बजने वाले तेज संगीत को अनुमति नहीं देनी चाहिए। बस हर नागरिक को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारियों की पालना पूरी ईमानदारी से करे, कम से कम मोटर गाड़ियों का उपयोग करे, जिससे आने वाले समाज में ना तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा फैल सके और हम भी स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ जल और स्वच्छ माहौल में अपने बच्चों को बढ़ते हुए देख सके।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबो हवा।

0: विषय था शहर का परिवहन, आलेख और वाचन था अरुण उपाध्याय का। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज दर्पण, प्रस्तुति है जितेंद्र सिंह की और संयोजन है OP सिंह का।
1: ब्रज दर्पण कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को जितेंद्र सिंह का नमस्कार। शिक्षा, सूचना और मनोरंजन से भरपूर आपके अपने कार्यक्रम ब्रज दर्पण में आप सभी श्रोता मित्रों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए एकाग्रता की जरूरत होती है। चाहे हम डॉक्टर बनना चाहें, चाहे सर्वश्रेष्ठ एथलीट बनना चाहें, महान गायक बनना चाहें, कलाकार बनना चाहें या एक सफल व्यापारी बनना चाहें, अगर हम किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो हमें अपने लक्ष्य की ओर पूरी तरह से एकाग्र होना ही होगा। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है उन्होंने एकाग्र होकर ही अपना काम किया। अर्जुन एकाग्रता के बल पर ही महान धनुर्धर बने थे, क्योंकि जैसे ही आप एकाग्र होते हैं तो एकाग्रता के फायदे आपको समझ में आने लगते हैं और इससे आप अपने लक्ष्य की ओर काफी तेजी से बढ़ रहे होते हैं। मन को एकाग्र किए बिना हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित नहीं हो सकते। जब हम अपने मन मस्तिष्क को पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित करके काम करते हैं तो निश्चित रूप से हम उसमें अपनी पूरी ऊर्जा दे पाते हैं और हम अपनी आशा के अनुरूप हमको उसके परिणाम मिलते हैं। विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी परीक्षार्थियों के लिए भी बस हम यही कहना चाहेंगे कि पूरी एकाग्रता के साथ अपनी परीक्षाओं की तैयारी करें और ऐसी सभी बातों से दूर रहें जो आपकी एकाग्रता को भंग करती हैं और अपना ध्यान केवल और केवल अपने लक्ष्य पर ही केंद्रित रहें, क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित हो जाते हो तो कोई भी बाधा, कोई भी मुश्किल आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। बस यही कहेंगे कि हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो, जीत ही जीत होगी आपकी, बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो।

0: श्रोताओं आपको बता दें कि आज दिनांक 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जा रहा है। इसका क्या महत्व है, सबसे पहले जानते हैं इस बारे में हमारे मथुरा संग्रहालय के उपनिदेशक श्री योगेश कुमार जी से। आपका हमारे कार्यक्रम वृक्षारोपण में हार्दिक स्वागत है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के बारे में हमारे श्रोताओं को आप क्या बताना चाहेंगे?
1: सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप आए हैं। बहुतों को समाज में मालूम नहीं है कि संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इवेंट्स है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रत्येक साल प्रत्येक वर्ष 18 मई को पूरे विश्व में इंटरनेशनल म्यूजियम डे अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। और संग्रहालय के बारे में जानते हैं, बहुत ही संवेदनशील सेंसिटिव चीज़ होता है, आने वाली पीढ़ियों को इससे बहुत प्रकार के ज्ञान मिलते हैं। उसी क्रम में पूरे विश्व में मनाया जा रहा है 18 को, तो उसी क्रम में हमें भी निर्देश दिए गए हैं। हमारे लिए तो बहुत बड़ा उत्सव है ये। इसमें हमारे यहाँ उसी भांति 11 बजे से हम लोग अपने स्तर से जितना संभव हो सकता है अधिक से अधिक समाज में बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए, पर्यटकों के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने वाले हैं।
0: तो आज सर क्या कार्यक्रम रहेंगे यहाँ संग्रहालय दिवस पर?
1: संग्रहालय दिवस पर आज के कार्यक्रम जो हमने रूपरेखा बना रखा पहले से एक स्ट्रक्चर, तो उसमें है भारत के प्रमुख संग्रहालय विषय चित्र प्रदर्शनी, मतलब एग्जीबिशन। जो हमारे भारत में जितने भी संग्रहालय हैं तो उनकी बिल्डिंग, उनके कुछ थॉट्स, उनके क्या सूचना देते हैं, वो एड्रेस उनका क्या है, इस पर हम एक छाया चित्र प्रदर्शनी का आयोजन करने जा रहे हैं। और पर्यटकों की सुविधा के लिए 2 यंत्र मंगाए गए हैं, जहाँ वो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक है, तो वो उसमें एक ही जगह पर खड़े होके जिसी झटके में आपको पूरा भ्रमण का टाइम नहीं है, तो हमारे उसी गजट में आप हमारे म्यूजियम को का पूरा विवरण, जितने स्कल्पचर लगाए गए हैं, डिस्प्ले किए गए हैं देखने हेतु, एक ही जगह खड़ा होकर उस पर देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते भी होंगे कि यूपी का सबसे बड़ा म्यूजियम है, इसमें उस गजट का भी उद्घाटन है, समारोह रखा गया है, और एक अतिथि के रूप में हम लोगों ने बुलाया है। फिलहाल तक चयन हो चुका है, पहला हमने उप कार्यपालक अधिकारी ब्रज तीर्थ विकास परिषद को माननीय अतिथि उद्घाटन के समय बुलाया है। और तीसरा जो हमारा कार्यक्रम है अपने म्यूजियम का रिलेटेड टू नेशनल, इस पर इवेंट्स पे हम एक छोटी डिजिटल दिखा देंगे मूवी बच्चों को, स्कूली छात्र छात्राओं को, तो उसे एक कहानी टाइप दिखाएंगे, तो उनको एक नॉलेज होगा कि हम क्या करते थे, कैसे क्या है, जो संग्रहालय संबंधित है रिलेटेड टू म्यूजियम उसको भी हम दिखा सकते हैं उस। तो एक तीसरा प्रोग्राम ये है। चौथा प्रोग्राम है संग्रहालय को, जैसे नहीं होता कि ये ज्ञान का वातायरण है, कोई इतिहास का विद्यार्थी होता है, शोध करने से लेकर ज्ञान रखने तक, प्रतियोगी परीक्षाओं को देने तक बहुत जानकारी संग्रहालय से ली जाती है, मतलब बहुत मिलती है यहाँ पे। लाइब्रेरी भी एक वो हमारे पास है बड़ी, यहाँ पर स्कल्पचर देख के भी आप जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि उसके नीचे कैप्शन लगता है, तो अगर बाय द वे कोई नहीं बताने वाला होता है तो उस कैप्शन से आप संक्षिप्त जानकारी उससे ले सकते हैं। यहाँ पर किसका संग्रह है, ये किस काम के लिए आता है, आपके पढ़ाई ज्ञान में कितना योगदान दे सकता है, परीक्षा दृष्टि से काफी ज्ञानवर्धक। तो ये 4 प्रोग्राम हमारे अब तक तय हुए हैं।
0: क्या कहना चाहेंगे हमारे सभी श्रोताओं से?
1: श्रोताओं से यही कहना चाहेंगे, इस समय एक बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश शासन की तरफ एक योजना चलाई जा रही है जो अब से 30 जून तक है, तो इसमें एक सुविधा दिया जा रहा है जिसे टिकट लगता है, एक फी लगती है छोटी सी
0: जी।
1: तो निःशुल्क अनवरत अपने परिवार के साथ, रिश्तेदारों के

0: साथ, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली लेकर पूरा, या किसी को भी बता के निःशुल्क भ्रमण कर सकते हैं और यहाँ कोई परेशानी नहीं है।
1: इसी क्रम में अब हमारे साथ हैं मथुरा संग्रहालय की सहायक निदेशक डॉक्टर प्रतिभा द्विवेदी जी। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का अपना क्या महत्व है और इसकी किस तरह से शुरुआत हुई?
2: इसका मूल उद्देश्य ये है कि हमारे जितनी भी सांस्कृतिक विरासत हैं, धरोहर हैं, उनके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक बनाएं, आम जनमानस से उनको अपनी जो सांस्कृतिक संपदाएं हैं उनके प्रति उनको जागरूक करें और साथ ही साथ उन्हें अपने धरोहर के प्रति शिक्षित भी करें, ताकि वो न सिर्फ संग्रहालयों में उपस्थित होकर के प्रदर्शनी के माध्यम से न सिर्फ प्राचीन जो वस्तुएं हैं और आधुनिक जो बहुमूल्य कलाकृतियां हैं, ऐतिहासिक महत्व की वस्तुएं हैं, उन्हें देखें, बल्कि उन्हें समझें और उन्हें आने वाले समय में और लगातार उसको संरक्षित और परिरक्षित करने का प्रयास भी करें। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो मनाया जाता है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ये वर्ष में चूंकि एक दिन मनाया जाता है, इसे हम सप्ताह समारोह के रूप में भी मनाते हैं। साथ ही साथ जो है डिस्प्ले कियोस्क का भी यहाँ पर शुभारंभ, खासकर मथुरा म्यूजियम में इसके अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जा रहा है, इसके दौरान किया जा रहा है।
1: मथुरा संग्रहालय के बारे में थोड़ा सा और बताएं, क्योंकि ये काफी पुराना संग्रहालय और बहुत बड़ा संग्रहालय, कब इसकी स्थापना हुई और किस तरह से इसकी शुरुआत हुई?
2: मथुरा संग्रहालय की स्थापना की अगर बात करें तो प्राच्य और पुरातत्ववेत्ता थे श्री एस एफ ग्राउस जी। 1872 के करीब मथुरा के वो जिलाधीश बने। इनके कठिन परिश्रम से 1874 के करीब इस संग्रहालय की स्थापना की गई थी। और इस संग्रहालय में हम देखते हैं कि सामान्यतः वैष्णव, बौद्ध और जैन धर्म की कलाकृतियां जो है वो प्रदर्शित की गई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे इस संग्रहालय की जो प्राचीन वस्तुओं की बात करें, जिनका प्रदर्शन हमको सामान्यतः गैलरी में देखने को मिलता है, तो वो पाषाण काल से जो प्रस्तर उपकरण माने जाते हैं कि आदिमानवों ने बनाना प्रारंभ किया, उसकी प्रदर्शनी से शुरुआत होकर के लगभग मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल, गुप्त काल से होते हुए बिल्कुल क्रमिक रूप से हमें जो है 12वीं शताब्दी, मध्यकाल और ब्रिटिश काल तक के हमको जो भी पुरावशेष है उनको अलग अलग गैलरियों में प्रदर्शित किया गया है। और ये जो मथुरा म्यूजियम है, इसमें मुख्यतः जो है कि मथुरा से जो प्रस्तर मूर्तियां मिली हैं, जो भी मृड मूर्तियां मिली हैं उनको प्रदर्शित किया गया है। यहाँ से कनिष्क की एक प्रतिमा मिली है जो कि स्थानक मुद्रा में है, और ये प्रतिमा का महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, जो इस म्यूजियम को और भी खास और विख्यात स्थिति प्रदान करता है। साथ ही साथ मथुरा म्यूजियम की जो अष्टकोणीय संरचना है वो भी काफी यूनिक है, जो कि इसे एक विशेष संग्रहालय के रूप में बनाती है। ये म्यूजियम ही है, ये संग्रहालय ही है जो हमें अवेयर बनाता है, और इसमें मथुरा संग्रहालय का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि मथुरा कला और गांधार कला जो है, सारनाथ कला, ये तीन ऐसी कलाएं हैं जिनकी अपनी ही शैली थी और प्राचीन समय में बहुत ही ज्यादा विश्वविख्यात थी। आज भी अगर हम बात करते हैं गांधार और सारनाथ कला की, तो हम मथुरा कला को नहीं छोड़ सकते हैं।
1: कुछ होता हूं, हमारे साथ रही मथुरा संग्रहालय की सहायक निदेशक डॉक्टर प्रतिभा द्विवेदी जी। इस संग्रहालय के बारे में आपने लगभग सब कुछ बता दिया, यहाँ किस तरह की कलाकृति इतिहास के विद्यार्थियों के लिए अध्ययन की दृष्टि से ये कितना महत्वपूर्ण है, और सबसे मुख्य बात कि हम चाहे कितने भी विकसित हो जाएं, चाहे हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, लेकिन हमारे भविष्य का कहीं ना कहीं आधार है वो हमारा इतिहास है। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, विकसित होना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमको अपने इतिहास से भी कुछ सीखना होगा, क्योंकि इतिहास ही हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य का आधार है। क्या कहेंगी आज इस दिवस के अवसर पर हमारे सभी श्रोताओं से और विशेष रूप से इतिहास के विद्यार्थियों के लिए?
2: मेरा तो यही कहना है कि आप सभी जितने भी इतिहास के विद्यार्थी हैं या इतिहास से इतर भी विद्यार्थी हैं, वो अपने संग्रहालयों, जितने भी आसपास के संग्रहालय हैं उनमें जाएं, जो भी प्रदर्शनी लगी है उनको देखें, समझें। वहाँ पे गाइड लेक्चरर लगे होते हैं, विधिका सहायक होते हैं, उनसे कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और अपनी संस्कृति से कुछ सीखने का, कुछ समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।

0: sépia.
1: श्रोताओं, कल दिनांक 17 मई 2026 को वृंदावन स्थित गीता शोध संस्थान में मथुरा की माननीय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी की अध्यक्षता में 21वीं सदी के भक्त प्रवर कविवर दास नारायण जी के कृष्ण भक्ति पद पुस्तक के विमोचन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, उद्योगपति एवं समाजसेवी श्री सुरेश चतुर्वेदी, जीएलए विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रोफेसर अनूप गुप्ता जी, सूचना सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री रहीस सिंह एवं वाणी प्रकाशन के प्रबंधक श्री अरुण माहेश्वरी सहित विभिन्न गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया।

0: पुस्तक के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए आप हैं पुस्तक के संपादक डॉक्टर उमेश चंद शर्मा।
1: मैंने जब संपादन किया तो बहुत गहराई से इस ग्रंथ का अवलोकन किया। मैं एक जिस छंद का प्रयोग यहाँ पे आपके समक्ष रख रहा हूँ वो छंद जो है मुक्तक की श्रेणी में आता है। मैंने बहुत इस बात का अध्ययन करने के बाद इस बात को कह रहा हूँ और इस एक मुक्तक के अंदर इन्होंने कितने भावों को समाहित किया है ये कवि का कला कौशल कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए मृदु मुस्कान मृदुल द्रकुटिच, मृदु मधुर मुस्कान है और द्रकुट भी मृदुल है। देखिए द्रकुट के ऊपर साहित्य में प्रचुर वर्णन किया गया है। द्रकुट के ऊपर फिल्मकारों ने भी फिल्म में जो गीत लिखते हैं उन्होंने भी बहुत सारे गीत लिखे हैं। अगर केवल द्रकुट के ऊपर हम एक अध्ययन करें तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी पुस्तक बनकर के सामने आ सकती है। मृदु मुस्कान मृदुल द्रकुट जो मस्तक तिलक लगाए, इसको कहते हैं सौंदर्य। ये सौंदर्य है। उसके बाद झूले पर क्षण मृदु आलिंगन राधा मन मुस्काई, झूले पर आलिंगन की बात कवि कर रहे हैं। झूले पर आलिंगन

0: ब्रज में ही होता है संभव, और कहीं झूले पर आलिंगन का संबंध स्थापित संभव नहीं है। क्यों? कि जो लोग जानते हैं श्रावण के महीने में जो झूला झूला जाता है उसमें अंगू पंगू डाल करके झूला झूलते हैं, और अंगू पंगू जब डाला जाता है पैरों में पैर मिलाकर के आगे जब छूटा दिया जाता है तो उसमें एक सहज रूप से आलिंगन बद्धता की बात आ जाती है, उसमें कोई कृत्रिमता नहीं है, उसको कुछ बनाया नहीं गया है, लेकिन स्वतः रूप से वो घटित होती है घटना। राधा मन मुस्काई, राधा का मुख नहीं मुस्कुरा रहा है, मन मुस्कुरा रहा है। जब मन मुस्कुराता है तो आंखें बंद हो जाती हैं, वाचालता समाप्त हो जाती है, चंचलता शेष हो जाती है, और उसका जैसे सूरदास ने कहा है, जो गूंगो मीठे पल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार से कि गूंगा व्यक्ति मीठे की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, उसी प्रकार का एक सुखद आनंद उसमें घटित होता है। फिर आगे कहते हैं कविकार, तीन लोक के स्वामी संग में यशोदा माते लाल, तीन लोक के स्वामी ऐश्वर्य है, इसमें ऐश्वर्य का भाव आ गया, और यशोदा के लाल माने वात्सल्य, सौंदर्य वात्सल्य ऐश्वर्य, ये सारी चीजों का समन्वय एक जगह किया है कवि ने, ये सोच विचार के नहीं हो सकता है, ये स्वाभाविक रूप से प्रकटित हुआ हुआ मुक्तक छंद, लगभग 127 छंद इस ग्रंथ में है, और वाणी प्रकाशन ने इतना सुंदर और मधुर उसका प्रकाशन किया है कि देखते ही नेत्र एकदम ठहर जाते हैं, वाणी मूक हो जाती है, और मन स्थिर होकर उसको आलिंगन बंद करने के लिए दलाई रहता है। जय जय श्री।
1: इसी क्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए आप हैं पुस्तक के लेखक कविवर दास नारायण।
2: सभी विद्वानों को जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं सबको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। बस पुस्तक के बारे में बहुत कहा जा चुका है, इन शब्दों के साथ ही आप आए हैं, मेरा आत्मल बढ़ा है, मेरे अपने पूर्व जन्मों के इस जन्मों के कर्मों का फल भक्ति के रूप में मैं अपने जीवन को सार्थक मानता हूँ। भगवान श्री राधा कृष्ण की अपार कृपा और श्रीमती हेमा मालिनी जी का जो विश्वास मेरे साथ है वो मेरे जीवन का, इस जीवन का आधार है, मित्रों का प्रेम है, गुरुओं का माता पिता का आशीर्वाद है, और भगवान के चरणों में रहते हुए जो भी हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते वही मेरा जीवन धन्य है, और हमारी वाणी से हमारे शब्दों से हमारी रचना से जो मेरी नहीं है ठाकुर जी ने उंगली पकड़ करके लिखवाई है, जब जब भी चाहा है जो भाव आया है उससे अगर समाज का कुछ कल्याण हो सके तो मैं अपना जीवन सार्थक समझूंगा, और हर जन्म में चाहूंगा प्रयाग की जगह ब्रज भूमि में अगला जन्म मेरा हो, ये शब्दों के साथ।
1: इसी क्रम में अपने विचार व्यक्त करती हुई आप हैं माननीय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी।
3: श्रीदास नारायण जी जिनको हम कई सालों से जानते हैं और बहुत सालों से कितने अच्छे अच्छे कविताएं लिखते रहे, और आज जो पुस्तक का विमोचन हो गया है उसमें कम से कम 200 गीत उन्होंने लिखे हैं, उसमें 25 गाने तो मेरे से गवाया है इन्होंने। मैं गायिका तो नहीं हूँ फिर भी मुझे गायिका बना दिया है, उसका पूरा श्रेय नारायण जी को ही जाता है। ये दास नारायण जी हैं और मैं हूँ दासी हेमा मालिनी, दासी हेमा। जितने भी गाने मैंने गाए हैं उसमें दास नारायण दासी हेमा यही वर्ड आता है, सो ही हैज गिवन मी दैट प्लेस पोजिशन। उन्होंने इतना अच्छा जो लिखा है उसमें साथ साथ में मेरा भी नाम जुड़ा है जहाँ जहाँ मैंने गाया है, और उन गीतों को इतने बड़े बड़े संगीतकारों ने म्यूजिक दिया था, कई लोगों ने उनके दो दो पद मैंने गाए हैं, तो मुझे बहुत ही आनंद हुआ कि ऐसे बड़े बड़े कलाकारों के जरिए मुझे गाने का अवसर मिला जो अभी नहीं है, आज नहीं है, पंडित जसराज जी, देन सो मेनी ऑफ दिन, मुझे फटाफट नाम याद नहीं आ रहा है, राजन साजन मिश्रा जी, और उसमें मेरा एक फेवरेट गाना जो है, दोत बने हो हृदय की धड़कन गोपाला, वो बहुत सुंदर गाना, लेकिन मैंने पूछा इसमें है क्या, मिस हो गया वो गाना, दैट्स माई फेवरेट सॉन्ग।

0: बहुत ही ब्यूटीफुल ढंग से, सिंपल ढंग से उन्होंने ये सारे गीत लिखे हैं। भाषा बहुत सरल है लेकिन मीनिंग बहुत ही गहरा है, और इसको सुनने से ऐसा लगता है कि हम वी कैन गो इन आत्म अंदर की यात्रा हम कर सकते हैं। आई मीन विल बी लॉस्ट इन योर ब्यूटीफुल थॉट विद द वर्ल्ड विद लॉर्ड कृष्णा अराउंड यू ऑल द टाइम, ऐसा ऐसा इन्होंने गीत लिखा है।
1: और श्रोताओं, इसी के साथ अब हम अपने कार्यक्रम की अगले सेगमेंट क्या करें क्या ना करें में आपसे अपील करना चाहेंगे कि जब आप वाहन चलाते हैं, पेट्रोल है से चलता है या डीजल से चलता है, तो अपने वाहन को आवश्यकता अनुसार ही उपयोग करें, क्योंकि पूरे देश भर में हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये अपील की जा रही है कि हम पेट्रोल या डीजल की खपत जहां तक हो कम करें, क्योंकि ये पूरे देश में नहीं विश्व में एक संकट है कि पेट्रोल की कमी चल रही है, और इसको देखते हुए यदि हम पेट्रोल और डीजल की खपत को थोड़ा सा कम करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने राष्ट्र के लिए एक सेवा करेंगे, सहयोग करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बातों का हमको ध्यान रखना है। अगर हमको कहीं पर जाना है, कोई भी स्थान अगर थोड़ा सा दूर है, तो हम अगर वाहन का उपयोग किए बिना अगर थोड़ा सा हम पैदल चलें तो ये निश्चित रूप से हमारी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। अगर हमारा गंतव्य वॉकिंग डिस्टेंस पर है तो हम पैदल चलकर भी जा सकते हैं, इससे जो ईंधन की बचत है वो भी होगी, हमको कुछ आर्थिक लाभ भी होगा। और ऐसे ही कुछ ऐसे उपायों को अपनाएं। और अक्सर हम जब देखते हैं कि सड़क पर जाम लग जाता है तो लोग अपने वाहन को चालू रखते हैं, इससे प्रदूषण तो होता ही है, साथ ही जो हमारा जैविक ईंधन है, पेट्रोल या डीजल है, उसकी भी बर्बादी होती है। तो इस बात का हम ध्यान रखें कि अगर एक दो मिनट के लिए या पाँच मिनट के लिए, कभी कभी तो ये होता है कि ज़्यादा देर के लिए भी जाम लग जाता है, लेकिन लोग अपने वाहन के इंजन को चालू रखते हैं, ऐसी स्थिति में आप जब तक जाम नहीं खुल जाए कुछ समय के लिए अपने वाहन के इंजन को बंद कर दें, इससे पेट्रोल की काफ़ी बचत होगी। तो इन उपायों को हमको ध्यान में रखना है, और ये बात भी ध्यान रखें कि अपने कहीं नज़दीकी जगह पर आप जाते हैं तो वहाँ कोशिश करें कि हम मोटरसाइकिल या स्कूटर आदि का उपयोग ना करें, अगर पैदल चल के जा सकते हैं तो अवश्य पैदल चलकर जाएं। तो इन और एक और बात, यदि आपके घर में एक से अधिक वाहन हैं और जहाँ दो या तीन लोग जो हैं जिनका गंतव्य एक ही है, तो आप एक ही वाहन का उपयोग कर सकते हैं, तो इससे पेट्रोल की काफ़ी बचत होगी। इन कुछ बातों का हमको ध्यान रखना है। और अब हम नज़र डाल लेते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अधिक मास मेले के दौरान गोवर्धन में 17 मई से 16 जून तक विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। श्रद्धालुओं और परिक्रमार्थियों की सुविधा एवं यातायात संचालन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने व्यापक ट्रैफिक डायवर्जन और प्रतिबंध का प्लान तैयार किया है। पुरुषोत्तम मास शुरू होते ही ब्रजभूमि में आस्था का सैलाब उमड़ने लगा है। देश के विभिन्न राज्यों से हजारों श्रद्धालु 84 कोस परिक्रमा करने के लिए मथुरा वृंदावन पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु प्रमुख तीर्थस्थलों के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। और बात कर लेते हैं आज के दिन विशेष की, तो आज की तिथि 18 मई इतिहास के झरोकों से ये कहती है।

0: कि आज ही के दिन वर्ष 1974 में पोखरण परमाणु परीक्षण के साथ भारत दुनिया के परमाणु संपन्न देशों की कतार में शामिल हुआ था, और आज ही के दिन सन 1912 में पहली भारतीय फीचर लेंथ फिल्म श्री पुंडलिक रिलीज हुई थी। तो इसी के साथ कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम। अगले कार्यक्रम में आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, फिर किसी नई जानकारी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे ब्रज दर्पण कार्यक्रम, प्रस्तुति थी जितेंद्र सिंह की और संयोजन था ओपी सिंह का। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और आपके मित्र अजीत का भी नमस्कार और जोहार।
2: बिना संघर्ष के सफलता बिना नमक के भोजन की तरह होती है। इससे हमारी भूख तो मिट जाएगी लेकिन ये स्वादिष्ट नहीं लगेगी।
1: श्रोताओं, ये सुंदर विचार हमें भेजा था बिहार से वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने। बिल्कुल सच कहा है, बिना श्रम के सफलता का सच्चा आनंद नहीं मिलता
2: जी।
1: आप दोनों का धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
1: और भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं,
2: गुरुवार 23 अप्रैल को सुविचार को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आपने जानकारी देते हुए एक दोहा का उदाहरण दिया। इस दोहे में कबीरदास जी विश्वास को न तोड़ने की सीख देते हैं। दोहा इस तरह से था, रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुरे, जुरे गांठ परे जाए।
1: आपने आगे लिखा है, आपके द्वारा इस दोहे के रचनाकार कवि का नाम कबीरदास बताया गया। वास्तव में इस दोहे को रहीम ने लिखा है, न कि कबीरदास जी ने। धन्यवाद और आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत आभार। कृष्ण कुमार जी, आपको भी हमारा विशेष धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रमों को बड़ी बारीकी से सुनते हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी देते हैं।
1: तो हम कहना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है हमेशा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया संदेश भेजते रहिए। अगला संदेश सुनते हैं जो हमें मिला है।
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
1: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी।
1: और बेगूसराय बिहार से हमें संदेश मिला है इकबाल मोगा, देव, अजय मोगा और अहमद मोगा का। लिखते हैं,
2: आज की प्रस्तुति कल्पना चावला जो सितारों में खो गई हमें बहुत अच्छी लगी, आपको साधुवाद।
1: और आप सबको हमारा हार्दिक आभार। आइए अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
2: इस प्रश्न का उत्तर है, नीली वेल को आकार में समुद्र का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। इसका वजन लगभग 100 से 150 टन का होता है, यानी किलोग्राम के अनुसार ये 1 लाख से 1.5 लाख किलोग्राम की होती है
1: जी। और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, थर्मल लैग किसे कहते हैं।
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। गर्मियों में सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है। सुबह से सूर्य के ताप के कारण धरती गर्म होती रहती है और 12 बजे सूर्य की किरणें धरातल पर सीधी पड़ती हैं
1: जी।
2: बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसीलिए उनका ताप कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान यानी 12 बजे के बाद भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है, जिसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: और हमारा तीसरा प्रश्न था कि प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है।
2: इसका उत्तर है साथियों, प्रकृति जलवायु के अनुसार हर मौसम में वही उपज देती है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसके अनेक उदाहरण हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि गर्मी के मौसम में जो फल आते हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है ताकि हमें गर्मी के मौसम में इसका लाभ मिले।
1: और हमारा

0: अगला प्रश्न श्रोताओं प्राथमिक उपचार से संबंधित था। हमारा प्रश्न था कि लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीले करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
1: तो साथियों इसका उत्तर भी जान लेते हैं। लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से सांस लेने में आसानी होती है और शरीर का रक्त संचार आसानी से हो पाता है।
0: और अब हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न, हमारा प्रश्न था बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टी में और क्या क्या कर सकते हैं।
1: इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे विद्यार्थी कोई भी शास्त्रीय नृत्य या वाद्य यंत्र सीख सकते हैं, जैसे हारमोनियम, तबला या बांसुरी।
0: जी विमरेश जी, ये सचमुच एक बड़ी अच्छी सलाह है। तो श्रोताओं अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है।
0: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमें भेज सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित ये कार्यक्रम बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करें और उसकी सुंदरता का अनुभव करें। कार्यक्रम एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक बच्ची आकाश में बादलों को ध्यान से देखकर उनके विभिन्न आकारों में पशु पक्षियों की छवि की कल्पना करती है।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू?
3: वी आर फाइन सर।
4: आई एम फाइन।
5: आई एम गुड सर।
2: फाइन, गुड। ओके, सो टेल मी, what do you like most?
6: I like playing, sir.
7: I like painting, sir.
2: Very good. Anyone else?
8: Sir, I like singing.
9: I like playing with my pets.
2: Oh, that's great. Now tell me, do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
3: Yes, sir.
7: We like.
2: Lovely butterflies?
3: Yes, sir.
2: And lovely colorful chirping birds?
3: Yes, sir.
2: That's very nice, children.
10: Sir, I go to the park with my parents on holidays.
2: Okay. It's always wonderful to see the beautiful nature, isn't it?
3: Yes, sir.
2: The rivers, the mountains, and the green trees.
3: Yes, sir.
2: Okay. So let me tell you the story of a sweet child like you.
3: Like us?
2: Would you like to listen?
3: Story.
2: To know what the child did, you have to listen to a beautiful poem. After listening to the poem, you will know what the child did. Okay?
3: Okay, sir.
2: Very good. Now I am going to read this poem. You have to repeat after me. Okay?
3: Okay, sir.
11: We love you. Recited.
2: As I lie on my back,
3: looking up at the sky,
2: I see a big white bear,
3: looking down at me.
2: As I lie on my back,
3: looking up at the sky.
2: I see a ship sailing.
3: On a white sea.
2: As I lie on my back.
3: Looking up at the sky.
2: I see an elephant. Waving its trunk at me. As I lie on my back,
3: looking up at the sky.
2: Oh, it's fun to me. To see whatever I want to see. So, children, you have recited so well. Have you ever noticed the clouds?
3: Yes, sir.
7: They are beautiful.
5: They are very big.
6: They change the shapes.
2: Wonderful. You have very rightly said. So now listen to the same poem in a song. Would you like to listen?

0: Did you like the song?
1: Yes, sir, it was lovely.
0: So, children, here is something to do for you, okay?
1: Okay, sir.
0: Sit outside your home or go to any park and see the clouds go by. And tell your friends what you have observed.
1: Okay, sir, it will be so lovely.
2: It will be good.
0: Yes. And one thing more. Notice the colors of the clouds and you will find that the clouds also have different colors from time to time.
1: Yes, sir.
3: I have seen rainbow.
4: It has 7 colors.
0: So, children, whenever you see the clouds, they have different
1: shapes.
0: Yes, shapes. And they have different
1: colors.
0: Very nice.
5: Show of Clouds. You were just listening to this program. Program Coordinator, Professor Rajendra Pal. Technical Coordinator, Bati Lang Lingdo. Child Singer, Angel. Child Artists, Soham, Vedika, Vanya, Navya, Riddhi and Lavish. Sound Recordist, Mayank Kumar. Assistance in Production, Kusum Lata. Directed and produced by Ajit Horo. This program was brought to you by CIET NCERT, New Delhi, India. अभी आपने सुना कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम. अगले कार्यक्रम का शीर्षक है तुलसी गौड़ा.
6: ये कार्यक्रम जंगल की एनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली महान आदिवासी पर्यावरण विशेषज्ञ तुलसी गौड़ा के जीवन, उनके पर्यावरण पर शोधों और वृक्षों को बचाने के उनके प्रेरणादायक अभियान की जानकारी देता है. विशेष रूप से मातृ वृक्षों पर उनकी खोज के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है.
7: नंगे पांव, धोती नुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहनी
8: तुलसी गौड़ा, 72-year-old ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका,
9: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती.
10: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शी इज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौड़ा.
7: जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
11: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है.
12: ये आकाशवाणी है. प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार. आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री

0: पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण।
0: ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। देश भर में प्रसन्नता की लहर।
2: नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा।

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम्य में वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागबानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता के मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों में करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है। क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए।

0: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
1: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
0: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
1: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर

0: कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं, और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
1: अच्छा,
0: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ,
1: अरे ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। हाँ, लेकिन इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं?
0: देखो, पहली बात तो ये कि पौधों में भी जीवन होता है।
1: बिल्कुल होता है।
0: और मुझे लगता है कि वे भी दुख सुख अकेलापन का अनुभव कर सकते हैं, इसीलिए यदि उन्हें उचित दूरी पर आसपास रखा जाए तो वे बेहतर ढंग से पढ़ते हैं।
1: ये तो बड़ी ही दिलचस्प बात है तुलसी जी,
0: है ना
1: जी।
0: और उचित दूरी पर आसपास लगाए जाने से वे एक दूसरे के साथ नमी और पोषण को साझा कर सकते हैं।
1: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
0: बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश बचाओ।
2: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
0: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
2: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है, और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
3: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
2: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
4: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
0: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
4: अच्छा।
0: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
4: अच्छा।
0: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
4: अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि मातृ वृक्ष मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
0: बिल्कुल सही सुना है आपने। मातृ वृक्ष गोंद की तरह मिट्टी को

0: वो पकड़ कर रखते हैं।
1: अच्छा।
0: और आंधी तूफान के समय दूसरे पेड़ों को गिरने या उखड़ने से बचाते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात बताई आपने।
0: इतना ही नहीं, यदि कई माथरी वृक्ष आसपास हो तो छोटे पेड़ों के लिए आसपास की नमी को बनाए रखकर प्राकृतिक ग्रीन हाउस बनाते हैं। वे छोटे और युवा पेड़ों को नाइट्रोजन और कार्बन प्रदान करके उन्हें पालते हैं। समझे
1: जी? ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना माथे वृक्षों के बारे में।
0: हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए, जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है। ठीक है ना?
1: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत धन्यवाद।
2: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
3: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जंगल इंसाइक्लोपीडिया तुलसी गौड़ा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटीलैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, पूनम एस कुदेसिया और अंजलि, आलेख अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तुलसी गौड़ा और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।
9: ओ ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ओ ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए।

जी हाँ दोस्तों, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए क्योंकि गर्मी अपनी चरम पर है। जहाँ अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच रहा है, आसमान से आग बरस रही है। गर्म हवाओं, लू के कारण दोपहर में बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में अपने आप को हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए ठंडी ठंडी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, ठंडा ठंडा पानी पीना चाहिए और गर्मी में निकलने से बचना चाहिए। वैसे फिलहाल आपको बता दें, ये गीत हमने आपको सुनवाया पति पत्नी और वो फिल्म से, जिसे गाया था महेंद्र कपूर, आशा भोसले और सुषमा श्रेष्ठ ने। चलिए सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

नमक हराम फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और धुन बनाई थी राहुल देव बर्मन ने।

आप आए बाहर आई। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत, आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। श्रोताओं, हिंदू पंचांग के अनुसार हर 3 साल में आने वाले अधिक मास या पुरुषोत्तम मास का बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व है। इसे भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। इस दौरान जप तप दान और पूजा पाठ करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है।

अखियों के झरोखों से। अभी आपने ये गीत सुना, स्वर था रविंद्र जैन का, गीत और संगीत भी रविंद्र जैन का ही था। श्रोताओं, आज 18 मई है और आपको बता दें आज है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। इस दिवस के अंतर्गत आपको बता दें सांस्कृतिक, सामाजिक और भू राजनीतिक विभाजनों को पाटने, संवाद, समझ, समावेश और शांति को बढ़ावा देने में संग्रहालयों की

0: कभी तो हंसाए।
1: आनंद फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दिन के 11 बजने को हैं और आइए अब आपको सुनवाते हैं फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। प्रस्तुति है संजय सारस्वत की।
1: हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ संजय सारस्वत। श्रोताओं, अगर आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में

जुड़ना चाहते हैं, अपनी फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, तो हमें इस कार्यक्रम में फोन करें। इसकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सवेरे 10:30 से, और इस कार्यक्रम का प्रसारण हमारे केंद्र से होता है रविवार से शुक्रवार तक सवेरे 11:00 से 11:30 तक। अगर आप अपने फोन रिकॉर्ड कराना चाहते हैं तो हमें फोन अवश्य कीजिए। हमारा फोन नंबर है 2530135। मथुरा से बाहर के श्रोता हमें 0565 कोड लगाकर फोन करें। फोन कॉल्स आने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: हेलो
1: नमस्कार।
0: नमस्कार जी,
1: कौन बोल रहे हैं?
0: अरिंग से रोहतास मिस्त्री बोल रहा हूँ।
1: क्या हालचाल है आपका?
0: ठीक है साहब।
1: क्या काम चल रहा है इस समय? काम कर रहे हैं या घर पे ही हैं?
0: काम कर रहे हैं।
1: अच्छा अच्छा, आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं बताएं?
0: दिलवारे दुल्हनिया।
1: कौन सा वाला गाना?
0: कोई सा सुना दें।
1: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: हेलो
1: हेलो सर, मैं बंटी बोल रहा हूँ। जैसे मेरा सर राधे राधे। सर
0: बंटी भाई, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। राधे राधे।
1: कैसे हैं आप?
0: हम तो अच्छे हैं, आप बताइए, आपके घर परिवार में आप कैसे हैं?
1: सब बढ़िया है सर, सब
0: काम अच्छा चल
1: बढ़िया
0: रहा
1: सर।
0: है?
1: हाँ सर, कम से चल रहा है सर।
0: चलिए, हमारा
1: गर्मी
0: कार्यक्रम भी
1: बढ़
0: सुन
1: रही है
0: रहे
1: बहुत
0: हैं।
1: तेज। हाँ सर, गर्मी बढ़ रही है बहुत तेज सर।
0: हाँ, गर्मी तो बढ़ गई है अब, और बढ़ेगी
1: हाँ सर
0: अभी।
1: जी सर, मैं बच्चों से ये कहना चाहता हूँ सर आपके जरिए से कि सर स्कूल जाए ना तो कैब लगा कर जाएं स्कूल बच्चे।
0: हाँ, पानी की बोतल हमेशा साथ में
1: हाँ
0: रखनी
1: बोतल लेकर।
0: चाहिए,
1: हाँ सर।
0: और कुछ न कुछ खा के ही सभी को घर से बाहर निकलना चाहिए,
1: हाँ सर।
0: खाली पेट घर से न निकलें। हाँ
1: हाँ गर्मी बहुत है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी सलाह है बंटी भाई आपकी। आज
1: हाँ सर,
0: बताइए, फरमाइश क्या
1: अर्जुन
0: रहेगी कार्यक्रम में?
1: सर, अर्जुन पंडित का गाना सुनना भी है सर, कातिल हर तरफ कातिल उगाले गाना सुनना है सर अर्जुन पंडित का। मेरे बच्चे हैं दो सर, एक मेरा दोस्त है उसका नाम लेना चाहता हूँ
0: हाँ
1: सर।
0: लीजिए
1: एक बेटा है आयान, एक वो फरहान,
0: जी।
1: एक दोस्त है गुड्डू भाई, फतेहपुर के हैं वो।
0: ठीक है, आप सभी के लिए सुनवाते हैं ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: थैंक यू सर।

0: हेलो,
1: आदरणीय सरसा साहब, सर सप्रेम, चार है नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: मानवर में आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति इस राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ सर।
0: बहुत स्वागत करते हैं प्रजापति जी आपका कार्यक्रम में।
1: जी हृदय से धन्यवाद। मानवर आप कैसे हैं?
0: हम अच्छे हैं सर, आपकी स्वस्थता की कामना करते हैं। आप भी स्वस्थ होंगे?
1: जी धन्यवाद। बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और आकाशवाणी मथुरा वृंदावन सुनते रहता हूँ। आप लोगों से वार्तालाप करने का इच्छुक रहता हूँ। फोन लगता है तो बहुत ही खुशी प्रसन्नता होती है। और मथुरा वृंदावन को सुनते हुए इस वक्त गर्मी का भी आनंद ले रहे हैं।
0: हाँ, गर्मी तो बढ़ गई है प्रजापति जी, दिन ब दिन बढ़ी रही है।
1: जी, चिलचिलाती हुई धूप रहती है, गरम गरम हवाएं चलती हैं और लू का भी खतरा रहता है ऐसी गर्मी में।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, ऐसे में काफी सावधानी बरतने की जरूरत है।
1: जी घर के ये आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनते रहिए और जो मौसमी फल हैं खीरा ककड़ी तरबूज खरबूज और इन सब का भरपूर सेवन करते हुए आम का पना का सेवन करिए और साथ में सत्तू का शरबत बनाइए, बेल का शरबत और इन सब का सेवन करते हुए आनंद लीजिए गर्मी का और आकाशवाणी से जुड़े रहिए। यही श्रोताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूँ।
0: जी, आज क्या फरमाइश रहेगी प्रजापति जी?
1: मानवर आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है एक रिश्ता। मोहब्बत ने मोहब्बत को मोहब्बत से पुकारा है, ये गीत सुनना चाहता हूँ आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से आपके माध्यम से।
0: आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका।
1: जी हृदय से धन्यवाद। आभार। आपका दिन मंगलमय हो। सादर नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो,
1: आदरणीय सरस्वती को सादर सुप्रेम प्यार भरा नमस्कार
0: नमस्कार। आपका परिचय दे दीजिए सर।
1: जी। बिल्कुल, आपका ब्रज रेडियो श्रोता मित्र राजू लबानिया बोल रहा हूँ कनौली से सर।
0: स्वागत करते हैं सर कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सरस्वती जी। और हमारी हेलो आकाशवाणी टीम कैसी है सर?
0: अच्छे हैं सब लोग, आपकी दुआओं से, प्रभु की कृपा है।
1: बिल्कुल सर, ये सबसे जरूरी है, प्रभु कृपा सबसे जरूरी है और सबसे पहले होनी चाहिए।
0: जी, आज क्या फरमाइश रखेंगे कार्यक्रम में बताएं।
1: आज सर गाना सुनवा दीजिए मेरे को, किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार।
0: आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं लवानिया जी। बहुत बहुत आभार हमें फोन करने के लिए।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सरस्वती हमारा कॉल शामिल करने के लिए। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो जी, आदरणीय उद्घोषक महोदय नमस्कार।
0: नमस्कार
1: सरस्वत जी, मैं आपका नियमित श्रोता चौधरी महेंद्र सिंह, ग्राम नगला राणा सिहोरा से।
0: स्वागत है चौधरी साहब कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद सर। और सर आप कैसे हैं?
0: अच्छे हैं सर, आप लोगों की दुआएं हैं, प्रभु की कृपा है।
1: महोदय ऊपर वाले की दुआओं की जरूरत है
0: जी। आपके यहाँ भी सब ठीक ठाक होंगे सर, परिवार में?
1: सभी लोग कुशल मंगल है सर
0: जी। आज क्या फरमाइश रखेंगे कार्यक्रम में, बताइए।
1: सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आकाशवाणी मथुरा से प्रसारित सभी कार्यक्रम बहुत ही अच्छे जा रहे हैं, इनकी क्वालिटी एकदम फर्स्ट क्लास मिल रही है, और कार्यक्रम प्रस्तुत करने का जो अंदाज है ना आपका, ये तो बहुत ही लाजवाब है सर।
0: धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: सर गाना फिल्म नागिन

0: पे लता जी का गाया हुआ बहुत ही खूबसूरत गीत है, जिसके बोले जादूगर सैया छोड़ो मेरी भैया हो गई आधी रात अब घर जाने।
1: सुनवाते हैं सर आपकी पसंद का ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद हमें फोन करने के लिए
0: जी। नमस्कार
1: नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद आपका।

अभी आप सुन रहे थे हमारा फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

हम अपने सभी सुनने वालों को बताना चाहेंगे, आज दिन में 1:15 पर वनिता लोक कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर शालिनी शर्मा द्वारा दी गई जानकारी, जिसका विषय होगा इको टूरिज्म यानी पर्यावरण से दोस्ती। आज संध्या 5:30 पर युववाणी कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे कलाविद चंद्रशेखर शर्मा से ली गई भेंट वार्ता, विषय रहेगा मथुरा की मूर्तिकला। इनसे बातचीत करेंगे डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम यादों के झरोखे से।

का। कार्यक्रम की अगली पेशकश किशोर कुमार की आवाज में है। फिल्म का नाम है शर्मीली। नीरज के गीत को संगीत से संवारा है सचिन देव बर्मन ने।

आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आप सुन रहे थे यादों की बारात फिल्म का नगमा। शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की थी, संगीत आर डी बर्मन।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम यादों के झरोखे से आप इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से FM 102.2 MHz पर।

0: फिर से तो फरमाना।
1: तलाश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थीं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। मजरूह सुल्तानपुरी का गीत था, संगीत सचिन देव बर्मन का। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में स्वीकार किया मैंने फिल्म का नगमा। निदा फाजली ने गीत लिखा है, धुन बनाई है उषा खन्ना ने।

लता मंगेशकर, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी और साथियों को अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था श्री 420। शैलेंद्र ने गीत लिखा था, धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। और अब कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं ताजमहल फिल्म की एक कव्वाली। आवाज़ें मन्ना डे, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोंसले और साथियों की हैं। शब्द रचना साहिर लुधियानवी की, संगीत रोशन का।

मन्ना डे मोहम्मद रफ़ी, आशा भोंसले और साथियों की गाई ताजमहल फिल्म की इस कव्वाली के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यादों के झरोखे से अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। लीजिए।

पेश है व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस। आज कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ संजय सारस्वत। मित्रों, आपके बहुत सारे संदेश हमें प्राप्त हो रहे हैं। हम आपको एक बार फिर बताना चाहेंगे, हम इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं दिन में 11:45 से भेजे हुए संदेशों को। इसलिए आप अगर अपनी फरमाइश का कोई फिल्मी नगमा हमारे इस कार्यक्रम में सुनना चाहते हैं, कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, तो हमें 11:45 से संदेश भेजिए। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का कार्यक्रम का ये पहला गीत।

महेंद्र कपूर की आवाज़ में आप सुन रहे थे हमराज फिल्म का गीत। गीत साहिर लुधियानवी ने लिखा था, धुन बनाई थी रवि ने, और इस गीत को सुनने की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की थी। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से हमें संदेश भेजा है इस गीत के लिए फैज़ल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा परवीन और जोहानुल हौदा ने। अगले फरमाइश करता हैं टैगोर गार्डन नई दिल्ली के रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीति छाबड़ा। गांव चौहलदा बागपत से हैं संजय ढिंगिया, नमन और अपार ढिंगिया। आप हैं तिरुपति नगर नांदूरा महाराष्ट्र के श्रोता संतोष वसाने, ऋषिकेश अनिकेत, उषा वसाने और सागर कटक। दिंडोरी नासिक से हैं विशाल गवली, सोनाली समर्पण और भक्ति गवली। अगला संदेश अभय भेजा है गिरडीह झारखंड।

उत्तराखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साहिबा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफरा नवाज, बेबी चाहत और सादिया ने। ये श्रोता हैं जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल, गमहरिया जमशेदपुर से हैं विपिन, स्वाति, देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल। अगला संदेश हमें भेजा है पीएस नहावकर, निर्मला और विशाल नहावकर ने, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। मलकापुर से हैं नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मुरहेकर। ये हैं पलारी छत्तीसगढ़ के श्रोता नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन। अगला संदेश हम ले रहे हैं आप हैं कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन और मयंक शर्मा। आदर्श नगर मलोट पंजाब से हमसे जुड़े हैं राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, सौरभ, साइना और निवान शर्मा। ये श्रोता हैं मोताला महाराष्ट्र के विजय सुरलकर, रत्नमाला, आरती, गौरी और ओम कुमार सुरलकर। रिंगनी छत्तीसगढ़ से संदेश भेजा है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। अगले फरमाइश करता हैं कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन, नौरीन आसना और मोहम्मद कैफ अंसारी। आप हैं बघेरा दुर्ग के श्रोता संतोष नामदेव, सार्थक समर्थ और शौर्य नामदेव। ये संदेश आया है हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू और पप्पी भाटिया का, स्टेशन रोड जमशेदपुर से। अगले श्रोता हैं हमारे बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ के रोशन लाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता और डिंपल देवांगन। आप हैं अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, सलमा, असद और अरहाम। ये संदेश है रसेड़ा छत्तीसगढ़ के श्रोताओं का मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार और डीकेश साहू हमसे जुड़े हैं। अगला संदेश हमें भेजा है गांधीनगर गुजरात के श्रोताओं ने। आप हैं सुरेश राठौर, मंजुला, विशाल और निशा राठौर। गुजरात के गांधीग्राम से हमसे जुड़े हैं प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जूली और जगदीश जौहरी। आइए मित्रों आपको अब सुनवाते हैं गीत बात और एसएमएस कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत।

थोड़ी सी बेवफाई। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गुलजार का गीत था, संगीत खय्याम का। और इस गीत को सुनने की फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं मामुलवाड़ी महाराष्ट्र के सोपान ताइड़े, वसंतराव भोजने और निवृत्ति अडोकार। आप हैं दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण कपिल और कुणाल मेहरा। अगले फरमाइश करता हैं गांधी रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद आसिफ शेख, अजीम शेख, शेख मोहम्मद जावेद, फातिमा गाजी, मुन्ने सलमानी और एम कलीम शेख। आप हैं बुलढाणा महाराष्ट्र के श्रोता वासुदेव बोधबड़े, अनीता गांठोड़े और रमेश राव गांठोड़े। झज्जर हरियाणा से हमसे जुड़े हैं बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत और मयंक भाटिया। अगला संदेश हमें भेजा है मजनू का टीला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु और सागर बालूजा ने। सतना एमपी से हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। पदमपुर श्रीगंगानगर राजस्थान के श्रोताओं का संदेश प्राप्त हुआ है। आप हैं मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा। ये हैं बठेना पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ के श्रोता बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा और उमेश प्रमिला बंछोर। गांव कैरों तरन तारण पंजाब से हैं गुरदर्शन लाल चरोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और गुरशबद। अगले फरमाइश करता है

हमारे जवाहर नगर दुर्ग के आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े। आप हैं ग्राम पजौनिया जालौन यूपी से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक चंसौलिया। कालेगांव से हैं सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वद और सानवी देशमुख। ये संदेश हमें भेजा है महसौल सीतामढ़ी से अक्रम हुसैन, इशरत अक्रम, वसीम अक्रम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अक्रम, शमीम, ममता रानी शर्मा और पूनम कुमारी शर्मा ने। कोआथ बिहार से हमसे जुड़े हैं शेख जफर हसन और नरगिस जफर। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा के श्रोता हैं हमारे अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक। कैथल हरियाणा से हैं मधु नायक। ये श्रोता हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली के तुलसी मस्कीन, वीणा, आशीष राजा और चैतन्य मस्कीन। चंडीगढ़ से हमसे जुड़े हैं राहुल खुराना, रचिता, केशु रिधान खुराना। अगला संदेश प्राप्त हुआ है निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया और अयान बाबू का, धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से। और आप हैं पाकुड़ झारखंड के श्रोता उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किसु, तासु, अर्णव आनंद और सत्यमानंद। बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से हैं मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बात और SMS आप इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से FM 102.2 MHz पर। आइए मित्रों, आपको सुनवाते हैं एक और फरमाइशी गीत।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे लव इन टोक्यो फिल्म का गीत। गीत हसरत जयपुरी ने लिखा था, संगीत से संवारा शंकर जयकिशन ने, और इस गीत को सुनने की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की थी। वरवट वकाल बुलढाणा से नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या और जय हागे ने इस गीत को सुनना चाहा। अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन और रोशनी मनवर तथा बेबी प्रियांशी का। आप हैं बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित लकी और तानिया नारंग। अगले श्रोता हैं हमारे तेलंगाना चोटुप्पल से कस्तूरी, रामुडू, उमा देवी, पृथ्वी और नारायणा। ये संदेश है कीर्ति कुमार ध्रुव, संतोषी, पम्मी, प्रिया, हर्षिता ध्रुव और निशांत ध्रुव का, लालपुर मारो छत्तीसगढ़ से। अगले फरमाइश करता हैं ऐशबाग लखनऊ के मुकेश गुप्ता, रश्मि, नीलम, कुसुम गुप्ता, रूपा। राजनगर मधुबनी बिहार से हैं कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, रुद्र गुप्ता, रिद्धि और शारदा गुप्ता। आप हैं मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल और इनके बहुत सारे संगी साथी। अगले फरमाइश करता हैं तेलीपाड़ा बिलासपुर छत्तीसगढ़ के गुणवंत श्रीवास, करुणा, आयुष, विवेक और आयुषी श्रीवास। करीमनगर तेलंगाना से हैं लक्ष्मी नारायणा, विजया, अभिनय और साई किरण। खंडवा एमपी से हमें संदेश भेजा है दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता, गौरव और ईशान सैनी ने। अगले फरमाइश करता हैं गांव जाखोद राजस्थान के शंभूदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक और पूजा खटक। आइए मित्रों, आपको सुनवाते हैं गीत बात और एसएमएस कार्यक्रम का ये अंतिम फरमाइशी गीत।

सोनू निगम और सुनिधि चौहान को अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था फना। प्रसून जोशी ने गीत लिखा था, धुन बनाई थी जतिन ललित ने, और इस गीत को सुनने की फरमाइश आप सब श्रोताओं की थी। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता ने इस गीत को सुनना चाहा। अगले फरमाइशकर्ता हैं नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता जैन, सूरज जैन और पीआर जैन। चंडीगढ़ से हमसे जुड़े हैं सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। आप हैं सहारनपुर यूपी से एसके नारंग, आशा नारंग और सोनाली। ये संदेश हमारे पास आया है सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित बेबी गर्वी और हिमाक्ष का, और आप हैं सादुलशहर राजस्थान के श्रोता राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। एक और संदेश लेते हैं, हमारे श्रोता हमसे जुड़े हैं एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट, और आप हैं परभणी महाराष्ट्र के श्रोता रूपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश, प्रीतेश संघई और इनके सभी परिवारिजन। नसवाला चौक मलकापुर से हैं संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश निवृत्ति, क्षीर सागर और संजय कुमार चौहान, और ये संदेश है भोपालगढ़ राजस्थान के श्रोताओं का। आप हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान और पूजा परिहार। इसी के साथ ही मित्रों, आज के गीत बात और एसएमएस कार्यक्रम को अब यहीं विराम देते हैं। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हम आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। ब्रजलोकगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्रीमती राजेश शर्मा के गाए कुछ लोकगीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: ब्रज लोकगीत कार्यक्रम आप इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से FM 102.2 MHz पर। कार्यक्रम में हमारी आज कलाकार हैं श्रीमती राजेश शर्मा। आइए इन्हीं के स्वर में एक और ब्रज लोकगीत सुनते हैं।

आइए ब्रज लोकगीत कार्यक्रम में ही श्रीमति राजेश शर्मा के स्वर में सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम ब्रज लोकगीत।

0: ब्रज लोकगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्रीमती राजेश शर्मा के गाए कुछ लोकगीत। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। इस समय 1 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। इस दौरे में भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय वार्ता और तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन शामिल है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
2: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं।

0: संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सभी कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्षों से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रेस पूरी गति से चल रही है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को द्विपक्षीय संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पी के कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के बाद गृहमंत्री बस्तर के लिए रवाना हो गए, जहां वे नेतानार गांव में सीआरपीएफ कैंप परिसर में स्थापित जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर होने से एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। प्रधानमंत्री ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 133 अंक की गिरावट के साथ 75,105, निफ्टी 60 अंक लुढ़क कर 23,584 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। इस समय 1:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

कार्यक्रम में चर्चा के विषय होंगे विश्व एड्स वैक्सीन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। पर्यावरण वार्ताक्रम के अंतर्गत आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर शालिनी शर्मा द्वारा दी गई जानकारी। विषय होगा इको टूरिज्म यानी पर्यावरण से दोस्ती। इसके अलावा आप सुनेंगे कुछ घरेलू टिप्स और फिल्मी गीत हमारे इसी कार्यक्रम में। दिन में 1:45 का समय रहता है फिल्म संगीत का। अपराह्न 2:30 पर आप सुनेंगे सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत। तत्पश्चात अपराह्न 3:00 समापन होगा हमारी इस पहली सभा का।

हमारी दूसरी सभा के आरंभ में संध्या 5:30 पर आप सुनेंगे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी। इस कार्यक्रम में आज की बात के विषय रहेंगे विश्व एड्स टीकाकरण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे कलाविद चंद्रशेखर शर्मा से ली गई भेंट वार्ता, जिसका विषय होगा मथुरा की मूर्ति कला। इनसे बातचीत करेंगे अरविंद त्रिपाठी। इसके अलावा आप कुछ फिल्मी गीतों का आनंद भी हमारे इसी कार्यक्रम में ले पाएंगे।

संध्या 6:15 पर किसान भाइयों के लिए हमारा ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम होगा। आज इस कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे जैविक खाद की उपयोगिता और उत्पादन बढ़ाने हेतु फसल चक्र अपनाएं। इसी कार्यक्रम में आज हम आपको डॉक्टर खजान सिंह से जानकारी दिलवाएंगे। विषय होगा मिट्टी पानी की जांच कब और कहां कराएं। इसके अलावा आप आनंद लेंगे कुछ ब्रज लोकगीतों का हमारे इसी कार्यक्रम में। भक्तिपरक फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा संध्या वंदन, संध्या 6:45 पर। शाम 7:05 पर ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे ब्रज वार्ता, अधिक मास की उत्पत्ति और हिंदू धर्म में महत्व। आलेख होगा राधाकांत शर्मा का, वाचन स्वर होगा देवराज कृष्ण दीक्षित का।

व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी आप सुनेंगे संध्या 7:31 पर। रात्रि 8 बजे आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। एक ही फिल्म से कार्यक्रम प्रसारित होगा रात्रि 8:30 पर। फिल्म संगीत आप हमारे सुहाने तराने कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं आज रात 9:15 पर। रात्रि 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे रूपक संस्कृति का वातायन राजकीय संग्रहालय मथुरा। आलेख एवं प्रस्तुति होगी डॉ सत्यदेव आजाद की। इसके अलावा रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे पंडित रविशंकर द्वारा सितार पर बजाया राग कौसी कान्हड़ा और राग यमन। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। आइए अब सुनते हैं समवेत स्वरों में ये देशभक्ति परक गीत।

0: समवेत स्वरों में आपने सुनी ये देशभक्ति परक रचना। रचनाकार थे आरसी प्रसाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

हम आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से बोल रहे हैं एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम वनिता लोक। आज कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं दीप्ति शर्मा।

बहनों, हमारी खूबसूरती हमारी वाणी में होती है, आदि हमारे मौन में होती है। इसलिए जितना भी बोलें अच्छा बोलें, खुद भी खुश रहें और सबको भी खुश रखें, क्योंकि हमारी वाणी में हमारी सौम्यता और हमारे व्यक्तित्व की झलक होती है। तो बहनों, कुछ इन्हीं शब्दों के साथ स्वागत करती हूं आप सभी का आज के वनिता लोक कार्यक्रम में। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बहनों, आज 18 मई का दिन है और आज के दिन को हम विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य HIV के खिलाफ प्रभावी वैक्सीन खोजने के प्रयासों को सम्मान देना और लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिवस की शुरुआत सन 1988 में हुई और इसकी प्रेरणा सन 1997 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के उस भाषण से मिली, जिसमें उन्होंने HIV वैक्सीन विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। HIV एक वायरस है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है। यदि HIV का इलाज ना किया जाए तो आगे चलकर ये एड्स का रूप ले सकता है। HIV मुख्य रूप से संक्रमित रक्त, संक्रमित सुई, संक्रमित माँ से बच्चे में और असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है। ये सामान्य स्पर्श, हाथ मिलाने से, साथ बैठकर भोजन करने से और भोजन को साझा करने से नहीं फैलता है। HIV वायरस बहुत तेजी से अपना रूप बदलता है, इसी कारण इसकी वैक्सीन बनाना कठिन है। दुनिया भर के वैज्ञानिक और संस्थाएं शोध कर रही हैं इस विषय पर। हम सही जानकारी के अनुसार भेदभाव और गलत धारणाओं को समाप्त करके सुरक्षित जीवन शैली अपनाकर और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहकर बचाव कर सकते हैं और इस गंभीर बीमारी से हम लड़ सकते हैं। बहनों, इसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये एक गंभीर बीमारी है और HIV इन्फेक्शन नामक वायरस के कारण होती है। तो बहनों, इलाज से व्यक्ति लंबे समय तक स्वस्थ जीवन शैली अपना सककर और इससे दूर रह सकता है। तो इसीलिए इसके कुछ लक्षण भी पाए जाते हैं, जैसे कि शुरुआती लक्षण में बुखार होना, कमजोरी होना, वजन कम होना, बार बार संक्रमण होना और लंबे समय तक खांसी या दस्त होना। तो इसलिए जानकारी ही बचाव है और सही जानकारी से हम इस बीमारी से दूर रह सकते हैं। तो बहनों, पीड़ितों के साथ भेदभाव न करें और सही जानकारी और जागरूकता के साथ हमें इस बीमारी से लड़ना है, बचाव करना है और अपने समाज को स्वस्थ रखना है।

0: बहनों, अगर पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो हमें हमारे परिवार को, सभी को स्वस्थ रहने के लिए पर्यावरण को, प्रकृति को साफ और स्वच्छ रखने की आवश्यकता है। जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ हमें साफ सफाई का, स्वच्छता का, पर्यावरण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसी श्रेणी में आता है इको टूरिज्म, पर्यावरणीय पर्यटन। ये वह पर्यटन है जिसमें लोग प्राकृतिक स्थानों पर जैसे जंगल, पहाड़, नदी और वन्य जीव क्षेत्रों की यात्रा करते हैं। लेकिन ये यात्रा तो हम करें लेकिन प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना और स्थानीय लोगों की मदद करते हुए। सरल भाषा में कहा जाए तो प्रकृति का आनंद लेना, उसकी रक्षा करना और स्थानीय संस्कृति का सम्मान करना ही इको टूरिज्म है। तो बहनों, आप प्रदूषण न करें और स्वच्छता बनाए रखें, इसी विषय पर हम आपको सुनवाते हैं एक पर्यावरण वार्ता, इको टूरिज्म यानी पर्यावरण से दोस्ती। जानकारी दे रही हैं डॉक्टर शालिनी शर्मा।
1: मानव विकास प्रक्रिया में सबसे सफल प्राणी रहा है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों में सिर्फ मानव ही ऐसा प्राणी है जिसमें भाषा एवं वाणी का विकास, सोचने समझने की क्षमता तथा अपने विचारों एवं भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करने व प्राकृतिक सौंदर्य को अनुभव करने के गुण विद्यमान हैं। इन्हीं गुणों के कारण वह पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहलाता है। मानव अपने जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक से अधिक धन अर्जित करने को कठिन परिश्रम करता है। इस प्रयास में थक जाने के पश्चात वह काम से कुछ दिन का विश्राम पाना चाहता है। वह अपने परिवार के साथ कुछ समय किसी नए देश, पर्वतीय स्थल, ऐतिहासिक स्थल व तीर्थ स्थानों पर व्यतीत करता है। वहाँ के दर्शनीय स्थलों व प्राकृतिक सौंदर्य के बीच रहकर वह पुनः नई ऊर्जा से भर जाता है। यात्रा को सस्ता व सुलभ बनाने के लिए

वह पर्यटन एजेंसियों की सहायता लेता है। पर्यटन व्यवसाय को संचालित करने वाले लोग यातायात के विभिन्न साधन, होटल आदि तो उपलब्ध कराते ही हैं, साथ ही साथ उस स्थल के दर्शनीय स्थलों के बारे में भी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इस व्यवसाय के फलस्वरूप जहां एक ओर मुद्रा तो अर्जित होती ही है, वहीं दूसरी ओर बस, कार व हवाई जहाज के ईंधन के जलने से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जो वायुमंडल में एकत्रित होकर ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देती हैं। अधिक से अधिक संख्या में मनुष्यों के पहुंचने के कारण वहां के प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन होने लगता है। पर्यटकों की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि होने के कारण वहां के वनों को काटकर बड़े बड़े होटल व रेस्टोरेंट का निर्माण किया जाता है। प्राकृतिक संपदा व जल स्रोतों के नष्ट होने से जीव जंतुओं की संख्या में कमी आने लगती है, जिससे उस जगह का प्राकृतिक सौंदर्य तो नष्ट होता ही है, साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र भी गड़बड़ा जाता है। पर्यटकों के द्वारा इस्तेमाल किए गए सामान से उत्पन्न कचरा वहां के रहने वाले लोगों के लिए बीमारियों का कारण बनता है। इन्हीं सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए आजकल टूरिज्म के स्थान पर इको टूरिज्म शब्द का प्रचलन अधिक बढ़ गया है। इको टूरिज्म का शाब्दिक अर्थ है पर्यावरणीय पर्यटन, अर्थात पर्यटकों को जो सुविधाएं प्रदान की जाएं, उनसे किसी भी तरह पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। यातायात के ऐसे साधन इस्तेमाल किए जाएं जो पर्यावरण मित्र हों। पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने वाली एजेंसियों को व राज्य सरकारों को कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पर्यटक उस स्थान पर सीमित संख्या में पहुंचे, जिससे वहां जनसंख्या का दबाव न बन सके व वहां रहने वाले लोगों को ना तो स्वास्थ्य संबंधी और न ही रोजमर्रा की आवश्यकता संबंधी किसी भी प्रकार की असुविधा हो। स्थानीय स्तर के जीव जंतुओं और वनस्पतियों के संरक्षण भी अति आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं कि वनों का विनाश, वास स्थलों की कमी तथा अवैध शिकार से कुछ दुर्लभ प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, तो वहीं कुछ विलुप्ति के कगार पर हैं। वनों के सुरक्षित रहने से हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित रहती है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी कम होती है, साथ ही यहां आने वाले पर्यटक वहां उपस्थित दुर्लभ वनस्पतियों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं व अभयारण्य में संरक्षित जीव जंतुओं के क्रियाकलापों को देखकर पर्यटकों का मन भी ऊर्जा से भर जाता है। इससे जो धन अर्जित किया जाता है, इस धन से जीव जंतुओं व वनस्पतियों के संरक्षण का कार्य किया जा सकता है, जिससे हमारी जैव विविधता, खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल जैसे संकल्पना विद्यमान रहती है। सृष्टि में सिर्फ मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो प्राकृतिक नियमों से कुछ हटकर कार्य करना चाहता है। मानव अपनी शारीरिक बनावटों, विकसित मस्तिष्क का फायदा उठाते हुए लोभ और लालच में पड़कर अन्य प्राणियों व प्राकृतिक संसाधनों का बेइंतहा नाश करता जा रहा है। लोग जंगली मांसाहारी तथा शाकाहारी जीवों को मारकर उनकी खाल, मांस, सींग, फर, हड्डियों आदि से बने सामान बेचकर पर्यटकों से खूब धन कमाते हैं। पर्यटकों के लिए ये निर्देश होने चाहिए कि वे स्थानीय पशुओं व पेड़ पौधों से बने सामान न खरीदें, जिससे वहां की विलुप्त होती दुर्लभ प्रजातियों का अस्तित्व बना रहे। पेट्रोल और डीजल के जलने से जो जहरीली गैसें उत्पन्न होती हैं, उनसे बचने के लिए वहां घूमने के लिए हाथी, घोड़े, ऊंट, नाव व साइकिल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिससे वे स्थानीय बाशिंदों की आय का तो साधन बनेंगे ही, साथ ही प्रदूषण से इकोसिस्टम भी बिगड़ने से बच जाएगा। किसी भी धार्मिक स्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण समस्या होती है वहां के देवता पर चढ़ाए जाने वाले फूल व दूध। इनको जिस भी जल स्रोत में प्रवाहित किया जाता है, वहां इनके सड़ने से उसकी ऑक्सीजन खत्म होती है, जिससे उस जल में रहने वाले जीव जंतु ऑक्सीजन की कमी से खत्म होने लगते हैं। इस पर भी प्रतिबंध होना चाहिए। अगर किसी स्थान पर पानी की कमी है, तो पर्यटकों को चाहिए कि वहां पानी का इस्तेमाल कम करें। दिन में दो बार स्नान करने के बजाय सिर्फ एक बार स्नान करें। बाथ
टब का इस्तेमाल ना करें। पर्यटक स्थल अपना विकास कुछ इस तरह से करते हैं कि वहाँ के प्राकृतिक जंगलों को काटकर बड़े बड़े होटल के रूप में सीमेंट के जंगल खड़े कर दिए जाते हैं। अगर पर्यटकों को होटल की बजाय स्थानीय लोगों के बने घरों में ठहराया जाए और उन्हीं लोगों के द्वारा बनाया गया स्थानीय भोजन कराया जाए तो पर्यटक वहाँ की संस्कृति, आचार व्यवहार के बारे में अच्छी तरह जान

0: जानकारी हासिल कर पाएंगे व स्थानीय लोगों की आय वृद्धि में सहायक बनकर उनकी गरीबी दूर कर सकेंगे, जिससे बड़ी संख्या में होटल बनाने पर लगाम लग सकेगी। पर्यटकों को इस बात की जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि वे जो भी वस्तुएं इस्तेमाल में लाएं, उनसे उत्पन्न कचरा बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, क्योंकि जो कचरा प्राकृतिक रूप से अपघटित नहीं होता है वह प्रदूषण फैलाकर पर्यावरण तंत्र को हानि पहुंचाता है। और ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि पर्यावरण तंत्र के गड़बड़ाने से मानव जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। इसका मुख्य उदाहरण उत्तराखंड में आई आपदा से हम भलीभांति जान सकते हैं, जिसका कारण ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघलना था। अतः अगर हम प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए किसी स्थान का भ्रमण करने जाएंगे तो हम लाभान्वित तो होंगे ही, साथ ही पर्यावरण से दोस्ती भी निभा पाएंगे। किसी स्थान पर जब हम घूमने जाएं तो वहां छोड़कर आएं सिर्फ अपने पैरों के निशान व वहां की खूबसूरत यादों के रूप में लाएं तो सिर्फ वहां के दर्शनीय स्थलों के चित्र।
1: बहुत ही खूबसूरत विचार प्रस्तुत किए डॉक्टर शालिनी शर्मा ने। उन्होंने हमें बताया कि इको टूरिज्म एक जिम्मेदार यात्रा है, इससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है, वन्य जीवों की रक्षा होती है, स्थानीय लोगों की आय बढ़ती है और संस्कृति परंपराएं सुरक्षित रहती हैं। तो बहनों, वनिता लोक कार्यक्रम में मिलते हैं अभी एक छोटे से अंतराल के बाद।
2: सही उपाय अपनाएं, लू से खुद को बचाएं।
3: जी हाँ, बाहर निकलते वक्त गमछा, टोपी, चश्मा एवं छाती का प्रयोग करें। चेहरे, सिर और गर्दन पर गीला कपड़ा रखें।
2: छाछ, लस्सी, नमक चीनी का घोल, नींबू पानी और आम के पना का सेवन करें तथा संतुलित हल्का व नियमित भोजन करें।
3: बार बार पानी पिएं, ठंडे पानी से नहाएं, हल्के सूती कपड़े पहनें, दिन में खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें।
2: चाय, कॉफी जैसे गर्म पेय का सेवन न करें। तेज धूप में बाहर न निकलें। चक्कर या घबराहट आने पर डॉक्टर को दिखाएं।
3: पालतू जानवरों को छांव में रखें और उन्हें खूब पानी पीने दें।
2: ये सूचना उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
3: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
2: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
3: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
2: अधिक व्यायाम न करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
3: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
2: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
3: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।

ये हरियाली और ये रास्ता जीवन भर का वास्ता। बिल्कुल सही बात है बहनों, ये हरियाली और ये रास्ते ही हैं जो हमारे जीवन को खुशनुमा बनाते हैं, स्वस्थ बनाते हैं। तो बहनों, जब बात हरियाली और रास्ते की हो रही है, तो हम आपको बता दें कि एक ऐसा स्थान जहाँ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक या कलात्मक वस्तुओं को सुरक्षित रखकर लोगों को देखने और सीखने के लिए प्रदर्शित किया जाता है, उस स्थान को हम संग्रहालय कहते हैं। आज हम संग्रहालय की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो जहाँ पुरानी और महत्वपूर्ण वस्तुओं का संग्रह और प्रदर्शन किया जाता है, उसे संग्रहालय कहते हैं। तो बहनों, आज 18 मई का दिन है और आज के दिन को हम प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी शुरुआत इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने वर्ष 1977 में की थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को संग्रहालयों के विषय में जागरूक करना है। ये हमारी धरोहरों को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य हमारी विरासत का संरक्षण करना, इतिहास और ज्ञान का प्रसार करना, नई पीढ़ी को शिक्षा और जागरूकता देना और इसके साथ साथ कला और संस्कृति के प्रति रुचि को बढ़ाना है। भारत में और इसके अलावा अन्य कई देशों में इस दिन विशेष प्रदर्शनी, व्याख्यान और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहाँ

प्राचीन मूर्तियाँ, पुराने सिक्के, हथियार, चित्रकला, दस्तावेज और अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएं देखने को मिलती हैं, जो हमें अतीत से जोड़कर आने वाली पीढ़ियों के लिए भंडार बनती हैं, जो कि ज्ञान के भंडार हैं। भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में संग्रहालय हमारी सभ्यता और परंपराओं की झलक प्रस्तुत करते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि हमारे पूर्वज कितने समृद्ध ज्ञान और कला के धनी थे। आजकल तो संग्रहालयों भी डिजिटल हो गए हैं, जिससे कि घर बैठे ज्ञान और संस्कृति का प्रचार और प्रसार अधिक आसान हो गया है। तो बहनों, ये संग्रहालयों का ज्ञान जो कि डिजिटल हो गया है, ये हमारे बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, उनके भविष्य के लिए विशेष फलदायी है, जो कि उनके बेहतर भविष्य के लिए बहुत ही सहायक होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और चलते चलते हम आपको बता देते हैं कुछ घरेलू टिप्स वनिता लोक कार्यक्रम में, क्योंकि समय हो गया है घरेलू टिप्स का। तो बहनों, तेज धूप में हम अपनी त्वचा की देखभाल करने के लिए क्या करें? तो बहनों, हम जब आहार लेते हैं तो उसमें अधिकतर रूप में हमें खट्टे फलों का सेवन जरूर करना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर होते हैं, फलदायी होते हैं, फायदेमंद होते हैं। तो इस मौसम में त्वचा की देखभाल तो बहुत ही जरूरी है, तो इसलिए दिन भर में आप 8-10 ग्लास पानी पिएं और विटामिन सी युक्त फल जैसे संतरा, मौसमी, नींबू का सेवन करें। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट त्वचा के लिए फायदेमंद होते हैं। पसीना आने पर ठंडे पानी से चेहरा धोकर हल्का मॉइस्चराइजर करें और रात में एलोवेरा, दही और खीरे का पैक, ठंडा दूध या आइस पैक का इस्तेमाल त्वचा की जलन को कम करता है और गर्मी से हमें राहत दिलाता है। और बच्चों के लिए सनस्क्रीन और कैलामाइन लोशन सुरक्षित विकल्प हैं। तो बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस तरह से आप अपने आहार में शामिल करके, गर्मी में, तेज धूप में त्वचा की देखभाल करके, खट्टे फलों का आनंद लेकर अपने आप को स्वस्थ रखेंगी, अपने परिवार को स्वस्थ रखेंगी। तो बहनों, उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी उम्मीद के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इसी के साथ अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी महिलाएं अपना कार्यक्रम सुन रही थीं वनिता लोक। आज कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थीं दीप्ति शर्मा। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आप सुन रहे थे आराधना फिल्म का गीत। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे, धुन बनाई थी सचिन देव बर्मन ने। कार्यक्रम का अगला गीत हमने अनुपमा फिल्म से लिया है, गायिका हैं लता मंगेशकर। कैफी

0: दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य 19 अरब डॉलर है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोड़बोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा एआई गलियारे की शुरूआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
2: इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आई। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एआई कॉरिडोर यानी सीटैक का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिक केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र एआई, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन एसएमई और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी लीडिट के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
3: ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തയും
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार विभिन्न सरकारी

बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रूपये हस्तांतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में

0: किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने दो प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
1: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैले। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्लीवासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
2: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले यह सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
3: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।

0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। यह हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माही में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत।

किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था अपनापन। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में अनपढ़ फिल्म का गीत। गीत राजा मेहती अली खान ने लिखा है, धुन बनाई है मदन मोहन ने।

सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत आप इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से FM 102.2 MHz पर।

अनोखी अदा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, किशोर कुमार की आवाज में। गीत मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए अब सुनते हैं फर्ज फिल्म के लिए मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर को, शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था गैम्बलर। नीरज के गीत को संगीत से संवारा SD बर्मन ने। और कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज़ों में बिन बादल बरसात फिल्म का नगमा। शकील बदायूनी का गीत है, संगीत हेमंत कुमार का।

लता मंगेशकर और हेमंत कुमार को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था बिन बादल बरसात। इसी गीत के साथ ही सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। इस समय अपराह्न के 3 बज चुके हैं। हमारी आज की ये पहली सभा अब यहीं संपन्न होती है। अपनी दूसरी सभा में संध्या 5:30 पर अपने कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5:30 हुए हैं, अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। साथियों, आज विश्व एड्स टीकाकरण दिवस है, जिसे वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे भी कहते हैं। यह दिवस हर साल 18 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य एचआईवी और एड्स की रोकथाम के लिए वैक्सीन के टीके के अनुसंधान और जागरूकता को बढ़ावा देना है। इस दिवस की नींव 18 मई 1997 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा एक भाषण से पड़ी। उन्होंने वैज्ञानिकों को चुनौती दी कि एड्स के खतरे को रोकने के लिए एक प्रभावी निवारक टीका खोजना अत्यंत आवश्यक है। पहला विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई 1998 को मनाया गया था। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का यह सम्मान का दिवस है। ये दिन उन हजारों वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों और स्वयंसेवकों को समर्पित है, जो एक सुरक्षित और प्रभावी एड्स वैक्सीन खोजने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। इसके माध्यम से लोगों को एचआईवी वैक्सीन की आवश्यकता, अनुसंधान में आ रही चुनौतियों और इस बीमारी से जुड़ी भ्रांतियों के बारे में जागरूक किया जाता है। एड्स और इसके टीकों पर हो रहे निरंतर शोध व बचाव के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप NIH HIV इन्फो की आधिकारिक वेबसाइट भी देख सकते हैं। और आइए सुनते हैं एक संदेश आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में।

0: श्रोताओ, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अभी आपने ये संदेश सुना। और अब एक बात और हम आपको बताएं, आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस भी है। ये दिवस भी 18 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को संग्रहालयों के प्रति के महत्व, हमारी सांस्कृतिक विरासत और इतिहास के संरक्षण के बारे में जागरूक करना है। यह दिवस समाज के विकास और हमारी ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने में संग्रहालयों की भूमिका को उजागर करता है। इस विशेष दिन की स्थापना 1977 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा की गई थी। यह आयोजन प्रतिवर्ष ICOM के नेतृत्व में किया जाता है। इसका लक्ष्य लोगों को कला, इतिहास और संस्कृति के प्रति जागरूक करना है। संग्रहालय केवल पुरानी वस्तुओं को प्रदर्शित करने की जगह नहीं होते, बल्कि ये समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये हमारी ऐतिहासिक, कलात्मक और पुरातात्विक विरासतों को सुरक्षित रखते हैं। विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को हमारे अतीत, विज्ञान और सभ्यता के विकास को समझाने में मदद करते हैं। ये विभिन्न समाजों और संस्कृतियों के बीच समझ और जुड़ाव को बढ़ावा देते हैं। ये तो रही बात अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की, और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता मथुरा की मूर्ति कला विशेषज्ञ वार्ताकार हैं कलाविद चंद्रशेखर शर्मा, और इनसे भेंट कर रहे हैं डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी।
1: जो मथुरा की मूर्ति कला है, ये कलाओं के संसार में इसका जो इतिहास है वो अत्यंत

0: प्राचीन है, और प्राचीनता ही इसकी खासियत नहीं है बल्कि इसकी कला की अपनी एक स्वतंत्र स्वायत्त दुनिया है। मथुरा की चित्रकला को लेकर के जो अब तक शोध हुए हैं उसमें ये बताया गया है कि भारतीय चित्रकला में, मूर्ति कला में, स्थापत्य में इसका खास तौर से एक शैली के रूप में एक नई परंपरा इजाद हुई है। संयोग से मथुरा की मूर्ति कला के इतिहास के बारे में, उसकी परंपरा के बारे में, उसका क्या महत्व है, इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमने चंद्रशेखर शर्मा जी, जो इसी शहर के बासिंदे हैं और मथुरा के साहित्य, संस्कृति और कलाओं पर बारीक और चौकन्नी निगाह हमेशा रखते हैं, मूर्ति कला के भी क्षेत्र में आपकी निगाह जो है बहुत ही पारदर्शी है और सूक्ष्म है। मैं सबसे पहले शर्मा जी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ
1: धन्यवाद त्रिपाठी जी।
0: स्टूडियो में, और ये जानना चाहता हूँ कि मथुरा की जो मूर्ति कला है इसके इतिहास के बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: मथुरा की मूर्ति कला के विषय में पुरातत्व वेताओं के अनुसार
0: जी,
1: मौर्य काल जो ईसा पूर्व 325 से लेकर 144 वर्ष तक माना जाता है, उस काल में प्रस्तर मूर्ति निर्माण का प्रचलन नहीं था।
0: जी,
1: उस समय प्रस्तर कला वास्तुकला का ही एक अंग थी।
0: जी,
1: वास्तुकला का प्रयोग शाही महलों के निर्माणों में, कीर्ति स्तंभों के निर्माणों में और महत्वपूर्ण शिलालेखों के निर्माणों में किया जाता था। मौर्य काल के शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक। मौर्य काल के बाद आता है शुंग काल
0: जी,
1: जो ईसा पूर्व 84 से लेकर 72 ईसा पूर्व तक माना जाता है
0: जी।
1: इस काल के शासकों के नाम मिलते हैं
0: जी,
1: पुष्यमित्र और अग्निमित्र
0: जी।
1: इस समय बुद्ध और महावीर को प्रतीक चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता था
0: जी।
1: किंतु ब्राह्मण धर्म में प्रस्तर मूर्तियां पहले से ही वृष्णवीर और बलराम के रूप में प्रचलित थीं। यह दोनों मूर्तियां त्रिपाठी जी
0: जी
1: आज भी लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित हैं।
0: अच्छा, ये बताइए इन मूर्तियों में प्रमुख रूप से किनकी किनकी मूर्तियां हैं?
1: ये मूर्तियां वृष्णवीर की हैं और मथुरा जनपद के परखम स्थान से प्राप्त परखम यक्ष की मूर्ति उन्हीं मूर्तियों में से एक है, जो मथुरा के राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित है।
0: अच्छा, ये बताइए राजकीय संग्रहालय जो मथुरा का है, उसको यहाँ के एक बड़े मशहूर, पराधीन भारत के दौर में एक बड़े ही मशहूर कलेक्टर आए थे, एफ एस ग्राउस जो कलेक्टर थे, और मेरा ख्याल है कि ये मुझे जो जानकारी है कि ये 1871 से और 77 तक यहाँ रहे वो।
1: हाँ,
0: और उनके बारे में
1: 71 से
0: जी
1: 77 तक
0: जी, और उनके बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, और लोग यह बताते हैं कि वो पूरा समय, 7 वर्षों का समय है, उन्होंने मथुरा में जहाँ जहाँ भी जो जो उनको मूर्तियां मिली, जहाँ भी मिली, जिससे भी मिली, गाड़ी पर लाद लाते थे, और वो जो है धीरे धीरे इकट्ठा करने लगे और उसको प्राणों से भी ज्यादा तवज्जो देते थे सुरक्षा के लिए। तो ये उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो प्रस्तर मूर्तियों की खोज करते रहते थे, और दूसरे अगर रास्ते में उन्हें कोई गरीब मिल गया तो उससे पूछते थे, भाई खाना खाए हो? तो अगर उसने कहा कि नहीं खाए हैं तो कहते थे मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, और उसको भोजन कराते थे।
1: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, वो इतने सहृदय थे,
0: अर्थात वो गरीबों का मसीहा तो था ही, कलाओं का भी एक खास तौर से मथुरा के लिए मसीहा ही कहा जाएगा।
1: कला के प्रति वो इतने प्रतिबद्ध थे
0: जी
1: कि बरसाने की और नंदगांव की होली देखने वे घोड़े पर बैठ करके वहां जाया करते थे।
0: हाँ,
1: और उसका वर्णन अपने पुस्तक में जो मथुरा मेमोयर है उसमें हाँ, किया है।
0: अच्छा,
1: और इसका परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उनको यहाँ से ट्रांसफर किया।
0: नहीं, यहाँ से तो बुलंदशहर गए थे।
1: यस, बुलंदशहर में गए और एज ए पनिशमेंट गए, और उसका कारण ये था कि आरसी शर्मा जो डायरेक्टर थे उन्होंने

0: पता लगाया बड़ी मेहनत के साथ, आखिर ऐसा भला और संस्कृति का जो
1: रक्षक
0: था वो उसको ट्रांसफर क्यों कर गया, क्यों किया गया।
1: जी जी।
0: तो उसके जवाब बड़ी खोज से निकला कि एज ही टुक कीन इंटरेस्ट इन ब्रज कल्चर।
1: अच्छा, इस वजह से
0: उनका जो पनिशमेंट जो था इस कारण लिया गया कि वो ब्रज की कल्चर को इतना प्यार करते थे,
1: इसलिए हटा दिया गया।
0: इसलिए और बुलंद शहर में भी उन्होंने वही किया, वहाँ की कल्चर को आगे रखा।
1: हाँ।
0: कल्चर को लिखा।
1: हाँ हाँ।
0: बावजूद इसके कि उनको इंस्ट्रक्शन थे कि वो कल्चर के बारे में नहीं लिखेंगे।
1: अच्छा।
0: लेकिन उन्होंने वहाँ पर भी वही किया।
1: अच्छा।
0: और उसका परिणाम ये हुआ, ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड एज ए पनिशमेंट, देयर ही डाइड ट्यूबरक्लोसिस
1: हो गई।
0: तो
1: इतना श्रम किया उन्होंने
0: इतना
1: कार्यों में। अच्छा, उन्होंने जनहित के भी कार्य बहुत किए।
0: जनहित के कार्य इतने किए कि मथुरा से हाथरस जाने वाली जो रेलवे लाइन है वो उन्हीं के कार्यकाल में उन्हीं के प्रयासों से लगी, और उस रेल की पटरी बिछाने में यहाँ के प्रसिद्ध सेठ लक्ष्मी चंद का विशेष योगदान था। और उसके बाद अगर किसी का नाम होता है तो वो F.S. ग्राउस है।
1: अच्छा, ये बताइए, F.S. ग्राउस की देन है ये मथुरा का जो कला संग्रहालय है। इस कला संग्रहालय को तो आपने कई बार देखा होगा, इसमें यक्ष और यक्षिणी की जो मूर्तियां हैं
0: जी,
1: और उसमें जो लिपि का प्रयोग है वो तो ब्राह्मी लिपि है।
0: ब्राह्मी लिपि है क्या है,
1: ब्राह्मी लिपि,
0: और उनमें संस्कृत का भी है।
1: अच्छा,
0: संस्कृत का भी है। त्रिपाठी जी, मैं अपने विषय पर आगे बढ़ना चाहूंगा। मथुरा, जब मैं कह रहा था कि मथुरा जनपद के परखम स्थान से प्राप्त परखम यक्ष की मूर्ति उन्हीं मूर्तियों में से है।
1: हाँ।
0: जो के ब्राह्मण धर्म में शुंग काल में पूजी जाती थी। ब्राह्मण धर्म की इन प्रस्तर मूर्तियों की लोकप्रियता को देख देख कर बौद्ध धर्म मानने वालों और जैन धर्म मानने वालों के मन में अपने अपने प्रतीकों के प्रति आकर्षण कम हो गया। और उन्होंने भी नमूनों के रूप में बुद्ध और महावीर की मूर्तियां बनवानी आरंभ कर दी। क्योंकि महावीर का संबंध त्रिपाठी जी
1: जी
0: मथुरा से निकट का था, पार्श्वनाथ की जन्म भूमि मथुरा ही रही थी, और बौद्ध धर्म माने वालों की संख्या भी यहाँ कम नहीं थी। अतः मथुरा में महावीर और बुद्ध के यह नमूने अच्छी संख्या में दिखाई देने लगे। शुंग काल के बाद आता है त्रिपाठी जी सक छत्रप काल, जो ईसा पूर्व 100 से लेकर 57 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल के शासकों में राजबुल, सोडास, चस्टन, रुद्रायन के नाम हमें मिलते हैं त्रिपाठी जी।
1: जी जी।
0: इस सक छत्रप काल तक भी बुद्ध और महावीर के वे नमूने थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ चलते रहे। शुंग काल के बाद आता है त्रिपाठी जी
1: जी
0: कुषाण काल, जो 1 से लेकर 176 ईस्वी तक माना जाता है। इस काल के शासकों में कुजुल कटफिस, विम कटफिस, कनिष्क, हुविष्क और वासुदेव के नाम हमें मिलते हैं त्रिपाठी जी।
1: जी जी।
0: इन शासकों में सबसे अधिक प्रतापी शासक था कनिष्क। इतिहासकार कनिष्क को दूसरा सम्राट अशोक मानते हैं। उसके कंट्रीब्यूशन के कारण।
1: अच्छा, ये बताइए, एक बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बुद्ध की बहुत सारी प्रस्तर मूर्तियां हैं मथुरा संग्रहालय में, तो ये बताइए कि ये जो बुद्ध की प्रतिमाएं हैं वो बुद्ध के प्रति इतना आकर्षण क्या इस वजह से हुआ कि बुद्ध यहाँ आए थे?
0: बुद्ध यहाँ दो बार आए थे। पहली बार उनके विचार मथुरा के बारे में अच्छे नहीं रहे किन्हीं कारणों से, लेकिन दूसरी बार जब मथुरा आए तो ये गोवर्धन में उर्मुंड पर्वत जो कहलाता था उस समय गिरिराजी पर्वत जो उसको कहते हैं, उस पर चढ़ करके उन्होंने इसकी सुंदरता को निहारा।
1: हाँ।
0: चारों तरफ हरियाली और नील आकाश जब देख करके इतने प्रभावित हुए, प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपने शिष्य आनंद जो

0: तो आनंद उनका शिष्य भी था और चचेरा भाई भी था।
1: जी जी।
0: उससे उन्होंने कहा, आनंद मेरी मृत्यु के 100 वर्ष बाद मथुरा में एक ब्राह्मण बालक नट भट बिहार में दीक्षित होकर श्रेष्ठ धर्मोपदेशक होगा। वह उपगुप्त कहलाएगा और उस उपगुप्त के मेरे ही समान लाक्षणिक चिन्ह नहीं होंगे। इसके आधार पर वह अलाक्षणिक बुद्ध के रूप में प्रतिष्ठित भी होगा। यह सब कुछ लिखा हुआ है दिव्यावदान में। उन्होंने आगे ये भी कहा उपगुप्त के बारे में कि वह उपगुप्त मेरे ही समान रूपवान, मेरे ही समान प्रतिभावान और मेरे ही समान श्रेष्ठ धर्मोपदेशक होगा। ये उन्होंने कहा। तो उपगुप्त बाद में यहाँ पैदा हुआ। उसने नटबट बिहार में अपनी शिक्षा दीक्षा ली बौद्ध भिक्षु की। और विशेष बात यह है कि वही उपगुप्त सम्राट अशोक का धर्म गुरु बना। मथुरा का राजकीय संग्रहालय तो एक प्रकार से मथुरा की मूर्तिकला का ही संग्रहालय है। इस संग्रहालय की स्थापना मथुरा के तत्कालीन जिला कलेक्टर, जैसा मैंने पहले कह चुका हूँ, F.S. ग्राउस ने सन 1874 में की थी।
1: जी जी। आदरणीय शर्मा जी, आपसे इस विषय पर बातचीत का एक बड़ा लंबा चौड़ा प्लॉट है। उसका एक केवल आरंभिक आपके निर्वचन में और वार्तालाप में इस मूर्तिकला के बारे में दिलचस्पी उनकी जरूर होगी और वो मथुरा संग्रहालय कभी वक्त निकाल कर जाएंगे और देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: साथियों, अभी आपने सुनी भेंट वार्ता मथुरा की मूर्तिकला। विशेषज्ञ थे कलाविद चंद्रशेखर शर्मा और इनसे भेंट कर रहे थे अरविंद त्रिपाठी। और साथियों, अब कार्यक्रम में आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का।

0: अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवावाणी FM 102.2 MHz पर। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 6 बजने को है। अब वक्त है हिंदी समाचारों का। कृपया कुछ पल समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गौर स्टोर ने ओस्लो में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत नॉर्वे संबंधों को हरित रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की, जो स्वच्छ ऊर्जा, नीली अर्थव्यवस्था और हरित परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: भारत और नॉर्वे की ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए लाभदायक होगा। नॉर्वे आज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ रहा है। दो बड़े मैरिटाइम देश होने के नाते हम साथ मिलकर मरीन इकोनॉमी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग में सहयोग को मजबूत करेंगे।
1: वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, चक्रीय अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष और आर्किटेक्ट क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने भारत EFTA व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते से उत्पन्न होने वाली विशाल अवसरों, विशेष रूप से व्यापार, प्रौद्योगिकी सहयोग और रोजगार सृजन के क्षेत्र में भी प्रकाश डाला। वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे को धन्यवाद दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे। वे आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि इस दौरान सामरिक सहयोग बढ़ाने, रक्षा औद्योगिक साझेदारी मजबूत करने, समुद्री सहयोग सुदृढ़ करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। विदेश मंत्रालय खाड़ी के अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास 2400 घंटे हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने अमेरिका के साथ बातचीत करने के अपने निर्णय को उचित ठहराया है और कहा है कि कूटनीति में गरिमा जरूरी है, लेकिन ईरान अपने राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करना जारी रखेगा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरेनियम के भंडारों, प्रतिबंधों में राहत और पश्चिम एशिया में महीनों से जारी संघर्ष के लिए क्षतिपूर्ति को लेकर बातचीत में गतिरोध रहते हुए ईरान को नई चेतावनी जारी की है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में CBI ने 5 जगहों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। अब तक की जांच में परीक्षा से जारी हुए रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्न पत्रों के वास्तविक

का पता चला है। प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच के लिए दो जांच आयोगों का गठन किया है। संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच करने वाले आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के दौरान महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच करने वाले आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद हैदराबाद जीत दर्ज कर प्लेऑफ के और करीब आना चाहेगा, जबकि चेन्नई की नजर शीर्ष चार में प्रवेश करने की होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। संध्या 7:20 पर होंगे प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद संध्या 6:15 पर आप सुनेंगे ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में चर्चा होगी जैविक खाद की उपयोगिता और उत्पादन बढ़ाने हेतु फसल चक्र अपनाएं। चर्चा करेंगी मृणालिनी दीक्षित। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता मिट्टी पानी की जांच कब और कहां कराएं। विशेषज्ञ वार्ताकार होंगे डॉक्टर खजान सिंह। साथ ही हमारे श्रोता आनंद ले सकते हैं इस कार्यक्रम में ब्रज लोक गीतों का।

शाम 6:45 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन। ब्रज साहित्य कार्यक्रम होगा संध्या 7:05 पर। इसमें आज आप सुनेंगे ब्रजवार्ता, अधिक मास की उत्पत्ति और हिंदू धर्म में महत्व। आलेख राधाकांत शर्मा का होगा और वाचन देवराज कृष्ण दीक्षित का। संध्या 7:31 पर आप सुनेंगे संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी।

फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे रात्रि 8 बजे से लेकर 8:20 तक। रात 8:20 पर देशगान प्रसारित किए जाएंगे। एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम होगा। रात्रि 8:30 पर आज की फिल्म होगी वेलकम। रात 9:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने।

रात 10 बजे आप सुनेंगे रूपक संस्कृति का वातायन राजकीय संग्रहालय मथुरा। लेखक और प्रस्तुतकर्ता होंगे डॉक्टर सत्यदेव आजाद। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 10:30 पर। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे राकोसी कानड़ा।

रात 11 बजे होंगे समाचार हिंदी में, 11:05 पर आप सुनेंगे समाचार अंग्रेजी में, रात्रि 11:10 पर समापन होगा हमारी आज की इस दूसरी सभा का। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। किसान भाइयों, इस मंगलवार दिनांक 19 मई 2026 को शाम 6:15 से लेकर 30 मिनट की अवधि के हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में इस बार विषय रहेगा खरीफ फसलों की आदान व्यवस्थाएं एवं खेती की तैयारी। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर अमर सिंह। किसान भाइयों, खरीफ फसलों से अधिक उत्पादन लेने के लिए कौन कौन से कार्य करने हैं, जैसे गर्मियों में जुताई, उन्नत किस्म के बीज, खाद की मात्रा एवं मिट्टी पानी की जांच आदि विषय पर जानकारी लेने हेतु आप हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर अमर सिंह। आप हमारे टेलीफोन नंबर 2530135 पर फोन करके या व्हाट्सएप पर 9412255575 पर संदेश भेजकर इस संबंध में आप सीधे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं डॉक्टर अमर सिंह से। याद रखिए, कार्यक्रम का समय रहेगा मंगलवार शाम 6:15 से लेकर 6:45 के मध्य। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। अब आइए सुनते हैं देश गान।

ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनों को मृणालिनी बहन की राम राम। भैया आज हम चर्चा करेंगे जैविक खाद की उपयोगिता। देखो भैया आप जे बतावे की तो ज़रूरत है ही ना है कि जैविक खाद कितना उपयोगी है, क्योंकि आप खेती बाड़ी करें हैं और प्रतिदिन जाने भी हैं। जैविक खाद पौधों और जीवों के प्राकृतिक अवशेषों से बनाई जावे है। ये मिट्टी की गुणवत्ता, जल धारण की क्षमता, सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाकर फसल उत्पादन को दीर्घकालिक और टिकाऊ रूप से बनावे है। भैया जैविक खाद जैसे गोबर की खाद हो, कंपोस्ट हो, बर्मी कंपोस्ट हो, प्रमुख लाभ हमें हैं इनसे। सबसे बढ़िया बात भैया जो है कि मिट्टी को भुरभुरा उपजाऊ बनावे है जैविक खाद, जैसे हवा का संचार बेहतर होवे है, जल धारण की क्षमता मिट्टी में बढ़ जावे है। जैविक पदार्थों की मौजूदगी से मिट्टी की पानी सोखने की जो क्षमता है या पानी रोके रहने की जो क्षमता बढ़ जावे है, सिंचाई की कम आवश्यकता पड़े है। अगर हम जैविक खादन का प्रयोग करें तो मिट्टी में रहने वाले जो लाभदायक जीवाणु हुए कैचुआ के खाजे भोजन को काम करे है और प्राकृतिक रूप से पौधों को पोषक तत्व प्रदान करे है। पोषक तत्वों की निरंतर आपूर्ति बनी रहे। रासायनिक खादों के विपरीत जैविक खाद पौधों को धीरे धीरे लंबे समय तक आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करें। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है। उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार रह जावे। जैविक खाद द्वारा उगाई जाने वाली जो सब्जी हुए, फसल हुए, पौष्टिक, स्वादिष्ट और रसायनों से जहर से मुक्त रह गए हैं, जबकि बाजार में भी भारी मांग रह गए हैं। तो भैया खेत की तैयारी के समय बुवाई से पहले जैविक खाद को मिट्टी में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। बड़े पौधे या पेड़ों की जड़न के पास मिट्टी में जाकर छिड़काव किए जा सके हैं। पानी में भी घोलकर जैविक खाद जैसे जीवामृत को सिंचाई के पानी के या ड्रिप में माध्यम से सीधे सीधे पौधों को पहुंचाया जा सके। जैविक खेती हमारे स्वास्थ्य के काजे, हमारी खेत के काजे, हमारी खेत की माटी के काजे, सवन के काजे लाभकारी रह रहे हैं। तो भैया कोशिश करना चाहिए कि अधिक से अधिक हम जैविक खाद की उपयोगिता को समझें और वाको प्रयोग करें। ये तो रही आज की चर्चा। कार्यक्रम में आगे भी हम आपको बताएंगे मिट्टी पानी की जांच और कब और कहां कैसे करानी चाहिए। लेकिन बातें पहले आनंद लें बबिता शर्मा के स्वर में जालू गीत को।

0: भैया और भैया पैनल ले रहे बबीता शर्मा के स्वर में जालू गीत को। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको जानकारी दिलवाएंगे डॉक्टर खजान सिंह से, मिट्टी पानी की जांच कब और कहां कराएं।
1: पैदावार प्राप्त करने हेतु मिट्टी एवं पानी की जांच कराना आवश्यक है। मिट्टी की जांच प्रत्येक 3 वर्ष बाद करवा लेनी चाहिए। यदि मिट्टी हल्की है तो जांच कम समय के अंतराल से करानी चाहिए। मिट्टी की जांच हेतु खेत से मिट्टी का नमूना लेकर अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक को दे दें अथवा सीधे जिला मुख्यालय पर स्थित मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जमा करवा दें। नमूना सही विधि से लेने से ही सही परीक्षण हो पाएगा। खेत में ली जाने वाली फसल का नाम आदि लिखकर भेजने से उपयुक्त सलाह मिल पाएगी। नमूना लेने की विधि नमूना जांच करवाने के उद्देश्य पर निर्भर करती है। नंबर 1, उर्वरकों की सिफारिश के लिए मिट्टी का नमूना लेने की विधि। उर्वरक सिफारिश के उद्देश्य से मिट्टी का नमूना लेने हेतु ढलान, मिट्टी का प्रकार, जल निकास, फसल बढ़वार इत्यादि के आधार पर अपने खेत को विभिन्न भागों में बांट लें।

हर भाग का अलग अलग एक मिला जुला नमूना लें, अर्थात मिट्टी की एक ही किस्म के चार पांच जगह से लेकर नमूने एक मिला जुला नमूना बनाएं। नमूना लेने की जगह से पहले भूमि में घास फूस साफ कर लें। जहां पर फसलें कतारों में बोई गई हों वहां कतारों के बीच से नमूना लें। अधिकतर फसलों की जड़ें 6 इंच की गहराई तक

मोटी मिट्टी की परत ऊपर से नीचे तक निकालें। इस प्रकार चार पांच जगहों से एकत्रित की गई मिट्टी को साफ फर्श पर रखकर अच्छी तरह से मिलाएं। यदि ढीले हों तो उन्हें तोड़ दें। यदि मिट्टी गीली हो तो उसे 2-3 घंटे तक सुखाएं। मिट्टी के ढेर को 4 भागों में बांट लें। आमने सामने वाले भागों को छोड़कर शेष 2 भागों की मिट्टी हटा दें। इस प्रक्रिया को दोहराते रहें जब तक मिट्टी की मात्रा आधा किलोग्राम रह जाए। नमूने को एक साफ कपड़े की थैली में भर दें तथा उसके साथ नाम व पता, खेत का नाम, क्षेत्र की मुख्य फसलें, सिंचित असिंचित, ढलान, जल निकास का विवरण भेजा जाए। उसकी एक प्रति अपने पास रखें। किन किन फसलों की सिफारिश चाहिए उसका नाम लिखें। नमूने की पूरी जानकारी देने से मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला से अच्छे सुझाव मिलते हैं। मिट्टी का नमूना लेने के लिए स्थान का चुनाव महत्वपूर्ण होता है। पेड़ तथा झाड़ झंखाड़ के आसपास, सिंचाई की नालियों, कुएं अथवा मैणों के आसपास, खाद की ढेरी के आसपास, दलदल वाली जगह, निचले क्षेत्र एवं उस क्षेत्र से जहां कुछ समय पूर्व उर्वरक डाले गए हों अथवा पहले खाद की ढेरी पड़ी हो, ऐसे स्थान से मिट्टी का नमूना न लेवें। उर्वरकों की सिफारिश हेतु 2 प्रकार की मिट्टी की जांच होती है। प्रथम प्रकार की जांच में मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास की मात्रा के साथ कार्बन की मात्रा एवं ईसी की जानकारी मिलती है। दूसरी प्रकार की मृदा की जांच में मुख्य पोषक तत्वों के अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता की भी जानकारी मिल जाती है। फसलों के लिए 16 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 3 तत्व कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन हवा व पानी से मिल जाते हैं। 3 तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटास की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, जिन्हें प्राथमिक पोषक तत्व कहा जाता है। इनकी पूर्ति प्राय रासायनिक उर्वरकों यथा यूरिया, DAP, SSP, म्यूरेट ऑफ पोटास आदि से करते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं सल्फर तत्व, जिन्हें द्वितीयक पोषक तत्व कहा जाता है, की भी काफ़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। शेष तत्व आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, कॉपर, जिंक, क्लोराइड व मॉलिब्डेनम की कम मात्रा में पौधों को आवश्यकता होती है। इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है, किंतु इनकी उपलब्धता अनिवार्य है। सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए अति आवश्यक हैं, अतः मृदा में इन तत्वों की उपलब्धता की भी जांच करवा लेनी चाहिए। दूसरे प्रकार की जांच ऊसर भूमिका जांच होती है। इस ऊसर भूमि का नमूना गहराई तक लेना चाहिए। नमूने की गहराई ऊपर से 15 सेंटीमीटर, 15 से 30 सेंटीमीटर, 30 से 60 सेंटीमीटर और 60 से 100 सेंटीमीटर की 4 सतहों का लेना चाहिए। ऊसर भूमियों में बर्मा से 100 सेंटीमीटर का गड्ढा खोदकर नमूना लिया जा सकता है। गड्ढे की एक तरफ की दीवार सीधी कर लें। ऊपर से 15, 30, 60 सेंटीमीटर गहराई तक निशान लगा लें। सीधी दीवार से 15 सेंटीमीटर तक कस्सी से मिट्टी बाहर निकाल लें। कस्सी की मिट्टी हटाकर मिट्टी साफ कपड़े में रखें। इसी तरह 15 से 30, 30 से 60 और 60 से 100 सेंटीमीटर गहराई का नमूना लेवें। नमूने की मात्रा प्रत्येक गहराई से लगभग आधा किलोग्राम होनी चाहिए। हर एक नमूने को अलग अलग साफ कपड़े की थैलियों में भरें। गहराई, ढलान, ऊसर भूमि बनने का कारण, वर्षा, फसल चक्र, भूमि जल स्तर आदि का विवरण कागज की पर्ची में लिखकर उसी थैली में रख दें। तीसरे प्रकार की जांच बाग लगाने के लिए मिट्टी की जांच होती है। बाग लगाने के लिए मिट्टी की नमूना लेने की विधि, फल के पेड़ों की वृद्धि एवं विकास के लिए मृदा का पोषण स्तर एवं अन्य परिस्थितियां महत्वपूर्ण हैं। बाग लगाने वाली भूमि की 2 मीटर गहराई तक नमूना लेना चाहिए। नमूना बर्मा अथवा 2 मीटर गहरा गड्ढा खोद कर लेवें। नमूने की गहराई ऊपर से 30 सेंटीमीटर तक, 30 से 60 सेंटीमीटर तक, 60 से 100 सेंटीमीटर तक तथा 100 से 150 सेंटीमीटर एवं 150 से 200 सेंटीमीटर तक 5 सतहों का लेना चाहिए।
कस्सी की सहायता से।

0: अलग-अलग गहराई की मिट्टी निकालकर साफ कपड़े में भर लें। कठोर सतह अथवा कंकर की सतह से उसकी गहराई एवं मोटाई नोट कर लें और उसका अलग से नमूना लें। प्रत्येक नमूने को अलग-अलग साफ थैली में भरें। नाम व पता, ढलान, भूमि जल स्तर, नमूने की गहराई आदि की जानकारी एवं जिन फलों के पेड़ों की सिफारिश चाहिए उनका नाम अवश्य लिखें एवं नमूने को जांच के लिए मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में सीधे अथवा कृषि पर्यवेक्षक के द्वारा भिजवा दें। मृदा नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के पश्चात किसान भाई जांच रिपोर्ट में की गई सिफारिश के अनुसार फसलों में उर्वरकों का प्रयोग करें। तिलहनी एवं दलहनी फसलों में DAP के स्थान पर सिंगल सुपरफॉस्फेट के साथ यूरिया उर्वरक का प्रयोग करें। सिंगल सुपरफॉस्फेट यानी SSP में फास्फोरस तत्व के साथ साथ गंधक तथा कैल्शियम तत्व भी उपलब्ध होते हैं जो इन फसलों के लिए आवश्यक होते हैं। इस कारण से तिलहनी एवं दलहनी फसलों की उत्पादकता DAP के मुकाबले सिंगल सुपरफॉस्फेट के साथ यूरिया देने से बढ़ती है। दाने सुडौल बनते हैं और उपज की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। DAP में 18% नाइट्रोजन तथा 46% फास्फोरस होती है एवं सिंगल सुपरफॉस्फेट में 16% फास्फोरस होती है। अतः किसान भाई सिंगल सुपरफॉस्फेट से फास्फोरस की आपूर्ति हेतु DAP से लगभग 3 गुना मात्रा का प्रयोग करें। फास्फोरस युक्त उर्वरकों का लगभग 30% भाग ही पौधों को उपलब्ध हो पाता है। अतः इन उर्वरकों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु बुवाई से पहले बीज को PSB कल्चर से जरूर उपचारित कर लें। 1 हेक्टेयर के लिए आवश्यक बीज को 3 पैकेट अर्थात 600 ग्राम PSB कल्चर से उपचारित करना चाहिए। ऊसर लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं में मृदा परीक्षण रिपोर्ट में की गई सिफारिश के अनुसार सुधारात्मक एवं प्रबंधात्मक उपायों को करने से उत्पादकता में वृद्धि होगी व मृदा गुणवत्ता में भी सुधार होगा। जल की जांच के लिए लगभग 0.5 लीटर जल बोतल में भर लें और यह नलकूप के लगभग 5 से 10 मिनट चलने के बाद में भरें जिससे उसकी एक जो वास्तविक स्थिति है आ जाएगी और इस प्रकार उस जल को उस पर नाम पता व खेत का नाम लिख करके और भेज दें और सिफारिश के हिसाब से आप प्रयोग करें। धन्यवाद
1: भैया। अभी आप जानकारी ले रहे डॉक्टर खजान सिंह थे। मिट्टी पानी की जांच कब और कहां कराएं, हमें उम्मीद है कि इनकी दी गई जानकारी को लाभ आप जरूर उठाएंगे। अब भैया आनंद लियो ऋषि शर्मा के सर में जालो गीत को।

भैया अभी आप आनंद ले रहे हैं ऋषि शर्मा के समय जा लोक गीत को। भैया खेती बाड़ी में प्रतिदिन अगर हमें नई नई जानकारी मिलती रहे तो हमारे फसल उत्पादन में अधिक से अधिक लाभ भी होता है। आज हम शुरू में चर्चा कर रहे हैं जैविक खेती के बारे में। अब जई के साथ साथ भैया जैविक खेती के साथ अगर हम फसल चक्र भी अपनाएंगे तो हमें और भी अधिक अच्छा उत्पादन मिलेगा। फसल चक्र एक ही खेत में अलग अलग प्रकार की फसल

को क्रमबद्ध यानी बारी बारी तरीके से उगाने की पद्धति को कह में है। फसल चक्र अपनाने से मिट्टी की उर्वरता में सुधार आवे, कीट और रोगों पर नियंत्रण होवे, रासायनिक खादों पर निर्भरता में कमी आ जावे और जो फसल लगातार लेते रहवे के कारण जो मिट्टी में क्षति है जावे, नुकसान है जावे, वो भी हमारी पूर्ति अगर फसल चक्र अपनाए तो है जावे हैं। भैया चलते चलते अपने भैयान को एक गीत को आनंद और दे पाए।

भैया अभी आप आनंद ले रहे भारती शर्मा के सुर में जाल लोक गीत को। अब कार्यक्रम में चलते चलते अपने भैयान को एक जरूरी सूचना। किसान भाइयों, जा मंगलवार को 19/5/26 यानी कल संध्या को 6:15 पर 30 मिनट की अवधि के हेलो किसानवाणी कार्यक्रम में जावार को विषय है खरीफ फसलन की आदान व्यवस्था और खेत की तैयारी। जा विषय पर जानकारी देवे के काजे हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर अमर सिंह। भैया, खरीफ फसलन की अधिक उत्पादन के काजे कौन कौन से कार्य करने चाहिए? गर्मियों में जुताई, उन्नत किस्मों के बीज, खाद की मात्रा, मिट्टी पानी की जांच,

इन सभी विषयों पर जानकारी हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर अमर सिंह। हमारा टेलीफोन नंबर है 2530135 पर फोन करके, मोबाइल नंबर 9412225575, फिर से सुन लीजिए 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में आप सीधे जानकारी प्राप्त कर सके हैं डॉक्टर अमर सिंह से। भैया उस समय को बिल्कुल ध्यान रखियो, संध्या को 6:15 से लेकर 6:45 तक। सूचना समाप्त हुई, अब हमारा ब्रजगामीन कार्यक्रम यही संपन्न हुए। सभी भैया बहनान को राम राम।

अभी आप सुन रहे थे ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन।

0: अभी आपने जगजीत सिंह और साथियों के स्वर में ये भक्ति रचना सुनी। इसी के साथ ही भक्ति परक कार्यक्रम संध्या वंदन अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, ब्रज साहित्य कार्यक्रम। यह कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवावे जा रहे हैं ब्रज वार्ता, अधिक मास की उत्पत्ति और हिंदू धर्म में महत्व। आलेख राधाकांत शर्मा को है और वाचक हैं देवराज कृष्ण दीक्षित।
1: हिंदू पंचांग में हर 3 साल में एक बार एक अलग माह को प्राकट्य होवे है, या कु अधिक मास कहो जाए है। हिंदू धर्म में अधिक मास को बहुत ही महत्व है। अधिक मास को मल मास, अधिमास और पुरुषोत्तम मास हु कहो जाए है। जा महीना में सूर्य की कोई भी संक्रांति नाय हुए, वही माह को अधिक मास कहो जाए है। प्राचीन वशिष्ठ सिद्धांत में ऐसो वर्णन आवे है कि हिंदू पंचांग सूर्य मास और चंद्रमास की गणना के अनुसार चले है। अधिक मास चंद्रमास को ही एक अलग भाग है, जो हर 32 माह 16 दिना और 4 घड़ी के बाद में आवे है। सूर्य मास और चंद्रमास के बीच लगभग 12 दिना को अंतर आवे है, जो हर 3 साल में एक माह के बराबर है जावे है। यही अंतर को पाटवे के ताई हर 3 साल में एक चंद्रमास अस्तित्व में आवे है। चंद्रमास को अस्तित्व हैवे के कारण या कु मल मास कहो जाए है। हिंदू धर्म में मल मास के समय सभी पुण्य कर्म वर्जित माने जाए है। जब पहलो अधिक मास आयो हो तो या मास को कोई अधिदेवता नाय हतो, जबकि और सब माहन के 12 अधिदेवता वरुण, सूर्य, भानु, तपन, चंड, रवि, गभास्ती, अर्यमा, हिरण्यरेता, दिवाकर, मित्र और विष्णु है गए है। अधिक मास को कोई अधिदेवता नाय हैवे के कारण सभी माहन ने या की बहुत ही निंदा करी ही, या पे खिन्न है के ये भगवान विष्णु की शरण में गयो और भगवान को अपनी सबरी पीड़ा सुनाई। तो भगवान विष्णु ने प्रसन्न है के स्वयं ही या को अधिदेवता है वो स्वीकार कर लियो और या मास को नयो नाम पुरुषोत्तम मास धरयो हो, और जे आशीष हु दयो के जो पुण्य और कई महान के जप तप ते प्राप्त होयो करे है, वो पुण्य पुरुषोत्तम मास के एक ही महीना के जप तप ते मनुष्यन को प्राप्त है जायो करेगो। तब ते या अधिक मास को नाम पुरुषोत्तम मास पड़ गयो और 12 महीना की तुलना में या की महिमा विशेष है गई। अधिक मास की एक कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंध में हु आवे है। सतयुग में एक हिरण्यकश्यप नाम को महादानव पृथ्वी पे राज करवो चाहतो हो और भगवान विष्णु को अपनो परम शत्रु माने हो, स्वयं को अमर करवे के ताही वने परम पिता ब्रह्मा की घोर तपस्या करी ही। जब ब्रह्मा जी ने वते वरदान मांगवे की कही तो वने ये वर मांगो हो केवा की मृत्यु न दिन में होए न रात में, न अस्त्रते होए न शस्त्रते, न मनुष्य के हाथनते होए न देवता के हाथनते, न राक्षस के द्वारा न पशु के द्वारा होए, न 12 माह में मरूं न आपकी बनाई भई सृष्टि के काऊ जीव के द्वारा मेरी मृत्यु होए। ब्रह्मा जी ने वाकू ये वर दे दियो। या वरदान को पाएवे के बाद हिरण्यकश्यप के पाप और हु बढ़ गए है। तो भगवान विष्णु ने वाको अंत करवे के ताई नरसिंह रूप धार्यो हो और 12 माहन में ते अलग 13वें अधिक मास को निर्माण करके सांझ के समय देहरी पे अपने नाखूनन ते वाको उद्धार करयो हो और अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा करी ही। तबई ते ये अधिक मास चलयो आय रहो है। या महीना में व्रत उपवास पूजा पाठ और भजन कीर्तन मनन को अपनी जीवनचर्या को हिस्सा बना लेनो चाहिए, क्योंकि या मास में दान पुण्य 10 गुना ज्यादा फलदायी होए हैं। अधिक मास के दौरान किए गए प्रयत्न ते मनुष्य हर 3 साल में स्वयं को बाहर ते स्वच्छ करके परम निर्मल ऊर्जा को प्राप्त करे है, ऐसो मान्यो जाए है।

0: के या महीना में करे गए पुण्य कर्मन्ते जीव के सबई कुंडली दोषन को हु निराकरण है जाए है। अधिक मास में दीप दान को हु बड़ो महत्व है और पुराणन में या कि बहुत ही सुंदर कथा सुनवे में आवे है। प्राचीन काल में सौभाग्य नगर को राजा चित्रभानु परम दयालु और धार्मिक हतो, वाकी रानी चंद्रकला हु परम साध्वी और दयालु हती। राजा कु सब प्रकार ते सुख हतो और प्रजा हु वा राजा के राज में बहुत ही खुशहाल हती। एक बार राजा के दरबार में अगस्त्य मुनि को आगमन भयो। राजा ने अपनी पत्नी के संग मिलके बिनको खूब स्वागत सत्कार करयो। फिर बात ही बातन में राजा ने मुनि ते अपने पूर्व जन्म की कथा पूछी तो मुनि ने राजा को बतायो कि राजा तुम पूर्व जन्म में जीवन भर पाप और हिंसा करयो करे है। तुम्हारे यही जन्म की पत्नी ही पूर्व जन्म में हूँ तुम्हारी पत्नी हती। एक दिना तुम्हारे घर उग्रदेव नाम के ब्राह्मण देवता आए जो रास्ता भूलवे के कारण थके हारे हते। तुम दोनों पति पत्नी ने बिनको खूब विधिवत स्वागत सत्कार करयो हो और उनते अपनी विपत्ति दूर करवे को उपाय पूछो। तो ब्राह्मण देवता ने कृपा करके बिनकु बतायो और बिनकु आगामी पुरुषोत्तम मास में व्रत रखवे और दीपदान करवे को उपदेश दियो और तुम दो पति पत्नी ने बिनके उपदेश को विधिवत पालन करयो हो। पुरुषोत्तम मास में व्रत रखवे और दीपदान करवे के पुण्य प्रभाव ते तुम दोनों को या जन्म में राज्य और वैभव की प्राप्ति है गई। याइले अधिक मास में दीपदान की हु बड़ी महिमा है और ब्रज में तो अधिक मास को लौंध को महीना हु कहो जाए है। ब्रज में लौंध के महीना में खूब दान पुण्य होमे है। यहाँ ऐसो हु मान्यो जाए है कि जो पुण्य अधिक मास में करवे ते 10 गुना फलदायी हुए हैं वही पुण्य वृंदावन में करवे ते अनंत गुना फलदायी हुए हैं। यही लें देश विदेशन ते हु श्रद्धालुगण पुरुषोत्तम मास में वृंदावन आमे हैं और यहाँ खूब दान पुण्य करके अनंत पुण्यन को आनंद प्राप्त करे हैं।
1: अभी आपने ये ब्रजवार्ता सुनी। अधिक मास की उत्पत्ति और हिंदू धर्म में महत्व, आलेख राधाकांत शर्मा को हो और वाचक है देवराज कृष्ण दीक्षित। और अब आपको कार्यक्रम में सुनवा में एक लोकगीत भारती शर्मा के स्वर में।

भारती शर्मा के गाए या लोकगीत के संग ही आज को ब्रज साहित्य कार्यक्रम अब संपन्न हुए हैं। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: Hadi. पिन है? है?
1: RBI कहता है अपना पिन OTP CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: बोल बोल के थक गया, क्या हुआ? नया किडबैग चाहिए
3: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले, आ गया नया किडबैग।
4: RBI कहता है
5: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
7: बेटा
6: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
7: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
8: तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
7: चलो
6: कहाँ?
7: एडमिशन कराने।
8: खाता हुआ एक्टिव।
1: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
9: ओह लवली, वेल डन।
5: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
9: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लकी हाथ नई कार भी ले लो।

0: उसी लोन से?
1: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
0: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
2: आरबीआई कहता है
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्ताव पारित। पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और लखनऊ समेत आगरा मेट्रो के विस्तार को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में यूपी ट्रिपल एससी 2024 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र, कहा प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने में युवाओं की अहम भूमिका। लखीमपुर खीरी में सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने जताया शोक, मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी, मौसम विभाग ने 22 मई तक अधिकांश जिलों में लू चलने का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के निर्धारण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि ये आयोग पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए उनके सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ेपन की जाँच करेगा।
5: माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। आप सब लोग जानते हैं बड़ा प्रदेश है, 59,000 से भी ज्यादा पंचायतें हैं, हमारे सैकड़ों विकास खंड हैं, 75 जनपद हैं। तो पंचायत चुनाव कराने से पहले हमें आरक्षण की व्यवस्था को लागू करना और भी चीजों को देखना है, उसके लिए अब आयोग अध्ययन करेगा और आयोग जैसा रिपोर्ट देगा उसके आधार पर पंचायत के चुनाव की कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे।
4: वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। इनमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। श्री खन्ना ने कहा कि केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से बसंत कुंज तक के पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रूपये के अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी।
6: परिषद के दिनांक 5/3/24 को संपन्न बैठक में लखनऊ मेट्रो परियोजना फेज 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर DPR पर माननीय मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदन पहले प्रदान किया गया। ये खास तौर से इसी सरकार संबंध में लखनऊ मेट्रो फेज 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर चारबाग से बसंत कुंज परियोजना की अनुमोदित लागत 5,801.05 करोड़ रुपए पर सहमति प्रदान की गई। इसमें 50-50% हिस्सा है भारत सरकार, 50% राज्य सरकार।
4: बैठक में मंत्रिमंडल ने पशु चिकित्सा के छात्रों के इंटर्नशिप भत्ते को 4,000 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 12,000 रूपये प्रतिमाह किए जाने और मिर्जापुर में 2,799 करोड़ रूपये की लागत से बिजली ग्रिड उन्नयन के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बीते 9 वर्षों में 9 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाने में राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं ने भी अहम भूमिका निभाई है, परिणामस्वरूप आज प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी पहचान बना रहा है।
7: 9 वर्ष की शानदार यात्रा में चुनौतियां थी, लेकिन उन चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया गया। एक टीम भावना के साथ परिणाम लाया गया कि 9 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी, प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी। उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं है, अब तो उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत के विकास में अग्रिम भूमिका के साथ अपने आप को खड़ा कर रहा है।
4: प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कल शाम मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया गया। नवनियुक्त कैबिनेट मंत्रियों में भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग सौंपा गया।

है, वहीं मनोज कुमार पांडे को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग आवंटित किया गया है। सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के रूप में पदोन्नत किए गए अजीत पाल सिंह को राजनीतिक पेंशन के साथ साथ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग दिया है, जबकि सोमेंद्र तोमर को सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षा दल विभाग सौंपा गया है। चार नवनियुक्त राज्य मंत्रियों में कृष्णा पासवान को

0: उक्त राज्य मंत्रियों में कृष्णा पासवान को पशुपालन और दुग्ध विकास विभाग, सुरेंद्र दिलेर को राजस्व विभाग, हंसराज विश्वकर्मा को लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और कैलाश राजपूत को ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग सौंपा गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज वाराणसी में जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने देश में पेट्रोल, पीएनजी और एलपीजी की उपलब्धता को लेकर लोगों को आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक घरों तक पीएनजी सुविधा पहुंचाना है।
1: भारत एक ऐसा देश है विश्व भर में जिसमें ना कच्चे तेल की, ना पाइप नेचुरल गैस की, ना एलपीजी की कोई कमी हमने होने दी। एक हमने जो बहुत कोशिश की है काशी में, हम ये चाह रहे हैं जो एलपीजी कनेक्शन थे उसको ज्यादा तेजी से पाइप गैस में कन्वर्ट किया जाए। उससे सुविधा लाभार्थियों को भी होगी। एक तो पाइप गैस ज्यादा एफिशिएंट है, उस सस्ती भी है।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण आयात में बाधा के बावजूद देश में रिफाइनरियां सामान्य रूप से काम कर रही हैं। आज नई दिल्ली में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
2: हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर है और हमारे पास सफिशिएंट क्रूड इन्वेंट्रीज हैं। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के सफिशिएंट स्टॉक्स हैं और किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर या रिटेल आउटलेट पर ड्राई आउट नहीं है, लेकिन कई जगह पर अफवाहों के चलते पैनिक बाइंग देखी जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि जो बल्क सेल था वो पंप सेल पर भी शिफ्ट हो रहा है।
0: डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल ने अपने क्षेत्रवासियों से आग्रह किया है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के अनुसार डीजल, पेट्रोल के न्यूनतम प्रयोग के साथ साथ सोने की खरीद से बचें। देश भर में ईद उल अजहा यानी बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी। कल देश में कहीं से भी चांद दिखने की पुष्टि नहीं हुई। इसके बाद लखनऊ स्थित मरकजी चांद कमेटी फरंगी महल के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद और शिया मरकजी चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास ने बताया कि बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी। लखीमपुर खीरी में आज सुबह एक सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक और सवारी वाहन की आमने सामने से टक्कर हो गई। ट्रक चालक हादसे के बाद घटना स्थल से फरार हो गया। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है। साथ ही दोनों ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी है। बीते 24 घंटों में 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा देश में सर्वाधिक गर्म जनपद के रूप में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल से 22 मई तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की आशंका है। मौसम के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड में रहने को कहा है। साथ ही सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा है। श्री योगी ने सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था और बिजली आपूर्ति बाधित न होने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि अत्यधिक गर्मी और लू के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर निकले। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्ताव पारित। पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और लखनऊ समेत आगरा मेट्रो के विस्तार को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में यूपी ट्रिपल एससी 2024 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने में युवाओं की अहम भूमिका। लखीमपुर खीरी में सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री

0: जताया शोक, मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी, मौसम विभाग ने 22 मई तक अधिकांश जिलों में लू चलने का किया ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: सेल्फी लेंगे,
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी,
1: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है, सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
2: को
4: दीप, तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर अपना।
5: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
4: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
5: अब क्या करोगे?
4: फ्री वाईफाई है ना?
2: बुद्धू सुधर जा।
5: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।
4: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: मुझे कॉलेज का टाइम याद है।
8: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
7: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
8: कहाँ से पता चलेगा?
7: उद्गम से। RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर कर लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
9: आज ही सर्च करूंगा।
7: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
6: RBI कहता है
10: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
11: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी। हमें जो संदेश मिले उनके नाम हैं गांव पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। नलेश्वर नगर नरबेल महाराष्ट्र से PS नवानकर, निर्मला और विशाल नवानकर। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश यादव, अनीता यादव, आरती पूजा प्रसाद, सोनल और सिया यादव। गांव गोपी की नगरिया से मट्ठल लाल सारस्वत, नेहा, नीरज, निकिता और उनके माता पिता। अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हंगोड़े, योगिता, प्रियाली, पार्थ और उनके परिवारीजन। गांव नगलापोला से विजय सिंह, भानु प्रताप सिंह, अनुराधा, रामानुज, राधिका, पवन, करण, भोला, नमन और इनके परिवारीजन। आदर्श नगर मलोड पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, सौरभ, साइना शर्मा और निवान शर्मा। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता। गांव नौघरा से कोमल मास्टर, यशोदा, सूरज, रोहित, चंचल, संजना, शिवानी और उनके परिवारीजन। भावी निमगांव महाराष्ट्र से श्रीराम गोंधली, उषा, वैष्णवी, पूनम, युवराज गोंधली। बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, अजयदेव तामोरिया, तुषार देव तामोरिया, डॉली बेबी पूजा तामोरिया, राधिका प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर। गांव कुमोदवन से रमेश चंद्र सेन, सुनील रचना गब्बर और उनके परिवारीजन। हाउसिंग बोर्ड भरतपुर से अजीत सोनिया, शिवांश चुन्ना और उनके माता पिता। हयात कॉलोनी अरैया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा परवीन और जहानुल हुदा। गांव नौगांव से सीताराम, रेखा, रोशनी और इनके माता पिता। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन, आसना और मोहम्मद कैफ अंसारी। डोगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबीये, राधिका, अनिष्का और तन्मय गजबीये। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर चंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता। दरियापुर बाबली महाराष्ट्र

से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और अशोक येले, श्री बडनेर अकोला से अरुणा बलदेव दामोदर और आदित्य दामोदर, स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया, आप हैं नास पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी और बेगम गुलनाज हाशमी, तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहाउद्दीन फजान लल्ला, फरहान लल्ला, साईमीरा अजमीन गुड़िया, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला विशाल और निशा, बटबट वकाल मुल्ढाणा से नारायण हागे, कमल दबिया, जय हागे और उनके परिवारी जन, नरगुड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, गांधी गांव गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जूली और जगदीश जौहरी, आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राय, मेरा जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। ये संदेश भेजने वाले हैं पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णवानंद और सत्यमानंद, घोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। आइए सुनते हैं आप सबके लिए किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत, फिल्म का नाम है प्रेम प्रतिज्ञा, गीत हिंदी पर का है, संगीत निर्देशक हैं बप्पी लहरी।

ये थे किशोर कुमार, फिल्म थी प्रेम प्रतिज्ञा। अब जो हमें संदेश मिले उनके नाम है महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव सिंह, जानवी राजपूत और दर्श राजपूत। तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत श्रीवास, करुणा श्रीवास, आयुष विवेक, आयुषी श्रीवास। काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विट्ठल सुरेशे, सुषमा परिधि, मायरा सुरेशे। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी, ओम कुमार सुरलकर और उनके परिवारीजन। गार्डन रोड पैठण से बाबा साहेब सरगर, ज्योति शुभम और महेश। कुमार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता अनिकेत, ऋषिकेश, जीविका, सानिका और रोहिणी दले। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश निषाद, बल्लू निषाद और तरुण यादव। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राया, चेतन मस्कीन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। बुलढाणा महाराष्ट्र से वासुदेव बोधबड़े, अनीता गाठोड़े, रमेश राव गाठोड़े। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला आसमा, दीपक और अनुश्री श्याम कुमार। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता और प्रतीक हिवराले। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। आप हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा रेगिनी छत्तीसगढ़ से। गांव कैनो जिला तरन तारण पंजाब से गुरुदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता शम्मी, रजनी आकाशदीप, अनहद और गुरशबत। नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से अजीज भाई, मदीन भाई, शेख चंद, फारूक फूलवाले, सैयद खलील, मुमीन भाई, एमडी यासीन और उनके मित्रगण। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। वणिखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा और उनके परिवारीजन। नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा, प्रथमेश, निवृत्ति क्षीरसागर, संजय कुमार चौहान। जमानिया

जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति, कलानौर से नरेंद्र शर्मा, करण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। आप हैं सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर। राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बीबी गर्वी। आइए सुनते हैं आप सबके लिए लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत, शब्दकार असद भोपाली, फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म थी मैंने प्यार किया। अब आप सुनेंगे नितिन मुकेश, साधना सरगम और साथियों को। फिल्म है खून भरी मांग, गीत इंदीवर का, संगीत निर्देशक राजेश रोशन। पसंद भेजने वाले श्रोता, मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। ये संदेश हमें भेजा है वडशिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार ने। आप हैं अडार नंदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी राहुल गोपी वर्मा। चकला बाजार सामना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक खुशदिल, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू खुशदिल और हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति खुशदिल, संजीव बंटी जिंदल और उनके परिवारीजन। वीरगांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावेश और सनी भावसार। श्रीरामपुर से डी अशोक कुंभार, अविका जीविका सानू, अर्चना और उनके परिवारीजन। हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चंपा, कपिल चंपा, ईशान चंपा।

और पूजा परिहार। आवाज विकास काजगंज उत्तर प्रदेश से पवन गौड़, सुयश गौड़, आशीष गौड़, तन्मय और अपूर्वा। बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित, लकी, तानिया और उनके परिवारीजन। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, निशानी और निमित आहूजा। यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षिता, रियांश और उनके परिवारीजन।

ये थे लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथी, फिल्म थी काला पत्थर। गीत साहिर का था, संगीत निर्देशक थे राजेश रोशन। हमें जो संदेश मिले उनके नाम हैं ददरंगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा, सागर लखनादौन जिला सिवनी मध्य प्रदेश से लाडला जी चौबे, लाडली जी चौबे, रिमझिम चौबे, सक्षम माही दुबे, पलक दुबे और उनके परिवारीजन, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभादेवी सेन, लक्की विक्की, नानू रविंद्र रौनक सेन और उनके परिवारीजन, शिवपुरम कॉलोनी खंडवा से कमला देवी महोबिया, अनाया महोबिया, भव्यू महाराज और लूसियान बी, रहड़गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से दिलीप रामेकर,

उषा रामेकर, अक्षय रुद्रा और रामेकर परिवार के सभी सदस्य, बोड़खेरा पीतरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मैंग मूड़त और चेतन नाहटा, छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी, नोमेश, नेहा और वानिया सिंगरौल। और अब इसी के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी यहीं संपन्न होता है। हमें अनुमति दें, नमस्कार।

ये थे किशोर कुमार, फिल्म थी अनुरोध। और अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम और साथियों को, फिल्म है ताल, शब्दकार आनंद बख्शी, संगीत निर्देशक AR रहमान।

ये थे हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति, फिल्म थी बॉम्बे, गीत महबूब का था, संगीत निर्देशक थे A.R. रहमान। इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए श्रोताओं, आपके विशेष अनुरोध पर आपके पत्रों एवं फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम आपके पत्र आपके फोन का प्रसारण पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 12:30 से होगी। कार्यक्रम का प्रसारण रविवार दोपहर 1:30

मिनट पर होगा। श्रोताओं, आपको हमारे केंद्र के कार्यक्रम कैसे लगते हैं? आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में क्या बदलाव चाहते हैं? अपने सुझाव टेलीफोन नंबर 2530135 पर फोन करके या पत्र के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं। मोबाइल से डायल करने वाले श्रोता टेलीफोन नंबर के आगे एसटीडी कोड 0565 अवश्य लगाएं। इस प्रकार संपूर्ण नंबर होगा 0565 2530135। पत्र भेजने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम आपके पत्र आपके फोन द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी मथुरा वृंदावन, निकट गायत्री तपोभूमि मथुरा, पिन कोड 281003। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई और आइए अब सुनते हैं देश गान।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। फिल्म है वेलकम। पहले सुनिए इस फिल्म में आनंद राज आनंद, शंकर महादेवन, श्रेया घोषाल और साथियों को।

ये थे आनंद राज आनंद, शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल। और आइए अब सुनते हैं इसी फिल्म में आनंद राज आनंद के साथ श्वेता पंडित को।

0: ये थे हिमेश रेशमिया, शान, आरती कक्कड़ और साथी। इसी के साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की फिल्म थी वेलकम। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे। कृपया समाचार संध्या की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु

0: ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनास गोरस्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए, विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
1: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
0: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्वभर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन के उनके यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर

0: जो मैटरेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 और 20 तारीख को इटली में होंगे। यह दौरा 5 देशों की यात्रा का अंतिम चरण है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुँच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बड़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमरीकी उद्योग प्रतिनिधि मंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे में अमरीकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमरीका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉ. सिंह ने कहा कि भारत और अमरीका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
3: कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा

0: चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
1: इस बीच सरकार ने YouTube के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नाशिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। इनमें छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo. Agreed to elevate bilateral ties in green strategic partnership focusing on clean energy and blue economy. Prime Minister Modi awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by King Harald V. Government targets $1 trillion exports this year. Union Minister Jitendra Singh holds talks with US industry delegation on nuclear energy and private

जावेद अली, सुनिधि चौहान और साथियों को भी आपने सुना। फिल्म थी मिशन इस्तांबुल, गीत समीर का था, संगीत निर्देशक थे अनु मलिक। और आइए सुनते हैं जावेद अख्तर की रचना, संगीतकार प्रीतम, गायक स्वर आनंद राज आनंद, ऋचा शर्मा और साथियों के हैं।

ये थे उदित नारायण और पूर्णिमा, फिल्म थी हीरो नंबर वन। गीत समीर का था, संगीत निर्देशक थे आनंद मिलिंद। इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, रात्रि के 9:30 होने को है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इन दिनों अगर आपके घर में जनगणना कर्मी आकर आपके मकान के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनका सहयोग करें और पूरी जानकारी उन तक पहुंचाएं, क्योंकि देशव्यापी जनगणना 2027 के पहले चरण का काम तेजी से चल रहा है, जिसमें मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की जा रही है। इस बार जनगणना कार्यों में पहली बार शुरू की गई है स्वगणना सुविधा, जिसे जनता से काफी उत्साहजनक रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। काफी राज्यों में स्वगणना का जो विकल्प है वो समाप्त हो चुका है और कुछ राज्य अभी बचे हैं। ये पहल जनगणना कार्यों के डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और इसे कैसे भरना होगा, किस तरह के सवाल इसमें पूछे जा रहे हैं, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो तुरंत हमें कॉल कीजिए, क्योंकि आज के कार्यक्रम में हम मकान सूचीकरण और आवास गणना पर परिचर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।

0: हूँ आपके साथ फरहत नाज और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमने आमंत्रित किया है गृह मंत्रालय की महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप महापंजीयक रुशाली वराड़े जी को। नमस्कार रुशाली जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: नमस्कार और धन्यवाद।
0: श्रोताओं, हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं, आप हमारे विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0111-23-1-0-4-8, 0111-23-7-1-7-1, 0111-23-7-1-7-1-06 और 0111-23-3-1-4-4-4-4 पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-09-4044 पर भी भेज सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9289-09-4044 पर आप सवाल भेजते रहिए। सोशल मीडिया एक्स पर #AskAIR का इस्तेमाल करके भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और रुशाली जी, सबसे पहला प्रश्न हमारा आपसे ही है कि पहले चरण का काम तेजी से शुरू हो गया है, मकान सूचीकरण और मकानों की गणना किस तरह की जा रही है इसमें और किस तरह के सवाल इसमें जनता के लिए चुने गए हैं?
1: जी, जैसे अभी आपने कहा कि इस बार पहली बार हम स्वगणना की उपलब्ध फैसिलिटी उपलब्ध है पब्लिक के लिए, तो काफ़ी राज्यों में स्वगणना का पीरियड ख़त्म हो चुका है जो कि हमने 15 दिन के लिए रखा था और 1 महीने का समय है जो कि प्रगणक घर घर जाके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। तो कुछ 7 या 8 स्टेट में हमारी स्वगणना कंप्लीट हो चुकी है और HLO का काम भी कंप्लीट हो चुका है। कुछ राज्यों में स्वगणना अभी चल रही है। तो क्वेश्चन के बारे में अगर हम कहें तो जैसे नाम है इस फेज का मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना, तो इसमें हम सिर्फ मकानों की गणना करेंगे और मकान के हालत कैसी है, घर कैसा है और घर में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे पीने का पानी कहाँ से आता है, पीने का पानी कैसे है, टॉयलेट की सुविधा है या नहीं, बाथरूम की सुविधा है या नहीं, घर में कितने लोग रहते हैं, कितने कपल्स रहते हैं, रूम्स कितने हैं घर पे और घर में एसेट्स क्या है, जैसे कि रेडियो है या नहीं, टेलीविजन है या नहीं, 2-व्हीलर 4-व्हीलर है या नहीं, तो इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे।
0: जी रुशाली जी, और सबसे पहले हमारे लिसनर हमसे जुड़ गए हैं दिल्ली से, धर्मवीर जी। जी धर्मवीर जी।
2: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार।
2: एक्सपर्ट को भी नमस्कार। मैं धर्मवीर गाने का दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरे सवाल में मैं ये पूछना चाहूंगा कि घर घर जाके आप इसके लिए इंक्वायरी करेंगे, जानकारी लेंगे और कुछ घरों में जाने का मतलब ये है कि घरों में महिलाओं का होना, क्या जो आपके जाएंगे वर्कर तो उसमें एक महिला भी होगी साथ, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, जो अगर कोई दिव्यांग है, दिव्यांग का मतलब ये है कि वो अगर उसके पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो कैसे अपने, जो पहले आपने कहा था कि इसमें खुद भी ये दर्ज कर सकता है, और इसके लिए हमें क्या क्या, मैं कित अगर कोई फ्रॉड आ जाता है इंक्वायरी करने के लिए तो ऐसे में हम क्या पहचान करें कि ये आदमी फ्रॉड है कि ये सरकार के भेजा गया आपका वर्कर है? धन्यवाद।
0: धर्मवीर जी ने 3 सवाल पूछे हैं रुशाली जी। सबसे पहला सवाल उनका ये है कि अगर महिलाएं घर में मौजूद हैं तो क्या कोई महिला कर्मी भी जनगणना कर्मी के साथ मौजूद रहेंगी?
1: तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, महिला अलग से तो नहीं होगी क्योंकि हमारे जो प्रगणक होंगे वो जनरली होते हैं जो स्कूल के टीचर्स होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। हम लोग इंस्ट्रक्शन जरूर देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसमें अपॉइंट करें क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन एक फेथफुली अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट ये कंपलसरी नहीं है और हर घर में एक ही आदमी जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हमें पूरे इंडिया के लिए 31 लाख प्रगणकों की ज़रूरत है। तो इतने सारे लोगों के साथ मतलब और एक महिला जाना इट्स मतलब संभव नहीं है। लेकिन जो तीसरा सवाल है मैं इसी के साथ जोड़ देती हूँ, जो फ्रॉड वाली बात इन्होंने पूछी है धर्मवीर जी ने, तो फ्रॉड की कोई ये नहीं है क्योंकि प्रगणक के पास अपना आई कार्ड होगा, उसके पास चार्ज ऑफिसर का सिग्नेचर होगा, उस पर स्टैम्प होगा, प्लस QR कोड होगा आई कार्ड पे और अपॉइंटमेंट लेटर पे भी, QR कोड स्कैन कर सकते हैं। तो QR कोड स्कैन होने के बाद हमारी वेबसाइट उस पर आ जाएगी और वेबसाइट पे उसकी डिटेल्स आपको दिख जाएंगे। तो फ्रॉड की बिल्कुल दिक्कत नहीं है, हालांकि हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप अपने चार्ज ऑफिसर को या लोकल ऑफिसर से बात कर सकते हैं।
0: और दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है कि दिव्यांग व्यक्ति फॉर्म कैसे भर सकते हैं।
1: जी, तो दिव्यांग व्यक्ति के लिए जैसे पहले ही बताया मैंने, स्वगणना एक अतिरिक्त फैसिलिटी

0: हम दे रहे हैं ये कंपलसरी नहीं है, प्रगणक हर घर जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। अगर आपने स्वगणना की है तो भी प्रगणक घर घर जाके फिर से वो वेरीफाई करेगा। तो अगर दिव्यांग कोई है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, प्रगणक वहाँ पे जरूर जाएगा और इन्फॉर्मेशन लेके आएगा।
1: और अब हमारे दूसरे लिसनर हरियाणा से हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेंद्र जी। जी राजेंद्र जी
2: नमस्कार जी, जागृति जी को और विशेषज्ञ जी को नमस्कार।
1: नमस्कार, मैं फरहत नाज बात कर रही हूँ राजेंद्र जी,
2: सॉरी जी,
1: लेकिन मैं आपका नमस्कार जागृति जी को भी पहुंचा दूंगी।
2: जी जी, और मैं ये जानना चाहता है अगर कोई गलत जानकारी देता है या तो कोई उस पे कोई कार्रवाई होगी या जैसे कोई नोटिस दिया जाएगा जनगणना के बारे में, मकान के बारे में, उस पे क्या कार्रवाई हो सकती है? और जो 33 सवाल पूछे जाते हैं उसमें कुछ ही मेरे से कुछ दो तीन ही सवाल पूछे गए थे और मुझसे ये पूछा गया था कि आप टीवी देखते हो, तो मैंने उनसे मेरे को ये पूछ लिया था कि आप रेडियो सुनते हो, तो मैंने कहा रेडियो, मैं पहला ऐसा शख्स कह रहे मिला है इसके बारे में भी।
1: तो इनका सवाल था कि रेडियो सुनते हैं कि नहीं, इस तरह के जो सवाल हैं वो पूछे गए थे।
0: जी, एक तो पहला मुझे लगता है इनका सवाल था गलत जानकारी के बारे में, तो पहले मैं बता दूं कि गलत जानकारी अगर कोई देता तो सेंसस एक्ट में ये प्रोविजन है कि उसे कोई पनिशमेंट मिलती है। बट उससे ऊपर जो इम्पोर्टेंट बात है कि सेंसस की इन्फॉर्मेशन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, सेंसस एक्ट में ये मेंशन है कि उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन गोपनीय रखी जाएगी। तो जनरली लोग सही जानकारी देते हैं और सेंसस एक्ट में ये भी प्रोविजन है कि लोग अपने बिलीफ से, अपने नॉलेज से सही जानकारी दे। जो डेटा रिलीज होता है वो एक एग्रीगेट लेवल पे रिलीज होता है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक होने की कोई भी संभावना नहीं है। तीसरा जो है, जो हमारे 33 सवाल है वो नोटिफाई हो चुके हैं, गवर्नमेंट के गैजेट में नोटिफाई हो चुके हैं, तो उसमें जो भी सवाल है वो सारे उतने ही एनुमरेटर को पूछने हैं और उनका ही जवाब रिस्पोंडेंट को देना है। ये बिल्कुल सही कहा कि टीवी का सवाल उसमें है, रेडियो का सवाल उसमें है, रेडियो आप किस पे सुनते हैं ये भी उसमें पूछा गया है कि आप मोबाइल पे सुनते हैं या आपके पास रेडियो सेट है या फिर आप कार में सुनते हो। उसी तरह टीवी का भी अलग अलग आप कैसे देखते हो, मतलब दूरदर्शन है आपके पास, फ्री डिश या डीटीएच है या फायर स्टिक है, केबल कनेक्शन है, तो अलग अलग सवाल उसमें है।
1: और अगर किसी भी तरह की हमारे श्रोता दिक्कत उठा रहे हैं तो आप मकान सूचीकरण और मकान गणना अनुसूची के लिए वेबसाइट जो पोर्टल दिया हुआ है sec.census.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं और आप सारे सवाल जो है वो इसमें आपको शो हो जाएंगे किस तरीके के सवाल जो है जनगणना कर्मी पूछ हैं, ताकि आपको आसानी होगी उस समय आपका सवालों का जवाब देने में। और रोशाली जी, एक और प्रश्न हमारे पास आया है कि क्या जनगणना में सभी के लिए शामिल होना आवश्यक है?
0: बिल्कुल, जैसे जनगणना का पहला ही जो मोटो है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं या किसी को दोबारा गिनती करेंगे नहीं, तो हर एक को इंक्लूड होना है जनगणना में। और जो बार बार मैं जिक्र कर रही हूँ जनगणना अधिनियम की, सेंसस एक्ट 1948, उसके हिसाब से हर एक व्यक्ति को या हर एक परिवार के मुखिया को ये कंपलसरी है कि सही सही जानकारी प्रगणक को दे। और ये प्रगणक की भी जिम्मेदारी है कि जितने सवाल गैजेट में पब्लिश हुए हैं उतने ही सवाल पूछे, उसके बिना और कोई भी सवाल ना पूछे, और जो भी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहा है वो उसको गोपनीय रखे।
1: जी, अच्छा, अगर कोई व्यक्ति मतलब जॉब की वजह से यहाँ पर रह रहा है, दिल्ली शहर में रह रहा है, लेकिन वो बिलोंग करता है किसी दूसरे राज्य से, तो वो क्या दोनों जगह का जो है उसके लिए भरना जरूरी होगा सेल्फ एनुमरेशन?
0: बिल्कुल नहीं, जैसे मैंने कहा सबको जैसे हम इंक्लूड करते हैं तो डुप्लीकेट भी नहीं करते हैं। तो जहाँ पे जनगणना की ये कंसेप्ट है, जो जहाँ पे नॉर्मली रिसाइड करता है, यानी जहाँ पे मैक्सिमम टाइम रहता है, अगर काम के सिलसिले में वो दिल्ली में रहता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दिल्ली में कलेक्ट होगी। उसके अदर फैमिली मेंबर्स अगर गांव में रहते हैं तो अदर फैमिली मेंबर्स की गिनती गांव में होगी, लेकिन जो जहां पे रहता है वहीं पे उसका काउंटिंग होता है।
1: जी, और अब दिल्ली से भ्रमदत्त जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी भ्रमदत्त जी,
3: नमस्कार मैडम जी।
1: नमस्कार,
3: हमारे विषय विशेषज्ञ जी को प्रणाम।
0: नमस्ते, प्रणाम।
3: मैम, मेरे दो जिज्ञासाएं हैं। पहली है कि जो हमारे दस्तावेज हैं दूसरे शहर के बने हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के, और हम दिल्ली में निवास कर रहे हैं, तो क्या हम दिल्ली की जनगणना में सम्मिलित हो सकते हैं? प्रथम प्रश्न। दूसरी है मैडम, ये है कि अगर हम घर पर नहीं मिलते हैं तो क्या जनगणना स्टाफ को हम अपने समय के हिसाब से बुला सकते हैं?

0: छुट्टी वाले दिन आ जाना आप, तो क्या ऐसा संभव है? एक अन्य प्रश्न है, जो लोग जनगणना में शामिल नहीं होना चाहते, क्या उन लोगों के लिए कोई दंडात्मक कार्यवाही का भी प्रावधान है? धन्यवाद मैडम जी।
1: धन्यवाद ब्रह्मदत्त जी। तो तीनों सवाल आपके बड़े ही अच्छे थे। पहला तो ये है कि जनगणना में कोई भी दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे वो प्रगणक को नोट डाउन करनी है। इसीलिए हालांकि हम लोग सबसे अपील करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन सही है वही इन्फॉर्मेशन दे दे, और आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गोपनीय रहेगी, किसी के साथ वो साझा नहीं की जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताती हूँ कि आरटीआई में भी हम इन्फॉर्मेशन देते नहीं हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। कोई कोर्ट में अगर सबूत के तौर पर देने के लिए मांगता है तो उसको भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती एज़ पर सेंसस एक्ट। दूसरा जो सवाल था आपका, अगर आप घर पर नहीं मिलेंगे तो इसके लिए भी हमारे प्रगणक को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि अगर घर लॉक मिलता है तो 2 या 3 बार वहाँ पे जाए, छुट्टी के दिन जाए या सुबह जल्दी जाए या शाम को देर से जाए, ताकि घर पे कोई ना कोई मिलेगा। तीसरा जो आपका सवाल था दंडात्मक कार्रवाई का, तो सेंसस एक्ट में ये प्रोविजन है सेक्शन 11 में कि अगर कोई गलत जानकारी देता है तो उसको पनिशमेंट दी जा सकती है।
2: तो यानी कि पूरा सहयोग आपको जनगणना कर्मी के साथ करना है और सही सही और सटीक जानकारी उन तक उपलब्ध करवानी है। और अब त्रिपुरा से अविनाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अविनाश जी।
3: जी नमस्कार।
2: नमस्कार
3: जी, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश जी बोल रहा हूँ। और मेरा सवाल है कि जब जनगणना टाइम पे सरकारी कर्मचारी हमारे घर पे आते हैं तो हम अपना जानकारी उनको प्रदान करेंगे, तो लेकिन हम उनको पहचानेंगे कैसे कि वो सही व्यक्ति आए हैं मेरे घर पे? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई ठगी व्यक्ति भी आ सकते हैं हमारे डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो हम उनको पहचानेंगे कैसे?
1: जी धन्यवाद अविनाश जी। और उसको पहचानेंगे कैसे, तो उनके पास आई कार्ड होगा और अपॉइंटमेंट लेटर होगा, जो कि लोकल चार्ज ऑफिसर, हमारे जो चार्ज ऑफिसर होते हैं वो तहसीलदार या मामलतदार होता है आपके एरिया का, या कोई बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो ये इनका स्टैम्प और सिग्नेचर के साथ प्रगणक के पास एक आई कार्ड होगा, अपॉइंटमेंट लेटर होगा, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके ऊपर QR कोड होगा, QR कोड स्कैन करके आप देख सकते हैं, उसमें आपको हमारी वेबसाइट से सारे डिटेल मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कोई फ्रॉड हो रहा है तो आप अपने चार्ज ऑफिसर से या एरिया के कोई भी ऑफिसर से उसके कंप्लेंट कर सकते हैं।
2: रुशाली जी, एक और प्रश्न मेरे पास आया है कि खाली मकान, बंद मकान या फिर निर्माणाधीन मकान की गिनती किस श्रेणी में होगी और इन्हें कैसे चिन्हित किया जाता है?
1: जी तो हमारे जो मैंने कहा हर एक क्वेश्चन के अलग अलग कोड है, तो जो हमारा जनगणना मकान के कोड है उसमें कुछ कोड है वैकेंट के लिए, कुछ कोड है अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए, कोड तो नहीं है बट अगर अंडर कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग है उसका छत डाला हुआ है तो उसको हम मानते हैं, क्योंकि मेन जो हमारा है सेकंड फेज जो फरवरी 2027 में होगा, तो हो सकता है अभी जो घर आपका अंडर कंस्ट्रक्शन हो फरवरी 27 तक वहाँ पे कोई रहने के लिए आ जाए, तो ऐसे इसीलिए उसको हम गिनती अभी कर लेते हैं, उसको नंबर देते हैं और उसको इन्फॉर्मेशन एज अ वैकेंट कर देते हैं और एक रिमार्क डाल देते हैं कि इट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, और जो खाली है उसको एक वैकेंट हम मानते ही है। कुछ ऐसे घर भी मिलते हैं कि घर लिया हुआ है लेकिन लॉक है, रहते कहीं और है, तो उसको भी लॉक के कैटेगरी में हम इंक्लूड करते हैं ताकि सेकंड फेज में वो छूटे नहीं।
2: जी अच्छा, इसमें जनगणना मकान नंबर कौन देता है और दीवार पर लिखने का क्या नियम है?
1: ये प्रगणक देता है और नियम है कि एक प्रगणक को एक जो एरिया देते हैं एनुमरेशन ब्लॉक हम जिसको कहते, छोटा सा एरिया होता है 700 से 800 पॉपुलेशन या 150 घरों का, तो वो पूरे अपने एरिया में सीरियली जनगणना मकान नंबर देता है, 1 से लेकर जो भी लास्ट उसके एरिया में होगा तो वो खुद लिखता है। उसके लिए हमने कुछ स्टेशनरी उसको प्रोवाइड की है, मार्कर पेन्स वगैरह दिए।
2: ठीक है, और अब शिमला से हमारे साथ राकेश जी जुड़ गए हैं। जी राकेश जी।
4: जी नमस्कार।
2: नमस्कार
4: जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो घर में रहते तो उनकी तो होती है, जो किराए के मकान पे रहते हैं क्या वो भी जनगणना में आता है? उनको क्या जनगणना करानी पड़ती है जो किराए पे रहते हैं?
1: जी बिल्कुल, जैसे फिर से मैं कह रही हूँ कि जनगणना में किसी को छोड़ा नहीं जाता, किसी को दोबारा गिना नहीं जाता, तो अगर आप किराए के भी घर में रह रहे हैं तो जनगणना का पहला जो रूल है कि जो जहाँ पे रहता है वहाँ पे उसकी गिनती होती है, तो आपका घर खुद का हो, किराए का हो या और किसी का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जहाँ पे रह रहे वहीं पे आपकी गिनती होगी। आपका घर किराए का है या खुद का है ये जानने के लिए हमारा क्वेश्चन है कि घर आपका खुद

0: का है या किराए का है? किराए का है तो उसके लिए भी आपका कोड है कि आपका घर किराए का है, लेकिन आपका खुद का घर कहीं और है तो उससे हमारे पास ये एक नंबर्स आ जाएंगे कि कितने मतलब पूरे कंट्री में या पूरे देश में कितने लोगों के पास खुद के घर है या कितने लोग किराए पर रह रहे हैं।
1: और अब रवि जी जुड़ गए हैं हमारे साथ हरिद्वार से। जी रवि जी।
2: हाँ जी नमस्कार मैम जी, मेरा ज्वालिया गढ़मीरपुर हरिद्वार से हूँ जी।
1: जी नमस्कार।
2: हाँ जी माँ जी, विशेषज्ञ को भी मेरा नमस्कार जी।
0: नमस्ते
2: जी मैम, मैं जानना चाहता हूँ जी, जो जनगणना है हमें सहयोग करेंगे, अपनी जानकारी देंगे, वो कितनी गोपनीय रखी जाएगी मैम?
0: जी बिल्कुल, ये पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। और कितनी रखी जाएगी इसके लिए मैं एक ही जवाब दे सकती हूँ कि आप भी मांगेंगे बाद में तो आपको भी नहीं दी जाएगी, इतनी गोपनीय रखी जाएगी। क्योंकि पूरी जानकारी एज पर सेंसस एक्ट या सेंसस अधिनियम जो है उसके हिसाब से किसी को दी नहीं जाती, आरटीए में भी दी नहीं जाती, कोर्ट में भी दी नहीं जाती और इंडिविजुअल भी को भी दी नहीं जाती। एक बार फिल होने के बाद वो कॉन्फिडेंशियल रह जाती है और हम सिर्फ एग्रीगेट लेवल पर डेटा रिलीज करते हैं।
1: और अब एक और लिस्नर हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से, महेंद्र जी। जी महेंद्र जी।
3: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
3: मैम, मेरा सवाल ये है कि अगर पुत्र या पुत्र वधू अगर माता पिता के साथ जीवन यापन करते और उनका भोजन एक ही रसोई में तैयार होता है तो वो अलग परिवार माना जाएगा या उसी में जॉइंटर किया जाएगा?
0: जी देखिए, जनगणना के लिए एक ही कंसेप्ट है, अगर एक परिवार मानने के लिए कि वो एक ही चूल्हे पे खाना पकाते हैं या नहीं, या एक ही किचन में खाना पकाते हैं या नहीं, तो इसमें कोई भी हो अगर वो एक ही किचन से खाना खा रहे हो, खाना पका रहे हो, तो उसको एक ही परिवार माना जाएगा, चाहे वो अनरिलेटेड हो, उनका कोई आपस में रिलेशन भी ना हो। जैसे आजकल हम देखते हैं तीन चार दोस्त मिलके एक छोटा सा फ्लैट लेके रहते हैं और अपना अपना खाना बनाते हैं या मेड को रख के खाना बनाते हैं, तो ऐसे में भी उनको हम एक ही परिवार मानते हैं।
1: अच्छा, इसी से जुड़ा एक और प्रश्न मेरे पास आया था कि अगर मेरी बेटी की शादी हो गई और वो किराए पर रहती है तो क्या वो अपने घर में उसको सदस्य के रूप में शामिल कर सकते हैं?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं, वो जहाँ पे रहती है वहाँ पे उसका उसको गिना जाएगा।
1: अच्छा, और अब गुरुग्राम से सुभाष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुभाष जी।
4: जी नमस्ते मैम।
1: जी नमस्कार।
4: और आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय आपको नमस्कार।
0: जी नमस्ते।
4: मेरा सवाल ये है मैम कि जो स्वगणना का जो भूमिका है, जैसे व्यक्ति अगर स्वगणना आपने जिक्र किया था अभी, तो उस स्वगणना में उसकी कैसी भूमिका को सत्यापन के रूप में जाना जाएगा, उसको मतलब कौन सा ऐसा प्रमुख बिंदु रहेगा जो उसके व्यक्ति के प्रमुख कार्यों को बताकर वह किस तरह से स्वीकारा जाए, उसका सत्यापन करने के क्या तरीके हैं, यही मैं पूछना चाहता था। धन्यवाद जी।
0: जी तो जैसे मैंने कहा, स्वगणना इस बार पहली बार हम लोग ये फैसिलिटी दे रहे हैं, 2011 तक ये फैसिलिटी नहीं थी। ये इस बार इसलिए इंट्रोड्यूस की कि काफ़ी लिटरेसी भी बढ़ी है, प्लस आजकल बड़े बड़े शहरों में ये देखा जाता है कि घर के सारे सदस्य कहीं ना कहीं काम पे जाते हैं, सुबह से लेकर रात तक वो बाहर आते हैं रहते हैं, तो प्रगणक को देने के लिए उतना टाइम उनके पास नहीं होता। लेकिन उसकी वो जो इन्फॉर्मेशन भरेगा वो सत्यापित करनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ हमारे कंसेप्ट्स है जैसे पानी कहाँ से मिलता है या घर में टॉयलेट की फैसिलिटी क्या है, इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है कभी कभी रिस्पोंडेंट को खुद पता ना चले, क्योंकि प्रगणक को काफ़ी अच्छे से हम ट्रेन करते हैं, तीन चार दिन का उसका ट्रेनिंग होता है, उसको वीडियोज़ दिए जाते हैं, ट्रेनिंग मटेरियल दिया जाता है, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर कभी रिस्पोंडेंट या जो खुद भर रहा है स्वगणना की इन्फॉर्मेशन कुछ गलत अगर करे तो वो प्रगणक एक बार देख के उसको बता के उसको सही करके सत्यापित कर सकता है।
1: अच्छा, एक और प्रश्न हमारे पास आया है रुशाली जी की, स्लम और जे कलस्टर बेघर आबादी की गिनती मकान जनगणना में कैसे सुनिश्चित की जाती है?
0: जी स्लम के एरिया के लिए तो हम जैसे मैंने कहा एक प्रगणक के लिए छोटा सा एक एरिया होता है, तो स्लम के हम अलग से एरिया बनाते हैं, उसको अलग से कोडिंग करते हैं ताकि हमारे पास स्लम का डेटा भी आ जाए, क्योंकि उनके घर होते हैं कच्चे हो चाहे पक्के हो, घर होते हैं उसकी गणना की जाती है, घर नंबर भी दिया जाता है
1: जी।
0: जो बेघर होते हैं बेघरों की गणना पहले फेज में नहीं होती, उनको सेकंड फेज में गिना जाता है, जो कि सेकंड फेज हमारा कंप्लीट होने के बाद लास्ट डेट में जो 28 फरवरी का दिन होता है उसको रात को हम उनकी गणना करते हैं, क्योंकि जनरली ये लोग

0: रात को ही मिलते हैं अपने किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे या किसी ब्रिज के नीचे या इस तरह के जगह पे, तो बेघरों को सिर्फ सेकंड फेज में गिना जाता है।
1: जी तो श्रोताओं, अब आपके सवाल जो हैं वो कुछ कम हो रहे हैं, तो हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं कॉल का। आप परिचर्चा सुन रहे हैं और मकान सूचीकरण आवास गणना पर विषय आज हमने रखा है, क्योंकि जनगणना 2027 जारी है और बहुत तेज़ी से ये काम चल रहा है। जनगणना कर्मी जो है दिन भर लगे हुए हैं, आपके सवाल का जवाब जो है आप दे रहे हैं, और इसी पर आप कॉल कर सकते हैं 01123301481 और प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से। किसी भी तरह का डाउट अगर आपके मन में है और आप इससे रिलेटेड कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं 01123717117 पर। हम कर रहे हैं आपके कॉल का इंतजार। त्रुषाली जी, एक और प्रश्न मेरे पास है कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधता वाले राज्यों में प्रश्नावली को समझाने की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है?
0: सबसे बड़ी चुनौती तो है उनकी उनको अपनी भाषा में समझाना, उनको अपनी भाषा में सारा मटेरियल उपलब्ध कराना, और प्रश्न भी उनके भाषा में होने चाहिए। तो ये बहुत अच्छा एक ट्रेडिशन है जनगणना का, कि जनगणना के सारे मटेरियल 16 भाषाओं में उपलब्ध है। जो सारे हमारे मोबाइल ऐप है या पोर्टल है या स्वगणना का वेब पोर्टल है, ये भी 16 भाषा में उपलब्ध है। जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स है ये तो 19 भाषा में उपलब्ध है, क्योंकि हर एक स्टेट की या हर एक रीजन की अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है, तो उन सारे लैंग्वेज में ये सारा अवेलेबल है।
1: जी अच्छा, 2011 में जो है अगर बात की जाए तो डेटा की एंट्रिंग, स्कैनिंग और वेरिफिकेशन में लगभग बताया जा रहा है कि 2 साल लग गए थे, लेकिन 2026 में रियल टाइम डेटा अपलोड से रिजल्ट कितने जल्दी आने की उम्मीद है?
0: बहुत अच्छा सवाल है। जैसे 2011 में पहला हमारा पब्लिकेशन आने में 2 साल लगे, लेकिन आप देख सकते बहुत सारे क्वेश्चन पे हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो सेकंड फेज में आती है, तो एक एक सीरीज या एक एक पैरामीटर पे डेटा रिलीज करने में 6 से 8 साल लगे थे। जो हमारा लास्ट टेबल रिलीज हुआ था माइग्रेशन पे, वो हमारा 2019 में रिलीज हुआ था। क्योंकि हमारे जो पेपर पे होता था, तो देश के हर कोने से पेपर कलेक्ट करना, मतलब इन्फॉर्मेशन भरने के बाद वो कलेक्ट करना, वो स्कैन करना, इसी में हमारे पूरे 2 साल निकल जाते थे। अब हालांकि हमारा डिजिटल हो रहा है, रियल टाइम डेटा आ रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट पहला जो हमारा पब्लिकेशन है वो 8 से 9 महीने में रिलीज हो जाए, और बाकी सारी डेटा 2 से 3 साल के अंदर अंदर डेटा पब्लिश हो जाए।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि जनगणना केवल जनसंख्या की गिनती नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी है, तो मुझे लगता है कि इसमें अगर सब लोग मिलकर भागीदार बनेंगे तो देश प्रगति की राह पर बढ़ेगा। और अब दिल्ली से विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विकास जी।
2: हाँ जी, हमारे 2 मकान, एक तो गाँव में है राजस्थान में और एक दिल्ली में है, तो हमारी जनगणना कहाँ होगी?
0: जहाँ पे आप रहते हैं हमेशा के लिए या ज़्यादा वक्त जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आपकी जनगणना होगी। और यहाँ पे बिल्कुल डरने की बात नहीं है कि अगर आपकी जनगणना यहाँ पे होगी तो गांव के मकान का क्या होगा। जनगणना का उससे कोई भी संबंध नहीं है, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आपकी गणना होगी।
1: हाँ अनुशाली, ये प्रश्न वैसे देखा जाए तो बहुत लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो है रोजगार के लिए बाहर आते हैं और गांव का जो घर है उनका या तो खाली पड़ा होता है, लेकिन वो होता है, वो कहीं ना कहीं जाकर जो है उनसे जुड़ा हुआ होता है, तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पर हम लोग वो भर देते हैं, जैसे दिल्ली में अगर रह रहे हैं तो दिल्ली का अगर भर जाता है तो क्या गाँव का भरना जरूरी होगा, और अगर छूट जाता है तो क्या होगा?
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो जनरली जनगणना की यही कंसेप्ट है कि जो आदमी जहाँ पे रहता है, क्योंकि देखिए अगर वो शहर में रहता है तो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक मतलब शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मजबूत बनाना है, इसलिए जनगणना का जो कंसेप्ट है, जो जहाँ पे रहता है वहाँ पे उसकी गिनती होगी। हालांकि मैंने फिर एक बार कहती हूँ कि इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आपका गांव में भी घर है, गांव में 2 घर है, यहाँ पे 1 घर है, तो इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप जहाँ पे रहते वहाँ पे आपकी गिनती होगी।
1: जी और अब एक और प्रश्न हमारे साथ जुड़ गए हैं, MP से राजेश नीमा जी ने प्रश्न ले रहे हैं उनका। जी राजेश जी।
3: जी मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल ये है कि यदि एक घर में एक मकान, आधा मकान कच्चा है और एक कमरा पक्का है, तो वो जनगणना की कौन सी श्रेणी में आएगा?
0: जी तो जनगणना में अगर सारे सवालों के बारे में एक जिस्ट में बताऊँ तो प्रीडोमिनेंटली यानी

0: मुख्यतः जो यूज़ होता है उसका इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर सोर्स की अगर मैं बात करूँ कि आपके पास कुआं भी है और नल से भी पानी आ रहा है, लेकिन आप नल का पानी ज़्यादा यूज़ करते हैं तो नल आपको लिखना है। उसी तरह आपका अगर आधा मकान कच्चा है आधा पक्का है, या ज़्यादा मकान पक्का है और थोड़ा सा मकान कच्चा है तो पक्का लिखना है। तो ये डिपेंड है आपका कितना पोर्शन पक्का है कितना पोर्शन कच्चा है।
1: और अभी कौन लिस्नर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मथुरा से पप्पू सिंह जी। जी पप्पू जी
2: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार
2: सर। जैसे मकान के अलावा जैसे हमारा प्लॉट है और उसमें हमारे पशु बनते हैं और ईंधन खंडा रखे रहता है और वहाँ पे कुछ भी बना नहीं है, वैसे ही है, उसमें पेड़ वगैरह खड़े हैं, तो उसकी गणना भी होगी क्या?
0: जी नहीं, जैसे हमारे इस फेज का नाम है मकान सूचीकरण, तो वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए, खाली प्लॉट को गिनते नहीं हैं। लेकिन वहाँ पे अगर कोई कच्चा सा शेड भी है जिसमें पशु रखे हुए हैं तो उसको एक नंबर दिया जाएगा और उसको नॉन रेसिडेंशियल करके उसको गिना जाएगा।
1: तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न था एक तरीके से, क्योंकि अक्सर लोग गांव में जो होता है पशु वगैरह बांध देते हैं और पूरा एक शेड प्रॉपर ताकि बारिश से उनको बचाया जा सके वो रखते हैं। अच्छा रुशाली जी, एक और ये सवाल है कि 2011 में बैंकिंग सेवा का उपयोग नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार जो है जनधन DBT के बाद इसे जोड़ने का क्या मकसद है?
0: मकसद यही है क्योंकि एक स्कीम शुरू की गवर्नमेंट ने जनधन योजना, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कितने लोगों के पास या कितने परिवारों के पास बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है, ये देखने के लिए ये प्रश्न नए से जोड़ा गया है।
1: जी, और अंत में चलते चलते हम रुशाली जी आपसे चाहेंगे कि जनता से क्या अपील हम करना चाहेंगे ताकि वो इसमें सहयोग दे सकें पूरी तरीके से।
0: जी, जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि पूरा कोऑपरेट करें इस जनगणना के लिए, क्योंकि जनगणना से जो भी आंकड़े आते हैं, फिर से एक बार दोहराती हूँ मैं, पूरी तरह से गोपनीय रखे जाते हैं। इससे कोई भी आपके ऊपर ना कोई टैक्स लगेगा, लेकिन जो भी आंकड़े आप सही आंकड़े देंगे उससे सरकार की नीतियाँ बनेगी, पॉलिसीज बनेगी, जैसे किस गाँव में स्कूल बनाने हैं या किस गाँव में पानी की सुविधा देनी है, अच्छे पानी देनी है या टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो इस तरह की जो भी वेलफेयर स्कीम्स सरकार बनाती है उसके लिए सही सही जानकारी देना बिल्कुल ज़रूरी है। तो यही एक अपील है कि सही जानकारी दे और कोऑपरेट करे, और जो प्रगणक है हमारे वो अपना काम संभाल के पूरा एक्स्ट्रा काम ये कर रहे हैं, तो उनको अच्छे से कोऑपरेट तो करे ही, प्लस अच्छे से उनसे उनके साथ बिहेव करे, अच्छे से बात करे।
1: जी बिल्कुल रुशाली जी, क्योंकि 10 साल में एक बार ये मौका आता है कि जब आपके घर की गिनती, आपके सपनों की गिनती जो है वो की जाती है। जनगणना कोई डर की बात नहीं है, ये आपके हक की बात है और आपका मकान न गिना जाएगा तभी मकान तक सुविधा पहुंचेगी। भारत की पहली डिजिटल जनगणना में भागीदार बनिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद रुशाली जी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आज आप हमारे समक्ष मौजूद रहीं और हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का आपने जवाब दिया।
0: धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं मुझे दीजिए इजाजत कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं रूपक संस्कृति का वातायन राजकीय संग्रहालय मथुरा। आलेख और प्रस्तुति डॉक्टर सत्यदेव आजाद की है।

0: ब्रज भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली और लीला स्थली है। इसका प्रमुख केंद्र है मथुरा, आर्यावर्त का अंश।
1: हाँ, यही पर पनपी भारतीय संस्कृति को यमुना की जिस धारा ने सींचा, मानो वो धन्य हो गई।
0: दिल्ली से 145 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और आगरा से 58 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर बसी मथुरा नगरी का विश्व के सांस्कृतिक इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है।

0: अनेक युग देखे हैं मथुरा ने, उत्थान और पतन भी। शूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा महाभारत युग में राजनीति का प्रमुख केंद्र बनी।
1: जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ बटेश्वर के शौर्यपुर नामक स्थान पर जन्मे भगवान महावीर ने यहाँ विहार किया, तो भगवान बुद्ध भी यहाँ पधारे थे।
2: संघम शरणम गच्छामि बुद्धम शरणम।
1: वैदिक जैन व बौद्ध धर्मों का केंद्र था यह नगर। भागवत के मुख्य केंद्र बने भगवान श्री कृष्ण, जिनकी बाल लीलाओं की स्मृतियां आज भी विविध रूपों में विद्यमान हैं।

0: धार्मिक, भौगोलिक और राजनीतिक इतिहास की अपेक्षा मथुरा का पुरातात्विक महत्व तो कहीं अधिक है।
1: मथुरा का प्राचीन वैभव ब्रज क्षेत्र से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों में झांकता है। उत्खनन और अन्वेषण होते रहे और यह सांस्कृतिक थाती नित नवीन कला रत्न उगलती रही।
0: इन सब कला रत्नों का संग्रह करता रहा राजकीय संग्रहालय, जो मथुरा के हृदय क्षेत्र में लगभग 3.25 एकड़ भूमि पर अवस्थित है।
1: हरे भरे उद्यानों के बीच लाल पत्थर के इस विशाल अठपहलू भवन में 17 वीथिकाएं हैं, जिनमें 4682 कलाकृतियां, 2737 पूर्ण मूर्तियां, 325 कांस्य प्रतिमाएं और मुद्राएं बहुत सावधानी से सहेजी हुई हैं।
0: मूर्तियां पत्थर की जरूर हैं, मूक और निर्जीव, लेकिन उनका शिल्प जीवंत है, लगता है बोलने ही वाली हैं।
1: शिल्प और शिल्पकार के संबंध में अपना मत व्यक्त करते हुए श्री एमएल पंडित, जो वर्तमान में दूरदर्शन जालंधर में निदेशक हैं,
2: मथुरा संगीत राशि के नमूनों की खूबसूरती इस बात में है कि मूर्तियां जिंदा लगती हैं और इन मूर्तियों की बनावट इतनी बारीक और खूबसूरत है कि बनाने वाला इस फन पारे के साथ साथ हजारों साल तक जिंदा रहा। बनावट की नफासत अव्वल दर्जे की है। दरअसल मथुरा का संगतराश अपने जमाने का बेहतरीन संगतराश रहा है। मथुरा के संगतराशों ने कुशानों के दौर में बहुत ज्यादा तरक्की की। सुर्ख पत्थर के इस्तेमाल से न सिर्फ इन संगतराशों ने मजहबी जरूरतों को पूरा किया, बल्कि संगतराशी के फन में नए नए तजुर्बे किए।
0: शिल्प विकास की ये गति कभी शिथिल न होने दी संग्रहालय ने। कभी इसके संकलन में वृद्धि हुई तो कभी नवीन भवन का शुभारंभ और उसमें कलाकृतियों का संयोजन, कभी वीथिकाओं में पुनरुद्धार हुआ तो कभी अस्थाई प्रदर्शनियों के आयोजन, कभी सामान्य शैक्षिक और सांस्कृतिक गतिविधियां अपने उत्कर्ष पर रही तो कभी उच्च स्तरीय शोध के लिए सुरक्षित संकलनों को सुव्यवस्थित किया गया। युद्ध के समय महत्वपूर्ण सांस्कृतिक अवशेषों की सुरक्षा व राष्ट्रीय ऐक्य भावना की जागृति और शांति के समय शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान।
1: पर यह भी सत्य है कि सन 1874 में यानी संग्रहालय के आरंभिक दिन बड़े संकटग्रस्त रहे, किंतु मथुरा के तत्कालीन कलेक्टर और संस्थापक श्री एफएस ग्राउस की साधना धीरे धीरे फलवती हुई और 25 वर्ष बाद इसका कार्यभार नगर पालिका ने संभाला। जानकारी देती हुई राजकीय संग्रहालय मथुरा की सहायक निदेशिका श्रीमती पुष्पा ठकुरेल,
3: जिसमें सबसे पहले म्यूजियम स्थापित हुआ था, एक बहुत ही सुंदर इंडो ब्रिटिश वास्तुकला की एक इमारत है तथा उन दिनों उसे स्टेट गेस्ट हाउस के रूप में प्रयोग किया जाता था, लेकिन चूंकि सन 1836 से ही यहाँ कलाकृतियाँ निकलना शुरू हो गई थीं, थोड़े दिन बाद ग्राउस ने स्वयं महसूस किया कि वो जगह जहाँ संग्रहालय प्रारंभ किया गया था इतना छोटा पड़ गया कि सन 1930 में यह वर्तमान भवन जिसमें आज संग्रहालय चल रहा है उसको वहाँ से परिवर्तित करना पड़ा और आज हम पुराने संग्रहालय को अपने गोदाम के रूप में प्रयोग करते हैं, जहाँ हमारी करीब 2500 कलाकृतियाँ अभी भी संग्रहित हैं। 1933 में इसे जनता के लिए खोल दिया गया और तभी से ये संग्रहालय अनवरत कलाकृतियों को प्राप्त करता है, संग्रहित करता है और दिनों दिन

0: इस प्रयास में रहता है कि अधिक से अधिक इस ब्रज क्षेत्र की कला संपदा हम सजोएं और यहाँ सुरक्षित करें, ताकि यहाँ के लोग यहाँ इस जनपद की कला से परिचित हो सके।
1: भारतीय कला और संस्कृति के सुप्रसिद्ध समीक्षक डॉक्टर जे पी एच कोगल और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल सरीखे विद्वानों की सशक्त लेखनी का प्रभाव भी मथुरा संग्रहालय पर पड़ा, जिससे मथुरा कला शैली को अंतरराष्ट्रीय ख्याति मिली।
2: राय बहादुर पंडित राधाकृष्ण ने इसके संकलन की वृद्धि में योगदान दिया, तो डॉक्टर रमेश चंद शर्मा ने इसकी प्रगति व विकास यात्रा को आगे बढ़ाया। प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता व साहित्यकार पंडित कृष्ण दत्त वाजपेयी संग्रहालय के दो बार अध्यक्ष रहे, अप्रैल 1946 से मई 1951 तक और जुलाई 53 से सितंबर 58 तक।
1: उनका समन्वयवादी दृष्टिकोण था, उनका प्रयास, उन्हीं के शब्दों में,
3: मैंने ये प्रयास किया कि इस क्षेत्र मथुरा जिला और आसपास का जो क्षेत्र है वहां से कुछ सामग्री प्राप्त की जाए जो उपेक्षित पड़ी थी। कुछ स्थानों पर सर्वेक्षण के साथ साथ उत्खनन कार्य भी करना पड़ा और उससे काफी अच्छी सामग्री मिली। वो ऐसा समय था, खास करके 46 से 51 तक का, कि बहुत से लोगों की इच्छा रहती थी कि कोई प्राचीन मूर्ति या पुस्तक मिले तो वे सहर्ष ले आते थे संग्रहालय में।
2: मथुरा कला को वो लोक धर्म की कला मानते थे, तभी तो प्रतीकों की समानता पर श्री वाजपेयी ने अधिक बल दिया।
3: वैदिक पौराणिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन तीनों से संबंधित मूर्तियां मिली हैं, परंतु उसके साथ साथ लोक धर्म भी यहाँ बड़े रूप में प्रचलित थे। यक्ष और यक्षी पूजा, नाग और नागी पूजा, तो उसमें हम ये पाते हैं कि जहां तक विषय वस्तु का सवाल है, अलंकरण की विधाएं हैं, ये जो प्रतीक है अनेक प्रकार के मिलते हैं वे प्रायः एक जैसे हैं। इससे भी ये बात प्रमाणित होती है कि कितनी बड़ी सामंजस्य या समन्वय की भावना थी। बौद्ध धर्म वालों ने, जैन धर्म वालों ने और वैदिक पौराणिक धर्मावलंबियों ने भी उन्हीं प्रतीकों को ग्रहण किया, उन्हीं कला के जो विविध प्रकार के उपकरण हैं उनको ग्रहण किया। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि ये भावना एक जैसी प्राप्त होती है हमको इन कलाकृतियों के माध्यम से।
1: श्री नीलकंठ पुरुषोत्तम जोशी देश के ख्याति प्राप्त पुरातत्वविद हैं, वो भी अप्रैल 1963 से सितंबर 1967 तक संग्रहालय के अध्यक्ष रह चुके हैं। उत्खनन के क्षेत्रीय स्थानों से प्राप्त रत्न और उनके काल निर्धारण के विषय में बताते हुए,
4: कटरा केशव देव पर श्री कृष्ण का मंदिर था, उसी के बगल में भूतेश्वर, यह वहां पर हमको बौद्ध सामग्री मिली है। इसी तरह से कंकाली टीला, जहां पर के आज एसबी डिग्री कॉलेज है, वहां पर हमको जल सामग्री मिली है।
5: अच्छा,
4: और यह भी प्रत्यक्ष प्रमाण है कि एक शताब्दी नहीं, दो शताब्दी नहीं, शताब्दियों तक यह तीनों एक साथ वहां पर विद्यमान थे। और जैसा कि आप समझ सकते हैं कि तीनों एक साथ तभी विद्यमान रह सकते हैं जबकि तीनों में पड़ोसियों का सा संबंध हो। कनिष्क ने अपने जो सिक्के बनाए हुए हैं उसमें उसने किसी विशिष्ट धर्म को, यद्यपि वह स्वयं बौद्ध धर्म की तरफ उसका झुकाव था, तथापि उसने किसी एक विशिष्ट धर्म तक अपने को सीमित नहीं रखा। और कुषाण काल की ही हमको ऐसी प्रतिमाएं मिली हैं जो मथुरा संग्रहालय में भी हैं, एक प्रतिमा लखनऊ संग्रहालय में है और सुंदर प्रतिमाएं इस प्रकार की 2-3 बर्लिन के संग्रहालय में है।
2: मथुरा कला की विशेषताओं से प्रभावित हुए हैं देश और विदेश के असंख्य पर्यटक, शोधकर्ताओं का तो आकर्षण केंद्र है ये संग्रहालय।
1: केवल इन विशेषताओं के कारण
2: चित्तीदार लाल बलुए पत्थर का प्रयोग, प्राचीन लोक शैली की यक्ष प्रतिमाएं, देव समुदाय का विकास, विदेशी तत्वों का आत्मीयकरण, नवीन कला रूपों का संयोजन, प्रतीकों का मानवाकृति में रूपांतरण, नारी और सौंदर्य का कलात्मक अंकन।
1: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष और रीडर डॉक्टर रविंद्र भ्रमर ने इन्हीं विशेष

0: ताओं से आकृष्ट होकर कई बार अवलोकन किया है इस संग्रहालय का।
1: मेरी दृष्टि इतिहास की अपेक्षा संस्कृति पर अधिक है और मैं पुरातत्व को संस्कृति के जानने का एक माध्यम, महत्वपूर्ण माध्यम मानता हूँ।
2: संग्रहालय की सभी वीथिकाएं मानो सैरगाह हैं। एक वीथिका में कटरा के टीले से प्राप्त भगवान बोधिसत्व वृक्ष के नीचे आसीन है कुषाण कला का अद्वितीय उदाहरण लिए सर्वांग सुंदर।
0: जी नहीं चाहता इन वीथिकाओं में से बाहर निकलने को। कहीं एक तरुणी अशोक वृक्ष के तने पर पैर से आघात कर रही है तो कहीं उसी पंक्ति में कुछ आगे चलकर दो स्त्रियां तोते से खेल रही हैं। तीसरी पंक्ति में एक यक्षी वृक्ष के नीचे खड़ी दर्पण निहार रही है।
2: कुछ वेदिका स्तंभ भी हैं आगे। 33वें चित्र में सद्य स्नाता रमणी परिधान और केश विन्यास कर रही है तो कहीं महिला आकृति फूल तोड़ते दिखाई गई है।
0: कुछ स्कूली छात्रों को संग्रहालय की इन मूर्तियों के बारे में जानकारी देते हुए गाइड श्री लक्ष्मी नारायण वाषणे।
3: अब संग्रहालय में ये देखिए बच्चे, ये गैलरी नंबर 3 है और इस 3 गैलरी में मथुरा कला की और गंधर्व कला की मूर्ति लगी हुई है। ये मूर्तियां करीब करीब 2000 वर्ष पुरानी है। और आगे गैलरी वाली देखोगे तो गली नंबर 4 में ये कनिष्क की मूर्ति है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध राजा हुआ है। अब देखिए, आपने कनिष्क की मूर्ति देखी, अब आगे आइए, इस लाठ को भी छोड़िए, ये देखो पैरासोल को भी देखिए। अब देखिए कि गली नंबर 9 है जहाँ में सबसे अच्छी मूर्ति आपको भगवान बुद्ध की दिखाई दे रही है, जो खड़ी हुई है।
2: लोक कलाओं, संस्कृति और इतिहास का अद्भुत संगम मानते हैं इसे डॉक्टर शरण बिहारी गोस्वामी, जो वृंदावन के प्राच्य दर्शन महाविद्यालय के प्राचार्य हैं।
4: अभी हाल में गोविंद नगर में खुदाई हुई तो केवल एक टीले में 20 क्या सैकड़ों मूर्तियां निकली, जो अपने आप में इतिहास पर पूरा पूरा प्रकाश डालने वाली मूर्तियां थी। बुद्ध की मूर्तियां जिन पर अनेक संवत लिखे, निर्माण करने वालों के नाम लिखे, एक नया ही इतिहास उससे प्रकाश में आया। यक्षों का, बौद्धों का, जैनों का, और कला की दृष्टि से इतना मार्मिक, उसी भी अधिक महत्व की बात, जैसा कहा गया कि श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर बार बार मंदिर बने और इतिहास के कालखंड में भी धराशायी भी हुए, तो उनका जो अवशेष, उसकी जो पुरातन भग्नावशेष हैं, अनेक तोरण हैं, अनेक वेदिकाएं हैं और दूसरे दूसरे मंदिर के जो भाग हैं वे प्राप्त हुए हैं। तो मथुरा कला का प्रतिनिधित्व करता है, एक पूरे इतिहास को अपने आप में संजोए हुए है, सांस्कृतिक परत दर परत और उससे जुड़ी हुई सारी सामग्री यहाँ हमें प्राप्त होती है। इतने बड़ी धरोहर को समेटने के लिए अगर ये संकल्प किया गया कि इनको किसी संग्रहालय में रखा जाए तो निश्चय ही ये बहुत बड़ी बात थी।
0: कलाकृतियों की निरंतर प्राप्ति और विकासोन्मुखी कार्यों के कारण संस्था में स्थान का अभाव होना स्वाभाविक है। संग्रहालय की सहायक निदेशिका श्रीमती पुष्पा ठकुरेल ने कुछ नवीन मूर्तियों की भी जानकारी दी।
5: इस संग्रहालय को पिछले 2 में कुछ ऐसी कलाकृतियां मिली हैं जो पिछले 100 या 50 वर्षों में नहीं मिली। यद्यपि हर साल ही ये संग्रहालय 100-200 कलाकृतियों से भर जाता है, जो अनायास ही यहाँ के आसपास के अंचलों में बिखरी कलाकृतियों से कलाकृतियाँ प्राप्त होती हैं। लेकिन पिछले दिनों जो महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ मिली हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं। गोवर्धन के पास एक गांव है भरना कला, जहाँ ग्राम प्रधान को अपना मकान बनाते समय नींव में खड़ी 2 यक्षों की प्रतिमाएं मिली और दोनों ही अभिलिखित हैं तथा 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के की यक्ष परंपरा का प्रतिनिधित्व करती हैं। उसके बाद पिछले वर्ष जैत के पास मघेरा गांव से एक विशाल अभिलेख मिला है जो कुएं की सरदल के रूप में प्रयुक्त होता था और जिस पर 4 लाइन का बहुत सुंदर शिलालेख उत्कीर्ण है। उल्लेख है कि यवनों के संवत 116वें वर्ष के उत्तरार्ध में यहाँ दत्त परिवार के लोगों ने, जिसमें घोषदत्त का नाम विशेष रूप से उल्लेख है, लोक

0: कार्य के लिए एक उदपान पुष्करणी आदि बनवाई थी।
1: गोवर्धन पर्वत से 13 किलोमीटर दक्षिण की ओर अवस्थित है छोटा सा कस्बा सौंख, जहाँ के एक ऊंचे टीले को उत्खनन हेतु चुना गया।
2: सन 1966 में जर्मन पुरातत्ववेत्ताओं का ध्यान इस स्थान की ओर आकृष्ट हुआ। ब्रजभूमि का सांस्कृतिक इतिहास जानने के उद्देश्य से उन्होंने पुरातात्विक सर्वेक्षण करने का भी निश्चय किया।
1: भारत सरकार से उत्खनन कार्य हेतु एक समझौता भी हो गया। परियोजना का संचालन जर्मन रिसर्च सोसाइटी और प्रूसियन कल्चरल ट्रस्ट ने किया। दल के नेता थे बर्लिन के प्रोफेसर हबर्ट हर्टल। उत्खनन का काम 1966 से 1974 तक चलता रहा, जिसमें मिट्टी, पत्थर और धातु की लगभग 12,000 कलाकृतियां प्राप्त हुई।
2: के आर महिला महाविद्यालय मथुरा की अवकाश प्राप्त प्राचार्य डॉक्टर सरोजनी कुलश्रेष्ठ इस अवधि में अनेक बार वहां गईं। उत्खनन से प्राप्त सामग्री के बारे में उनका मत।
3: दादा डॉक्टर परदोषी लाल गुप्ता, जो सिक्कों के इंटरनेशनल ख्याति के विद्वान हैं, उनके साथ जाने का अवसर मिला था। तो वहाँ सिक्के बहुत अधिक महत्वपूर्ण सिक्के थे, जिसका उन्होंने वर्गीकरण किया था। इसके अतिरिक्त मूर्तियाँ, बहुत तरह की मूर्तियाँ मिली थी वहाँ। एक मंदिर मिला था, जो इस बात का प्रमाण है कि ब्रज में नाग पूजा हुआ करती थी। नागों का ये मंदिर पहले देवी के मंदिर के नाम से पूजा जाता था, परंतु बाद में पता चला कि ये नाग देवता का मंदिर है। इसके अतिरिक्त जो मूर्तियाँ मिली हैं, वो बहुत सुंदर मूर्तियाँ मिली हैं। जो सबसे सुंदर मूर्ति है, वो है वहाँ की एक नर्तकी की मूर्ति। इस मूर्ति की विशेषता है, जैसी कोई और मूर्ति संग्रहालय में नहीं है, अत्यंत अद्भुत है। यह चंद्राकार पाषाण खंड पर बनी हुई है और इसमें पैरों में मोटे मोटे झांझन पहने हुए हैं, उसके नीचे यक्ष दबा हुआ है और उसका एक हाथ कमर पर और दूसरा हाथ उसका वृक्ष की डाल पर है, अर्थात यह शाल भंज का मूर्ति है।
1: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में रीडर और पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर महेंद्र देव नारायण शाही ने अपने निदेशन में सौ के उत्खनन पर छात्रों से शोध कार्य कराए हैं, उनकी सम्मति।
4: सबसे बड़ा योगदान जो है वो सिक्कों का क्रमबद्ध लेयर वाइज स्टडी और उनकी प्राप्ति, उससे हमें मौर्य काल के बाद के और गुप्त काल के पहले के जो काल है उनका, इन सिक्कों के द्वारा उनकी स्टडी बहुत ही अच्छी हो जाती है, जिनके बारे में हम दूसरी जगहों से उतनी अच्छी हमारी स्टडी नहीं हुई है।
2: संग्रहालय में मुद्राओं की एक बीथिका है, जिसमें 170 स्वर्ण मुद्राएं, 3413 रजत मुद्राएं और 10,920 ताम्र मुद्राएं हैं। प्राचीनतम भारतीय मुद्राएं ईसा पूर्व 600 से 200 ईस्वी तक की हैं।
1: शिव अंकित कनिष्क की स्वर्ण मुद्रा, अश्वमेध प्रकार की समुद्रगुप्त की स्वर्ण मुद्रा, गाजीउद्दीन हैदर की आकृति युक्त रजत तमगा, शुभ चिन्हांकित रजत आहत मुद्रा आदि विभिन्न मुद्राएं एक अनुपम उपलब्धि हैं। भारत में सिक्कों के क्रमिक इतिहास को जानने का एक अनूठा केंद्र।
2: भांति भांति की सुंदर प्रतिमाओं के प्रतीक भी बनाए जाते हैं संग्रहालय में। चित्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस की अनुकृतियां कला प्रेमियों की सुविधा के लिए लागत मूल्य पर विक्रय भी की जाती हैं। कुशल शिल्पी श्री श्याम सुंदर शर्मा से प्राप्त जानकारी।
5: हम पहले रबर मोल्ड बनाते हैं और उस रबर मोल्ड से फिर हम अनुकृतियाँ तैयार करते हैं, जो कि बाद में फिनिश करके सेल में जाते हैं। वैसे हमारे यहाँ असिस्टेंट मॉडलर और एक मॉडलिंग परचर भी हैं और हम लोग 3 आदमी मिलकर ये काम करते हैं।

0: लगभग 40-45 मूर्तियां एक महीने में तैयार होती हैं।
1: संग्रहालय के भवन का पश्चिमी भाग पुस्तकालय व वाचनालय का है, जिसमें कला, इतिहास, साहित्य व संस्कृति के अतिरिक्त देशी और विदेशी भाषाओं के अलभ्य ग्रंथ हैं। यहाँ शोधकर्ताओं को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

0: सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे वे भारतीय कला और संस्कृति के विविध पक्षों पर अपने प्रबंध तैयार कर सके।
1: एक शोधार्थी श्री मुकुंद स्वरूप भटनागर।
2: मैं यहाँ पर धातु विज्ञान और आयुर्वेद के ऊपर में कुछ रिसर्च कर रहा हूँ। मुझे उर्दू, फारसी, अरबी की ऐसी पुस्तकें जो कहीं देखने को नहीं मिलती हैं, वो यहाँ से मैं उपलब्ध करता हूँ, पाता हूँ, उनसे मुझे मेरे कार्य में सहायता होती है।
0: इतना ही नहीं, पुस्तकालय का यह कक्ष नगर की सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र है। अनेक साहित्यिक और समाज सेवी संस्थाएं स्थान पर अपने आयोजन करती रही हैं। विशेष विवरण पुस्तकालय के अध्यक्ष श्री प्यारे लाल मिश्र से।
3: वैसे तो शैक्षिक और सांस्कृतिक गतिविधियां होती ही रहती हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो यहाँ पर विशेष आयोजन हुए हैं, उसमें ब्रज जनपदीय मानव चतुर्थी समारोह समिति वल्लभ पंचशती समारोह मनाया गया, उसका भी मुख्य स्थलीय रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में यहाँ पर जो मनाया गया था कार्यक्रम, पूरे भारतवर्ष में बाल वर्ष मनाया गया था, उसका भी यहाँ पर अच्छा, महिला वर्ष, युवा वर्ष, इस प्रकार से मतलब जितने भी राष्ट्रीय आयोजन होते रहे उनमें भी संग्रहालय बढ़ चढ़ करके भाग लेता रहा, शैक्षिक सांस्कृतिक गतिविधियों के अलावा राष्ट्रीय कार्यक्रमों में। और विशेष करके हम यहाँ पर राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए अंतिम मुगल सम्राट स्वर्गीय बहादुर शाह जफर की भी जयंती आयोजित करते रहे हैं।
1: नगर के हृदय भाग पर बने इस संग्रहालय से संबद्ध लगभग 2 एकड़ भूमि पर 500 सीटों वाले एक प्रेक्षागृह के निर्माण की योजना भी विचाराधीन है। मूल्यवान कलाकृतियों को जलवायु और वातावरण के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए रासायनिक उपचार और अन्य प्रभावी कदम उठाने की भी नितांत आवश्यकता है।
0: सन 1974 में संग्रहालय ने शतायु पूर्ण कर दूसरी शती में पग बढ़ाया। संग्रहालय के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया था तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने।
1: इस अवसर पर भारतीय डाक तार विभाग द्वारा एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया गया, जिससे संस्था गौरवान्वित हुई है।
0: निसंदेह मथुरा का राजकीय संग्रहालय ब्रज का एथेंस है। इसने भारतीय कला के क्षेत्र में जो योगदान दिया है, उसका मूल्यांकन करते समय यह संग्रहालय एक ऐसे कला केंद्र के रूप में सामने आता है, जहां की कलाकृतियां नयनाभिराम, सहज, दुर्लभ, सौंदर्य व बहुमुखी व्यंजनाओं से युक्त रहती थी।
1: सांस्कृतिक थाती का यह वातायन आज मात्र ब्रज की अथवा भारत की ही गरिमा नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व का प्रकाश पुंज है, जिसके माध्यम से हम गौरवशाली अतीत भी आंक सकते हैं और भावी कल्पनाओं को भी साकार कर सकते हैं।
4: अभी आपने सुना रूपक संस्कृति का वातायन राजकीय संग्रहालय मथुरा, लेखक और प्रस्तुति डॉक्टर सत्यदेव आजाद की थी। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग कोसी कानड़ा और राग यमन में सितार वादन। वादक कलाकार हैं पंडित रविशंकर। तबले पर आपके साथ संगत की है कुमार बोस ने। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं राग कोसी कानड़ा से।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राग कौसी कन्हड़ा और राग यमन में। सितार वादन वादक कलाकार थे पंडित रविशंकर। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा।